0: आज के सुविचार।
1: हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य करते हैं। कार्य करते हैं तो थकान की अनुभूति होती है, और यदि थकान ना उतरे तो कार्य करने का मन नहीं करता। हम आशा करते हैं कि कदाचित एक दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते तो आराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, है ना? परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग संसार में सफल हैं, उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे थे? तो फिर वो सफल क्यों है? इसका एक छोटा सा रहस्य है। वो कार्य चुनते हैं जो उन्हें प्रिय, जिसे करने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें लगता ही नहीं कि वो कार्य कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो प्रतिपल आनंद मना रहे हैं। और जब आप आनंद मनाते हैं तो थकान कैसी? इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कार्य करें तो वो आपके मन को भाना चाहिए, या जो कार्य आप कर रहे हैं उसे अपने मन को भा देने दो। सफलता आपको मिलेगी। कभी सोचा है हमारा जीवन

भी उस रेत की घड़ी की भांति है जो रेत नीचे गिर चुकी है, वो हमारा अतीत है। जो अब भी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है, उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए। आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे।

0: सृष्टि का सृजन है बेटी, घर का आंगन है बेटी।
1: जिंदगी को जिंदगी से जोड़ते जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
2: जी हाँ, बेटियों को मत रखो निरक्षर, बेटियाँ भी बनेगी बड़ी अफसर।
3: खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी।
0: जी हाँ, दुश्मनों का मुकाबला डट के कर सकती है बेटी, मत बांधो बेड़ियों में ऊंची उड़ान भर सकती है बेटी।
1: जी हाँ साथियों, दे दो दर्जा बेटियों को समान अधिकार का, उनकी ख्वाहिशों पर न अंकुश लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
2: संसार देश जिंदगी की जरूरत है बेटी, बेटी से बन औरत हर आदमी की पूरक है बेटी।
3: जी हाँ साथियों, बेटी पत्नी माँ कई रूप है बेटी के, प्यार स्नेह एवं सानिध्य हर रूप में देती है।
0: भ्रूण हत्या घोर अपराध, देश का अपमान है, बेटी के प्रति छोड़ दो निष्ठा, इसी में समाधान है।
1: जी हाँ साथियों, बनो ज्ञानी बनो दानी, अब तो लोगों जग जाओ, मत करो भ्रूण हत्या, बेटी बचाने में लग जाओ।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: बच्चों के भविष्य को बचाना है, बाल विवाह को दूर भगाना है,
1: खेलने कूदने की उम्र है, बाल विवाह जुर्म है।
4: आओ ले सामाजिक एकता का संकल्प, समाज की तरक्की का यही है विकल्प। कोई भी बच्चा ना छूटे इस बार, शिक्षा पर है सबका अधिकार। वागधारा संस्था एवं वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में जारी।
5: बच्चों के अधिकार।
1: घर परिवार में दुलार, माँ का पहला दूध व अर्ध ठोस आहार, बच्चों का है अधिकार।
4: जी हाँ, पर्यावरण सुधार, हरा भरा संसार, प्रेम पूर्ण व्यवहार और शिक्षा संस्कार, ये भी है बच्चों के अधिकार।
0: बिल्कुल सही, सभी प्रदूषण को रोकें, बस्ता लेवे हल्का, बाल मजदूरी को रोकें, पिता को दे रोजगार, ये सभी हैं बच्चों के अधिकार।
4: वागधारा संस्था और वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे गोरी, इतने सुस्त क्यों दिख रही हो, कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
6: अरे दीदी, क्या करूं, कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
1: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है, और खाने में भी तुम्हें दूध दही दालें हरी सब्जियां खानी चाहिए, इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
6: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियाँ और दाल भी खूब खाऊंगी।
1: ये हुई ना बात गोरी।
4: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेक।

0: धर्म महासभा के पश्चात उनका अमेरिका के विभिन्न स्थानों पर जाकर के व्याख्यान देने का दौर शुरू हुआ। एक कंपनी के साथ उनका 3 महीने का अनुबंध भी हुआ। वे व्याख्यान के बदले प्राप्त सम्मान राशि जमा करके भारत में आकर के विकास मूलक कार्य करना चाहते थे।
1: उन दिनों अमेरिकन समाज 2 भागों में बटा हुआ था। विज्ञान की प्रगति के साथ नवीन विचारधाराओं का जन्म हुआ जो उदारपंथी था, और उग्रपंथी प्राचीन लोग बाइबल को सीने से चिपकाए हुए उसमें कही गई सारी बातों का पालन करने को ही धर्म मानते थे। उन दिनों आध्यात्मिक उन्नति को वास्तविक सामाजिक उन्नति का आधार ना मानकर बल्कि सामाजिक और आर्थिक समृद्धि को ही आध्यात्मिक उन्नति का कारण या लक्षण कहा जाता था। अटलांटिक महासागर के तटीय भाग या पूर्वांचल में उदार पंथियों का प्रभाव अधिक था और मध्य पश्चिम तथा दक्षिण में प्राचीन पंथी प्रबल थे। पूर्वांचल में उदार पंथियों का जोर था सामाजिक तथा आर्थिक सुधार पर, और दूसरे अंचल के निवासी पाप एवं मादकता निवारण पर बल देते थे।
0: मध्य पश्चिम तथा दक्षिण में चर्च तथा समाज में स्त्रियों का अधिपत्य था, जो तर्क के स्थान पर भावुकता को अधिक महत्व देती थी और समाज को पाप मुक्त करने में ही जुटी रहती थी। समाज इनसे त्रस्त था। ये स्त्रियां प्रगतिशील स्त्रियों को बुरी नजर से देख करके अवज्ञा करती थीं। सभी सामाजिक कार्यों में इनका ही वर्चस्व था और पुरुष चुपचाप इनका नेतृत्व स्वीकार कर लेते थे।
1: ऐसे माहौल में स्वामी जी व्याख्यान देने पहुंचे। वहां का समाज उन्हें बड़ा ही अजीब लगा। वहां के धर्माचार्य, जिन्हें भारत के बारे में कोई भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था, भारतीय धर्म और समाज को हीन बताने पर तुले थे। वहां चित्र बनाकर कविता के माध्यम से भारतीय समाज की निंदा की जाती थी। वे कहते थे,
2: पवित्र गंगा की धारा जहां प्रवाहित हो रही है, देखो वो अधार्मिक हिंदू नारी किस प्रकार अपने हाथों से अपने बच्चे को जल में विसर्जित कर रही है, और उस शिशु को जब घड़ियाल आदि हिंसक जंतु ले जाते हैं, तब बच्चे की मर्मांतक रुदन की ध्वनि उठती है। वो क्रंदन की आवाज क्रमशः दूर दूरांतर में विलीन हो जाती है, पर उसकी माता बिना विचलित हुए अपने वज्र कठोर हृदय के साथ उसे सुनती है। उस देश में बाइबल भेजो, शीघ्र भेजो, ईसा का संदेश इन माताओं के अंतर में प्रविष्ट होगा तो उनका चित्त माँ के समान कोमल होगा और वो राक्षसी के समान संतान का जीवन नाश नहीं करेगी।
0: इन प्रचारकों के मतानुसार भारतीय पति अपने हाथ से चिताग्नि जला करके उसमें अपनी पत्नियों को जला देते हैं। माताएं नवजात शिशुओं को मांसाहारी पक्षियों के भक्षणार्थ वृक्ष की शाखाओं से लटका देती हैं। लोग स्वेच्छा से जगन्नाथ के रथ के नीचे कूद करके आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह के और भी न जाने कितने ख्याली पुलाव पकाए जाते थे। इसी प्रकार के मिथ्या आरोप से दुखी होकर के जब स्वामी जी ने कहा था कि पाश्चात्य देश भारत के विरुद्ध जिस प्रकार के मिथ्या प्रचार तथा निंदावाद में लगे हुए हैं, उसके प्रतिकार के रूप में यदि भारत हिंद महासागर के तल का सारा कीचड़ पाश्चात्य देशों पर फेंके तो भी वह पूरा नहीं होगा, ये कहने में उन्होंने थोड़ी भी अतिशोक्ति नहीं की थी।
1: ऐसे माहौल से यानी कि मध्य पश्चिम से स्वामी जी अपेक्षाकृत नवालोक से आलोकित मेम्फिस नगर में पहुंचे। वहां वे 19th सेंचुरी क्लब के आमंत्रण पर आए थे। उन दिनों व्याख्यान कंपनी से अनुबंधित होने के कारण स्वामी जी के व्याख्यानों से होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा कंपनी हजम कर जाती थी। मेम्फिस में 13 जनवरी से 21 जनवरी तक विभिन्न प्रतिष्ठानों में उनके व्याख्यान हुए। व्याख्यानों की रिपोर्ट अखबारों में रोज छपती और कानंद स्वामी यानी विवेकानंद की ख्याति चारों ओर फैलती गई। मेम्फिस कमर्शियल अखबार में विस्तृत रिपोर्ट छपी थी।
3: उनका व्यक्तित्व था परमत सहिष्णुता, जिस पर वह सार्वभौमिक दृष्टिकोण से ही बोले और दुष्टांत के रूप में उन्होंने हिंदू धर्म का उल्लेख किया। अन्य मठों के प्रति प्रेम और सहानुभूति की सभी धर्मों का सार होना चाहिए। हिंदू धर्म के आचारों, अनुष्ठानों आदि को छोड़कर उन्होंने अपने मौलिक तत्वों का ही विशाल विवेचन किया। जिन कुछ अनुष्ठानों की बात उन्होंने उठाई उसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या भी की। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वासी है और बाइबिल के उस पापवाद को नहीं मानता जिसके अनुसार मानव जीवन के साथ मूलभूत पाप मिश्रित है। मनुष्य पवित्र था और पवित्रता में लोच छाता है। इतिहास से उदाहरण देकर उन्होंने दिखा दिया कि हिंदू केवल बातों में ही नहीं अपितु व्यवहारिक जीवन में भी परधर्म सहिष्णु है। किंतु लोगों की उदारता का प्रमाण देते हुए उन्होंने बताया कि एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य

0: सटीक है और ध्यान में सहायता के लिए है।
1: उनके समूचे भाषण को प्रस्तुत करना कठिन है, परंतु यह विश्व बंधुत्व की स्थापना के लिए एक उत्कृष्ट आवेदन था और एक मनोरम धर्म मत का एक सुयोग्य समर्थन था। इसका उपसंहार भी विशेष सुंदर बन पड़ा था, जबकि उन्होंने घोषणा की कि वे ईसा को स्वीकार करने को तैयार होकर भी कृष्ण और बुद्ध के समक्ष सिर अवश्य झुकाएंगे। तदुपरांत उन्होंने सभ्यता की निष्ठुरता का एक चित्र खींचते हुए कहा कि प्रगति के नाम पर होने वाले इन अपराधों के लिए वे ईसा मसीह को उत्तरदायी नहीं मानते।
2: मेम्फिस में स्वामी जी के अनुरागियों की संख्या बढ़ती गई और लोगों के अनुरोध पर उन्हें कुछ और अतिरिक्त व्याख्यान देने पड़े। उनका एक व्याख्यान था पुनर्जन्म पर। उसमें स्वामी जी बोले,
3: सभी प्राचीन धर्मों में पुनर्जन्म का सिद्धांत स्वीकृत था, पर अब हिंदू और बौद्ध ही इसे मानते हैं। पाश्चात्य लोग सोचते हैं कि पुनर्जन्म मानने से अनैतिकता को प्रश्रय मिलेगा, न्याय होने से अन्याय भी रहेगा। जगत में व्याप्त अन्याय के लिए यदि ईश्वर उत्तरदायी न हो तो कौन होगा? पुनर्जन्म के सिद्धांत से इसकी मीमांसा हो जाती है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। शून्य से जगत की सृष्टि नहीं हुई। कारण परंपरा ही कार्य परंपरा को जन्म देती है। अतः मनुष्य का वर्तमान जन्म उसके पूर्व जन्म के कर्मों के फल से बना है।
2: उन्होंने एक घटना का जिक्र और किया और कहा,
3: मैं जब मिनियापोलिस से ट्रेन में आ रहा था तो उसी में एक गोपालक मिला जो जड्ड स्वभाव का और शुद्ध आचारवादी था। उसने पूछा कि मैं कहां से आया हूं। मैंने कहा, भारत से। उसने पूछा, आपका धर्म क्या है? मैंने कहा, हिंदू। उसने कहा, तब तो आपको नरक में जाना होगा। तब मैंने उसे पुनर्जन्म का सिद्धांत बताया। उसने कहा कि वो सदा से ही इस सिद्धांत में विश्वास करता आया है, क्योंकि एक दिन जब वो लकड़ी चीर रहा था तो उसकी छोटी बहन उसके कपड़े पहनकर आकर बोली कि वो पहले पुरुष थी। पुनर्जन्मवाद की एक और अच्छी बात यह है कि जो कुछ हो गया है उसके लिए पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं, बल्कि प्रति क्षण पुनः भले कर्म करने के जो नए नए अवसर आ रहे हैं उनका लाभ उठाना चाहिए।
4: भाषण के बाद ज्यादातर महिलाएं उनसे प्रश्न पूछती और स्वामी जी हंसते हुए उन सबको उत्तर देते, परंतु ये भी सच है कि सभी ने उनको प्रेम पूर्वक ग्रहण नहीं किया। विशेषकर कुछ पादरी उनका विरोध करते रहे। व्याख्यान के बाद वे भी कटाक्ष पूर्ण प्रश्न पूछते थे,
5: हिंदू लोग अगर इतने ही धार्मिक और नीति परायण हैं, तो वो दूसरे राष्ट्रों की तुलना में इतने पिछड़े क्यों हैं?
3: इसलिए कि सांसारिक उन्नति धर्म का कार्य क्षेत्र नहीं है, और धर्म ने तो ईसाई जगत की उन्नति नहीं की, बल्कि ईसाई धर्म ने तो पश्चिमी जगत में विज्ञान के नवालोक के पथ में पग पग पर बाधा खड़ी की है। पाश्चात्य चिंतन एवं कार्य प्रणाली के साथ भारतीय चिंतन एवं कार्य प्रणाली का मिलन ही दोनों अंचलों के लिए हितकर एक नवीन पथ का निर्माण कर सकेगा।
2: पादरी महाशय निरुत्तर हो गए। तब स्वामी जी ने समझा करके कहा,
3: किसी न किसी रूप में धर्म सर्वत्र, यहाँ तक कि असभ्य लोगों में भी विद्यमान है। मानव आत्मा मानो हवा के बुलबुले के समान पृथ्वी के तल में जाकर स्वभाव से ही सर्वदा ऊपर उठने का प्रयास कर रही है, और यही प्रयास धर्म का रूप धारण कर लेता है।
4: 22 जनवरी को स्वामी जी मेम्फिस छोड़कर वापस शिकागो आ गए। इन 6 सप्ताहों के दौरान उन्होंने 12 नगरों में व्याख्यान दिए। श्रोतागण हमेशा एक जैसे नहीं होते, श्रोताओं के अनुसार ही स्वामी जी अपना विषय चुनते। जैसे अगर किसी खदान नगर में बोलते तो किसी बौद्धिक विषय के बदले सामाजिक विषय चुनते।
2: व्याख्यान कंपनी के साथ स्वामी जी भी लगातार घूमते रहे। श्रीमती बर्क ने भी लिखा है,
6: उनका एक चित्र मानस पलट पर उभरता है जिसमें वे सप्ताह पर सप्ताह भीषण ठंड के दिनों में रेल यात्रा करते, अपना सामान संभालते, श्रोताओं के सम्मुख व्याख्यान देते, पैसों का हिसाब करते, परिश्रम साध्य दीर्घ भाषण देने के पश्चात उलझुल प्रश्नों के उत्तर देते। सच कहें तो उनके शक्ति सामर्थ्य को निर्ममता पूर्वक अपने सामर्थ्य साधन में उपयोग करने के लिए मानो तो उस कंपनी ने कमर कस ली थी। स्वामी जी भी कार्य के उत्साह तथा धर्म एवं भारत की बातें सुनाने की उत्सुकता में अपनी सुख सुविधा तथा स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल ही भूल गए थे।
2: मेम्फिस से वापस शिकागो आने के बाद स्वामी जी हेल परिवार के साथ ही ठहरे। शिकागो में वही उनका स्थायी ठिकाना हो गया। हेल दंपति उन्हें पुत्र की तरह स्नेह करते थे और उनकी दो बेटियां और भांजियां स्वामी जी की दुलारी बहनें थी। विशेषकर मैरी हेल और इशाबेल मैकिन्नी के साथ उनका संबंध बड़ा ही आंतरिक था। उन लोगों के बीच कई पत्राचार हुए जिसमें स्वाभाविक विचार विनिमय, व्यंग विनोद, रोना गाना और सहानुभूति आदि

0: ये जूते की सिलाई से पूजा पाठ तक हर काम में माहिर हैं। भांजियों के पास उतना धन नहीं है, वे किंडरगार्टन स्कूल चलाती हैं, लेकिन पुत्रियां कुछ नहीं कमाती। लड़कियां मुझे भैया कहती हैं, मैं उनकी माँ को माँ कहता हूं। मेरा सामान सब उन्हीं के घर में है। मैं कहीं भी जाऊं, वे उसकी देखभाल करती हैं। यहां निर्धनों के लिए किंडरगार्टन स्कूल अपरिचित नहीं है, पर धनिकों की संतानों के लिए ऐसे किंडरगार्टन अति विरल हैं। अतः संभ्रांत वंश की मैककिंडली बहनों द्वारा स्थापित विद्यालय में कुछ नयापन और वैशिष्ट्य है, जिसके लिए समाज में उन्हें विशेष प्रशंसा भी मिली है। एक समाचार पत्र में ईसाबेल के बारे में लिखा गया है कि मिस मैककिंडली की अपने कार्य पर अच्छी पकड़ है और बच्चों के साथ उनका संबंध स्नेह तथा विवेकवान है। वे मन की बड़ी अच्छी है और वार्तालाप के समय उनकी प्रतिभा देखते ही बनती है।
1: हेल परिवार के साथ स्वामी जी की ये आत्मीयता आजीवन बनी रही। लंदन से भारत लौटने के पूर्व हेल बहनों से विदा लेते हुए 28 नवंबर 1896 को लिखे उनके एक पत्र में है,
0: मुझे लगता है इस पृथ्वी पर मैं तुम चारों से ही सर्वाधिक स्नेह करता हूँ और मेरा विश्वास है कि तुम लोग भी मेरे प्रति वैसा ही स्नेह भाव रखती हो। तुम लोग और तुम्हारा सारा परिवार मेरे प्रति इतना प्रेम रखता है कि जिसे हम भारतीय कहते हैं। लगता है मैं पिछले जन्म में तुम्हारे ही परिवार का रहा होऊंगा।
2: स्वामी जी के व्याख्यानों की जो भी रिपोर्ट अमेरिकी अखबारों में छपती थी, वे बंबई, कलकत्ता और मद्रास के भारतीय अखबारों में पुनर्मुद्रित होती थी, जिससे उनके भक्तों को और देशवासियों को पता चलता था कि अमेरिका में स्वामी जी कितने जनप्रिय हो गए हैं। उनकी विजय वार्ता पाकर समग्र भारतीय समाज उल्लासित हो उठा था। इंडियन मिरर, अमृत बाजार आदि अखबारों ने अमेरिकी अखबारों के लेखों को इस प्रकार प्रकाशित किया,
3: प्रतीक्षा गृह में सबसे आकर्षक व्यक्ति सन्यासी स्वामी विवेकानंद से सबकी भेंट होती है। वे सुगठित शरीर के है और हिंदुस्तानियों का उन्नत व्यवहार उनमें है। दाढ़ी मूछ विहीन चेहरा, समुचित ढला हुआ सामान्य आकार, सफेद दंत पंथिया और सुगठित होठ, जो वार्तालाप के समय प्राय मुदु मुस्कान के रूप में खुले रहते हैं। उनके संतुलित आकार के सिर पर नारंगी अथवा लाल रंग की पगड़ी शोभायान रहती है और उनका चोगा कमरबंद से बंधा घुटनों के नीचे तक लटकता रहता है। वो कभी चमकीले नारंगी रंग का और कभी गहरे लाल रंग का होता है। वे उत्तम अंग्रेजी बोलते हैं और गंभीरता पूर्वक पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने को सर्वदा प्रस्तुत रहते हैं।
4: महासभा में वो अपने भावों तथा आकृति की भव्यता के कारण बड़े लोकप्रिय हैं। मंच पर उनके आने मात्र से ही हर्ष ध्वनि होने लगती है और हजारों व्यक्तियों द्वारा यह विशेष सम्मान वे विनय पूर्वक और बाल सुलभ संतोष के साथ स्वीकार करते हैं। निर्धनता तथा आत्म संयम के जीवन से सहसा इस वैभव और उत्कर्ष में आ पड़ना अवश्य ही इस विनम्र सन्यासी के लिए अपूर्व अनुभव होगा।
1: अक्सर इसी तरह स्वामी जी की विजय वार्ता प्रकाशित होते रहने से ब्राह्मण समाज तथा अनेक ईसाई मिशनरी उनके प्रति विद्वेष से भर उठे। विशेषकर प्रताप चंद्र मजूमदार की व्यवस्था में चलने वाली यूनिटी एंड द मिनिस्टर पत्रिका में लिखा गया,
5: नव हिंदू बाबू नरेंद्र नाथ दत्त उर्फ विवेकानंद की प्रशंसा में इंडियन मिरर में अनेक लंबे संपादकीय लेख निकल चुके हैं। इस सन्यासी के विषय में ऐसी प्रशंसावली के प्रकाशन में हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब वे नव वृंदावन थिएटर में अभिनय करने हेतु हमारे पास आए थे अथवा जब वे इस महानगरी के किसी ब्रह्म समाज में भजन गाते थे, तभी से हम उन्हें इतनी भली भांति जानते हैं कि उनके बारे में आज के समाचार पत्रों में चाहे जितना भी कुछ लिखा जाए, इससे उनके चरित्र के बारे में हमारी धारणा पर कोई प्रकाश नहीं पड़ने वाला है। हमारे इन पुराने मित्र ने संप्रति अपने आख्यानों के द्वारा अमेरिका

0: में जो भाव तरंग उठाया है उससे हम आनंदित हैं, परंतु हम ये भी जानते हैं कि हमारे मित्र जिस नवीन हिंदू मत का प्रचार कर रहे हैं वो सनातन हिंदू धर्म नहीं है। उन्होंने जो पूर्ण रूप से अनुचित किया है वो है समुद्र पार जाना, मलिच्छों का अन्न ग्रहण करना, लगातार सिगरेट पीना अथवा इसी प्रकार का और कुछ करना। शुद्ध सनातनी हिंदू जितने हमारी श्रद्धा के पात्र हो सकते हैं, आधुनिक हिंदू मत के अनुयायी वैसी श्रद्धा पाने का दावा नहीं करते, परंतु विवेकानंद की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए हमारे सहयोगी पत्रकारों के यथासाध्य प्रयास करने के बावजूद जब वे बिल्कुल बेकार की बातें बकते हैं तो हमारा धैर्य छूट जाता है।
1: इसके बाद भी अमेरिका के संवाद पत्रों में जो सुंदर संवाद प्रकाशित होते थे उन्हें टिप्पणी के साथ इंडियन मिरर, पायनियर आदि संवाद पत्रों में प्रकाशित किया जाता था। ये बात और है कि कुछ व्यक्तियों की तरह कुछ संवाद पत्र भी इन खबरों को प्रेम पूर्वक ग्रहण नहीं करते थे, तथापि भारतवासी जान गए थे कि स्वामी जी का विजय गौरव सचमुच ही आश्चर्यजनक है।
2: इसी बीच श्री बैरोज द्वारा प्रकाशित ग्रंथ द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में स्वामी जी को अति उच्च स्थान मिला और उस ग्रंथ की एक अच्छी समीक्षा अमेरिका के रिव्यू ऑफ रिव्यूज में जनवरी अंक में छपने के बाद 21 फरवरी 1894 के इंडियन मिरर के संपादकीय लेख द्वारा उस ग्रंथ का विस्तृत रूप से प्रचार हुआ। तब भारतवासियों को समझने में देर न लगी कि स्वामी जी का विजय संवाद प्रमाणिक है और उन्होंने सनातन धर्म को समुचित ढंग से पाश्चात्य जगत के सामने प्रस्तुत किया है और ये भी समझ गए कि उनके विरुद्ध जो बातें भारत में प्रचारित की जा रही हैं वे सब झूठ हैं, ईर्ष्या जनित हैं। वस्तुतः सबने यह स्वीकार कर लिया कि स्वामी विवेकानंद का उदय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है।
1: धर्म महासभा की विज्ञान शाखा के अध्यक्ष श्रीयुत मार्विन मैरी स्नेल ने 30 जनवरी 1894 को पायोनियर पत्र के संपादक को विस्तार पूर्वक पत्र में लिखा था। उसमें भी बैरोज के मत ही दृढ़ता पूर्वक लोगों के हृदय में अंकित हो गए। स्वामी जी ने महासभा में 19 सितंबर 1893 को हिंदू धर्म विषय के जिस निबंध का पाठ किया था वे मद्रास तथा कलकत्ता के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ और दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण की जन्म तिथि के उत्सव में 11 मार्च 1894 को पुस्तिका के रूप में वितरित हुआ। इससे स्वामी जी के वक्तव्य का एक प्रामाणिक विवरण मिला। 21 मार्च के इंडियन मिरर में इसकी खूब प्रशंसा की गई।
2: स्वामी जी की विजय वार्ता सिर्फ साधारण जनता तक ही सीमित नहीं रही, यह संवाद उनके गुणमुग्ध राजा और महाराजाओं तक भी पहुंची। रामनद के राजा भास्कर वर्मा सेतुपति तथा खेतड़ी के राजा अजय सिंह बहादुर, इन दोनों स्वामी जी के शिष्यों ने आम दरबार में ठाट बाट के साथ अपनी प्रजा को बुला करके भारत के मुख उज्ज्वल करने वाले स्वामी जी के कार्यों की प्रशंसा की और महासभा में वे जो सनातन धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादन करने में समर्थ हुए हैं इसलिए उन्हें धन्यवाद देकर के पत्र भी लिखा गया।
1: मद्रास में राजा रामास्वामी मुदलियार तथा दीवान बहादुर सुब्रमण्यम अय्यर महोदय के नेतृत्व में एक विराट सभा बुलाई गई। वहां उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने स्वामी जी के प्रचार कार्य का समर्थन किया और सभा की रिपोर्ट के साथ उन्हें उत्साहवर्धक पत्र भी लिखा। उधर स्वामी जी की जन्म नगरी कलकत्ता भी उत्साह और आनंद से भर उठी। वहां राजा प्यारे मोहन मुखर्जी के सभापतित्व में कलकत्ता टाउन हॉल में एक विराट सभा बुलाई गई, जिसमें नगर के सभी प्रतिष्ठित व विद्वान सज्जन साधारण जनता के साथ उपस्थित हुए थे। माननीय सभापति महोदय ने सर्वसम्मति से सभा की तरफ से शिकागो धर्म सभा के सभापति डॉक्टर बैरोज साहब के पास धन्यवाद सूचक पत्र भेजा।
2: इस तरह भारत में स्वामी जी के विजय का चारों ओर जश्न मनाया गया। इससे यह फल हुआ कि उनकी निंदा और आलोचना करने वालों की ही आलोचना हुई और अंततः वे हार मान करके चुप हो गए। उधर अमेरिका में स्वामी जी के व्याख्यानों का दौर चल रहा था और वे एक के बाद एक अमेरिका के नगर की जनता को अपने ज्ञान और वाग्मिता से वशीभूत करते जा रहे थे।
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग परिवर्तन। यह आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने सुझाव हम तक भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस बांसवाड़ा, राजस्थान।
4: सृष्टि का सृजन है बेटी, घर का आंगन है बेटी।
5: जिंदगी को जिंदगी से जोड़ते जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
6: जी हाँ, बेटियों को मत रखो निरक्षर, बेटियाँ भी बनेगी बड़ी अफसर।
7: खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी।
6: जी हाँ, दुश्मनों का मुकाबला डट के कर सकती है बेटी, मत बांधो बेड़ियों में ऊंची उड़ान भर सकती है बेटी।
5: जी हाँ साथियों, दे दो दर्जा बेटियों को समान अधिकार का, उनकी ख्वाहिशों पर ना अंकुश लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
6: संसार देश जिंदगी की जरूरत है बेटी, बेटी से बन औरत हर आदमी की पूरक है बेटी।
7: जी हाँ साथियों, बेटी पत्नी माँ कई रूप है बेटी के, प्यार स्नेह एवं सानिध्य हर रूप में देती है।
6: भ्रूण हत्या घोर अपराध, देश का अपमान है, बेटी के प्रति छोड़ दो निष्ठा, इसी में समाधान है।
5: जी हाँ साथियों, बनो ज्ञानी बनो दानी, अब तो लोगों जग जाओ, मत करो भ्रूण हत्या, बेटी बचाने में लग जाओ।
6: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। दोस्तों, तुम अपने खान पान का रखो अच्छे से ध्यान।
8: जी हाँ, वरना बाद में पछताओगे, यह बात आज ही तुम जान लो।
5: दूध दही है बहुत जरूरी, फल तरकारी बड़ी है न्यारी,
8: यह सब पोषण की है खान, जो तुम इनसे दूर रहोगे होगा सेहत का नुकसान।
5: वागधारा संस्थान और वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में जारी। अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो, कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
6: अरे दीदी, क्या करूं, कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
5: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है, और खाने में भी तुम्हें दूध दही दालें हरी सब्जियां खानी चाहिए, इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
6: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
5: ये हुई ना बात गोरी।
8: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित। आंगनवाड़ी जाई में तारो नाम लगाओ, भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ, सोराना नक्काबजू नाना राको वार, साफ सफाई राखजू खाजू सब्जीदार, भिंडा तुरिए आलड़ी कोराने वालोर, रोपो खाओ सब्जिये डीले आवे जोर, सीरो दलियो राबड़ी फूली सोका दाल, पांचवे महीने बाल ने आ खवानो आल, अणी वातनु ध्यान राखो आपणो जीवन सुरक्षित राखो।
6: अरे सुषमा, आज तूने तेरे बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा?
5: अरे दीदी, स्कूल जाकर क्या करेगा, करना तो वही है ना जो हम करते आ रहे हैं।
6: अरे अरे नहीं सुषमा, हम जो करते आ रहे हैं वही हमारे बच्चे करें, जरूरी तो नहीं है ना, ये बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि इससे बच्चों का जीवन सुधर जाए।
5: अरे दीदी, आपकी बात सही है, मैं भी चाहती हूँ बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और कुछ अलग करे, पर देखो ना हालात ही कुछ ऐसे है।
6: सुषमा, हालात तो बनते और बिगड़ते हैं, पर हमें हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही उनका जीवन सुधरता है।
8: जी हाँ साथियों, शिक्षा जीवन का आधार, इसके बिना है सब बेकार, जो पाता है जीवन में शिक्षा उसकी होती है पूरी हर इच्छा।
5: शिक्षा जीवन का आधार जो करती सबके सपनों को साकार। बच्चों को आप पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा देकर संसार को बेहतर बनाओ।
4: जी हाँ, सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगा बेहतर कल। शिक्षा, अच्छी शिक्षा और संस्कार, इन पर है सभी का अधिकार।
6: शिक्षा करेगी नव युग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। शिक्षा पर जोर होगा तभी देश प्रगति की ओर होगा।
5: आओ मिलकर शिक्षा को बढ़ावा दे, एक नए सुखद कल का निर्माण करें।
4: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था बांसवाड़ा राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: मोटा अनाज मोटा अनाज,
6: क्या है भाई ये मोटा अनाज?
4: बाजरा मक्का रागी ज्वार, पोषण से है भरपूर आहार।
5: नित्य करे जो सेवन इनका, जीवन स्वस्थ रहेगा उनका।
6: जी हाँ साथियों, दाल अनाज मिलाकर खाएं, स्वस्थ जीवन हम अपनाएं।
4: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

श्रोताओं, उसकी हर दुआ कबूल है। वो तो ममता का एक फूल है, शायद तभी भगवान से भी ऊपर आती है माँ, एक सच्चा दोस्त कहलाती है माँ। तुझे न हो फुर्सत एक पल भी उसके लिए, उसका हर पल हर लम्हा है तेरे लिए, माँ सब जानती है। जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ कार्यक्रम कथा कहानी को एक ममता भरी कहानी के साथ। में आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में, और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागुर रेडियो 90.8 FM। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज भी मैं आपको एक प्रेरणादायी शिक्षाप्रद कहानी सुनाने वाली हूँ, और उस कहानी का शीर्षक है माँ की ममता। जी हाँ, तो दोस्तों ये कहानी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए शुरुआत में हम सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप सुनते रहिए वागुर रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम कथा कहानी, आपकी अपनी दोस्त जागृति।

अंधेरी रातों में मुझको थपकी दी कर कभी सुलाती, कभी प्यार से मुझे चूमती, कभी डांट कर पास बुलाती, कभी आंख के आंसू मेरे आंचल से पोछा करती, वो सपनों के झूलों में अक्सर धीरे धीरे मुझे झुलाती। सब दुनिया से रुट रपट कर जब मैं बेमन से सो जाता, भोले से वो चादर खींचे अपने सीने मुझे लगाती। जी हाँ दोस्तों, वो है मेरी प्यारी माँ, सारे जग से न्यारी माँ। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में श्रोताओं। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सी माँ की ममता से भरी कहानी सुनाने वाली हूँ। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है इस तरह से। माँ इस दुनिया में निस्वार्थ इंसान है जो बच्चे की दुनिया में आने से पहले ही प्यार करने लग जाती है। माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता। हर एक जीवन में माँ एक अनमोल इंसान के रूप में होती है जिसके बारे में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा सुना है कि अब हर इंसान के साथ तो खुदा रहेगा नहीं, इसीलिए माँ को बनाया गया है। और एक माँ वह हमारे जीवन में छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखने वाली खूबसूरत माँ होती है। हर पल हाजिर रहती है हमारा ख्याल रखने के लिए। सुबह जब वो प्यार से सर पर हाथ फैला करके हमें उठाती है और रात के समय प्यारी कहानियां सुनाकर सुलाती है। खुद भूखी सो जाती है पर हमें बिना खाए सोने नहीं देती है। ये होती है माँ। हमारे स्कूल या कॉलेज जाने में हमारी मदद करती है, साथ ही हमारे लिए सुबह जल्दी उठकर हमारे लिए नाश्ता, दोपहर का खाना बनाती है और फिर दोपहर को दरवाजे पर खड़े होकर हमारा इंतजार भी करती है। स्कूल से आने के बाद हमारे होमवर्क में हमारी मदद करती है। अच्छी माँ और अच्छी दोस्ती का फर्ज हमारी माँ ही हमसे निभाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी शुरू होती है अकबर और बिरबल की। अपने शहजादे को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मानते थे अकबर, और बिरबल ने किस तरह से उनका घमंड तोड़ा उस पर आज बात करते हैं। दोस्तों, माता पिता के लिए उसका बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा होता है। ठीक ऐसे ही अकबर भी अपने शहजादे को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा बोल रहे थे। फिर बिरबल ने इस पर आपत्ति क्यों जताई? दोस्तों, अकबर और बिरबल की किस्से कहानियाँ खूब मशहूर है, आपने भी सुनी होगी। बिरबल हमेशा ही अपनी समझदारी, बुद्धिमानी और चतुराई से बादशाह अकबर का दिल जीत लेते थे, इसीलिए तो बिरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। आज अकबर और बिरबल के किस्सों में आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जो अकबर के शहजादे से जुड़ी हुई है। अकबर अपने शहजादे को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मानते थे, हालांकि बिरबल इस बात पर सहमत नहीं होते, जिससे कि बादशाह अकबर भड़क भी जाते हैं। लेकिन इसके बाद बिरबल कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हमेशा की तरह एक बार फिर अकबर उसकी तारीफ करते हैं। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर अपने शहजादे के साथ दरबार में थे। अकबर का शहजादा बहुत ही सुंदर था, जिस कारण दरबार में मौजूद हर किसी की नजर उसी पर थी। वहाँ पर मौजूद हर कोई कह रहा था कि शहजादा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। खुद अकबर भी ये कह रहे थे कि उनका शहजादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, और दरबार में उपस्थित सभी लोग अकबर की बात पर हामी भर रहे थे। तभी बिरबल भी दरबार में पहुँचते हैं और अकबर बिरबल से पूछते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है, मेरा शहजादा है ना दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा। तो दोस्तों, इस पर बिरबल कहते हैं, जहाँ पनाह, शहजादा सुंदर तो है लेकिन मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं हो सकता। बिरबल की बात सुनकर अकबर गुस्से से कहते हैं, बिरबल तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि शहजादा सुंदर नहीं है? बिरबल कहते हैं, नहीं जहाँ पनाह, मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं है, आप मेरी बात का गलत मतलब ना निकाले। हमारा शहजादा बहुत खूबसूरत है लेकिन वह दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं हो सकता। अकबर बिरबल से कहते हैं, तो क्या हम यह समझे कि पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा हमारा शहजादा नहीं है? बिरबल कहते, जी जहाँ पनाह, मेरी बात का यही मतलब है। तब अकबर बिरबल से कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया में शहजादे से भी ज्यादा खूबसूरत बच्चा है तो तुम उसे हमारे पास लेकर आओ। इसके बाद बिरबल शहजादे से भी ज्यादा सुंदर बच्चे की खोज में निकल पड़ते हैं। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और बिरबल दरबार पहुँचते हैं। बिरबल को दरबार में अकेला देख अकबर कहते हैं, क्यों बिरबल, तुम अकेले आए हो, क्या तुम्हें शहजादे से ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं मिला? बिरबल कहते हैं, जहाँ पनाह, मैं आपको यही बताने आया हूँ कि मुझे शहजादे से भी अधिक सुंदर बच्चा मिल गया है, लेकिन मैं उसे दरबार लेकर नहीं आ सकता, आपको उस बच्चे के पास जाना होगा। अकबर कहते हैं, ठीक है, फिर हम कल सुबह उस बच्चे के पास चलेंगे। श्रोताओं, जब सबसे खूबसूरत बच्चे से मिलने पहुँचे अकबर, तब क्या होता है उस पर बात करें तो बिरबल कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आपको उस बच्चे से मिलने के लिए भेष
बदल कर जाना होगा। अकबर इसके लिए भी मान जाते हैं और अगले सुबह बिरबल के साथ बच्चे से मिलने के लिए निकल जाते हैं। बिरबल अकबर को एक झोपड़ी में लेकर जाते हैं। वहाँ एक छोटा बच्चा होता है जो कि धूल मिट्टी से खेल रहा होता है। बिरबल उस बच्चे को अकबर को दिखाते हुए कहते हैं, देखिए जाओ ना, वो रहा सबसे सुंदर बच्चा। अकबर को बिरबल पर गुस्सा आ जाता है श्रोताओं, और वो बिरबल से कहते हैं, तुम झोपड़ी में रहने वाले एक बदसूरत बच्चे को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा बता रहे हो। अकबर की गुस्से वाली आवाज सुनकर वह बच्चा जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगता है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ वहाँ आ जाती है और अकबर को गुस्से में बुरा भला कहने लगती है। वह अकबर से कहती है, तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कैसे कहा? मेरा बच्चा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। अगर दोबारा मेरे बच्चे को बदसूरत कहा तो मैं तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर दूंगी। निकल जाओ मेरी झोपड़ी से और दोबारा यहाँ नजर मत आना। इसके बाद माँ अपने बच्चे को लाड़ प्यार से खिलाने लगती है और बच्चे से कहती है, मेरा बच्चा सबसे सुंदर बच्चा है। अकबर भी उस बच्चे की माँ की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, बिरबल कहते हैं जहाँ पना, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि बच्चा कैसा भी हो, उसकी माँ के लिए वह दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा होता है। बिरबल आगे कहते हैं कि हमारा शहजादा भी बहुत सुंदर है, बस आप उसे अच्छी तालीम दें जिससे उसकी सुंदरता में और निखार आए। बिरबल की बात सुनकर अकबर कहते हैं, बिरबल तुमने एक बार फिर से हमारा दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, माँ के लिए कैसा भी बच्चा हो वो बहुत ही अच्छा होता है। एक माँ की ममता बच्चे के जीवन में अनमोल से बढ़कर होती है। बच्चे को जिंदगी का एहसास ही पहला माँ की ममता का होता है। माँ वह एक ऐसी हस्ती है जिसके कदमों में जन्नत होती है। एक बच्चे का उसकी माँ का सिर्फ जन्म से ही नहीं, सांसों तक का भी नाता होता है। पहली सांस जब बच्चा अपने माँ की कोख में लेता है, तभी उनकी माँ के साथ जीवन की डोर बन जाती है। श्रोताओं, माँ एक सबसे अच्छी दोस्त होती है जो बच्चे के जन्म के बाद एक विशेष बंधन बन जाती है। वह अपने बच्चे को सारी चीजें बताती है और उसे हमेशा पूरा करने की कोशिश भी करती है। एक माँ हमेशा अपने बच्चों को सही राह दिखाती है, कभी गलत राह पे नहीं चलने देती। दोस्तों, अगर आप किसी भी मुसीबत में रहते हैं तो अपनी माँ को बताकर मुश्किल हल कर सकते हैं। एक दुनिया में सब कुछ करके आपको हर मुश्किल से आजाद करा सकती है वो सिर्फ और सिर्फ माँ होती है। जरूरत होने पर वह सख्त भी हो जाती है और फिर प्यार भी करने लगती है। वह हमेशा हमारे करियर और भविष्य के लिए गंभीर होती है। उन्हें बस यही टेंशन होती है कि मेरा बच्चा जिंदगी में सफल हो और उसका नाम रोशन हो। उन्हें कभी कोई परेशानी ना हो। अगर इस बात पर आपको कभी डांट भी दे तो आपको बुरा नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि डांट के पीछे छुपे हुए प्यार को देखो। वो आपसे बहुत प्यार करती है, तभी तो वो आपको सफल होते हुए देखना चाहती है। एक माँ कभी अपने बच्चों को बर्बाद हुए नहीं देख सकती। गिरते बच्चे को हाथ देकर संभालती है, रोते हुए बच्चे को आंचल से आंसू पोंछती है, दोस्ती की कमी पूरी करती है, दुख के ऊपर से भी झूठी मुस्कुराहट दिखाती है, बस आपका हौसला बनाए रखती है। माँ की ममता कहना आसान है श्रोताओं, पर निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी माँ की ममता को लेकर, और आप समझ भी गए होंगे कि माँ की ममता क्या होती है। तो दोस्तों, अब समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।

इस गीत के साथ श्रोता साथियों विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आज जो भी कहानी मैंने आपको सुनाई, जो भी माँ से जुड़ी बातें मैंने आपको बताई, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख सकते हैं श्रोता साथियों, हमारा नंबर है 9460051234। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नई शिक्षा प्रद प्रेरणादायी कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने दोस्त जागृति को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार, साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ इस गीत के साथ में।

0: अरे सुषमा, आज तूने तेरे बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा?
1: अरे दीदी, स्कूल जाकर क्या करेगा, करना तो वही है ना जो हम करते आ रहे हैं।
0: अरे अरे नहीं सुषमा, हम जो करते आ रहे हैं वही हमारे बच्चे करें, जरूरी तो नहीं है ना ये। बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि इससे बच्चों का जीवन सुधर जाए।
1: अरे दीदी, आपकी बात सही है, मैं भी चाहती हूँ बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और कुछ अलग करें, पर देखो ना हालात ही कुछ ऐसे हैं।
0: सुषमा, हालात तो बनते और बिगड़ते हैं, पर हमें हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही उनका जीवन सुधरता है।
2: जी हाँ साथियों, शिक्षा जीवन का आधार, इसकी बिना है सब बेकार। जो पाता है जीवन में शिक्षा, उसकी होती है पूरी हर इच्छा।
1: शिक्षा जीवन का आधार, जो करती सबके सपनों को साकार। बच्चों को आप पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा देकर संसार को बेहतर बनाओ।
3: जी हाँ, सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगा बेहतर कल। शिक्षा, अच्छी शिक्षा और संस्कार, इन पर है सभी का अधिकार।
0: शिक्षा करेगी नव युग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। शिक्षा पर जोर होगा तभी देश प्रगति की ओर होगा।
1: आओ मिलकर शिक्षा को बढ़ावा दे, एक नए सुखद कल का निर्माण करें।
2: वागड रेडियो, वागधरा संस्था, बांसवाड़ा राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: सृष्टि का सृजन है बेटी, घर का आंगन है बेटी।
1: जिंदगी को जिंदगी से जोड़ते जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
0: जी हाँ, बेटियों को मत रखो निरक्षर, बेटियाँ भी बनेगी बड़ी अफसर।
5: खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी।
2: जी हाँ, दुश्मनों का मुकाबला डट के कर सकती है बेटी, मत बांधो बेड़ियों में ऊंची उड़ान भर सकती है बेटी।
1: जी हाँ साथियों, दे दो दर्जा बेटियों को समान अधिकार का, उनकी ख्वाहिशों पर ना अंकुश लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
0: संसार देश जिंदगी की जरूरत है बेटी, बेटी से बन औरत हर आदमी की पूरक है बेटी।
5: जी हाँ साथियों, बेटी पत्नी माँ कई रूप है बेटी के, प्यार स्नेह एवं सानिध्य हर रूप में देती है।
2: भ्रूण हत्या घोर अपराध, देश का अपमान है, बेटी के प्रति छोड़ दो निष्ठा, इसी में समाधान है।
1: जी हाँ साथियों, बनो ज्ञानी बनो दानी, अब तो लोगों जग जाओ, मत करो भ्रूण हत्या, बेटी बचाने में लग जाओ।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त रीना दीदी। लेकर आ गई हूं बच्चों आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की को लेकर और नई नई प्यारी प्यारी कहानियों के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि हम हर रविवार को कार्यक्रम के माध्यम से आपको नई नई और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनवाते हैं, तो आज भी मैं आपको ऐसे ही नई नई और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाऊंगी। लेकिन कहानी सुनने से पहले सुन लेते हैं बच्चों ये प्यारा सा गीत, तो आप बने रहिएगा साथियों कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में आपके अपनी दोस्त रीना दीदी के साथ में।

बच्चों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि साथियों, मैंने गीत से पहले बताया था कि आज मैं आपको कहानियाँ सुनाऊंगी, तो आइए बच्चों सुनते हैं ये कहानी। ये कहानी है साथियों शेर और चूहे की। जी हाँ बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, एक घने सुंदर और रहस्यमय जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। उसका नाम था साथियों सिंह राजा। जंगल का हर जानवर उसे डरता था। जब वह दहाड़ता तो पेड़ की पत्तियां भी कांप उठती। सिंह राजा को साथियों अपनी इस ताकत पर बहुत ही घमंड था। वह अक्सर कहता, इस पूरे जंगल में मुझसे बड़ा और ताकतवर कोई नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जंगल के जानवर बच्चों आपस में बातें करते और कहते कि शेर तो बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन उसका घमंड उसे एक दिन मुश्किल में डाल देगा। उसी जंगल में बच्चों एक छोटा सा चूहा रहता था। उसका नाम था साथियों मिंटू। वह बहुत ही चंचल, खुश मिजाज और दयालु था। वह हमेशा सबकी मदद करना चाहता था। एक दिन बच्चों मिंटू अपनी माँ से बोला, माँ मैं भी बड़ा होकर सबकी मदद करना चाहता हूँ, चाहे मैं छोटा ही क्यों ना हूँ। साथियों यह सुनकर उसकी माँ मुस्कुराई और प्यार से बोली, बेटा आकार छोटा या बड़ा नहीं होता, इसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। एक दिन दोपहर में तेज धूप थी दोस्तों। सिंह राजा शिकार करके थक चुका था। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर सो गया। उसी समय साथियों चिंटू वहाँ खेलते खेलते पहुँच गया। उसे पता ही नहीं था कि वहाँ शेर सो रहा है। वो उछल कूद करते हुए सीधे शेर के ऊपर चढ़ गया। वो बोला, वाह यह तो बहुत ही बड़ा और मुलायम पहाड़ है। वो इधर उधर दौड़ने लगा साथियों। अचानक सिंह राजा की नींद खुली बच्चों। उसने आंखें खोल के देखा कि एक छोटा सा चूहा उसके शरीर पर दौड़ रहा है। सिंह राजा गुस्से में आया। उसने झट से मिंटू को अपने पंजे में पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर कूदो, सिंह राजा गुस्से में बोला बच्चों ये। मिंटू डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती से ऐसा नहीं किया है, अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी आपकी एक दिन मदद करूंगा। बच्चों ये सुनकर सिंह राजा जोर जोर से हंसने लगा। तुम और मेरी मदद, तुम कितने छोटे हो। लेकिन मिंटू की मासूमियत देखकर सिंह राजा का दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जाओ चले जाओ। मिंटू खुशी खुशी बोला, धन्यवाद महाराज, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद बच्चों जंगल में शिकारी आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए मजबूत जाल बिछाया। सिंह राजा शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसका पैर जाल में फंस गया। वो पूरी तरह जाल में उलझ गया। उसने बहुत ही कोशिश की लेकिन जाल मजबूत था। वो जोर जोर से धाड़ने लगा और बोला, बचाओ कोई है, मुझे बाहर निकालो। मिंटू ने तुरंत शेर की आवाज सुनी। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये तो महाराज की आवाज है। वह तेजी से वहां पहुंचा। उसने देखा साथियों कि सिंह राजा जाल में फंस चुका है। मिंटू बोला, महाराज घबराइए मत, मैं आ गया हूँ ना। सिंह राजा ने निराश होकर कहा, बच्चों तुम मेरी क्या मदद कर पाओगे। साथियों मिंटू बोला, महाराज आपने मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है। उसने अपने छोटे छोटे दांतों से साथियों जाल को कुतरना शुरू किया। वह लगातार मेहनत करता रहा। धीरे धीरे जाल के धागे टूटने लगे। कुछ समय बाद बच्चों जाल टूट गया और सिंह राजा आजाद हो गया। सिंह राजा बहुत ही भावुक हो गया और उसने कहा, मिंटू आज तूने मेरी जान बचाई है, मैं गलत था, मैंने तुम्हें छोटा समझा, लेकिन तुम तो बड़े ही दिल वाले निकले। मिंटू मुस्कुराया बच्चों और बोला, महाराज हर किसी की अपनी अहमियत होती है। उस दिन के बाद सिंह राजा बदल गया। अब वह घमंडी नहीं रहा साथियों। वह सभी जानवरों के साथ प्यार से बात करने लगा और मिंटू सबसे अच्छा उसका दोस्त बन गया। पूरा जंगल अब खुश था साथियों। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को छोटा मत समझो, छोटा दिखने वाला भी बड़ा काम कर सकता है। घमंड इंसान को कमजोर बना देता है। शेर शक्तिशाली था लेकिन घमंड ने उसे अंधा बना दिया था। दया का फल हमेशा अच्छा होता है। शेर ने दया दिखाई चिंटू पर, उसी का फल उसे मिला। साथियों अच्छी ताकत दिल में होती है। मिंटू छोटा था लेकिन उसका साहस और दिल बहुत ही बड़ा था। जीवन में कभी भी किसी की मदद की जरूरत हमें पड़ सकती है। दोस्ती बराबरी से नहीं बनती बच्चों, भाव से होती है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहें। तो बच्चों यह तो थी हमारी प्यारी सी कहानी। एक और कहानी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन वो कहानी सुनने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारे से गीत को। तो आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में।

बच्चों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि दोस्तों मैंने गीत से पहले बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाई थी, अब यहीं मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी का शीर्षक के साथ यो दो दोस्त और भालू। जहाँ बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर सा गाँव था जहाँ हरियाली, शांति और सादगी भरी जिंदगी थी। उसी गाँव में दो दोस्त रहते थे, रवि और मोहन। दोनों की दोस्ती बच्चों इतनी गहरी थी कि लोग कहते अगर सच्ची दोस्ती देखनी हो तो रवि और मोहन की देखो। वे बचपन से साथ रहते हैं, साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते हैं, साथ खेतों में घूमते हैं और यहाँ तक कि अपने सपने भी साथ देखते हैं। साथियों, एक दिन दोनों खेत के किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था और हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। रवि ने कहा मोहन से, मोहन हम हमेशा दोस्त बने रहेंगे ना, चाहे कुछ भी हो जाए। मोहन ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, रवि दोस्ती तो दिल से होती है, हम कभी अलग नहीं होंगे, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोनों ने साथियों हाथ मिलाकर वादा किया। कुछ दिन बाद गांव में खबर आई कि पास के शहर में बहुत ही बड़ा मेला लग रहा है। बच्चों, दोनों ने सोचा कि हम भी चलेंगे। गाँव के बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, रास्ता जंगल से होकर जा रहा है, सावधान रहना। लेकिन दोनों को अपनी दोस्ती पर पूरा भरोसा था। वो सुबह सुबह निकल पड़े बच्चों, हंसते गाते, सपनों की बातें करते। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए साथियों, जंगल घना होता गया। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं, अजीब सी आवाजें, पक्षियों की चीखें, सब कुछ थोड़ा डरावना लगने लगा। रवि ने धीरे से मोहन से कहा, मोहन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मोहन बोला, डर मत, मैं हूँ ना। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी बच्चों। अचानक झाड़ियों में से जोर की आवाज सुनाई दी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक विशाल भालू उनकी तरफ बढ़ रहा था। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। साथियों, मोहन को पेड़ पर चढ़ना आता था। डर के मारे उसने बिना कुछ सोचे समझे पास के एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। रवि चिल्लाया, मोहन मुझे भी ऊपर चढ़ाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन डर ने मोहन की समझ छीन ली। बच्चों, उसने अपने दोस्त की तरफ

देखा भी नहीं। रवि अकेला रह गया। उसके मन में डर, दर्द और एक सवाल था, क्या यही दोस्ती है? रवि बहुत ही घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे बचपन में सुनी एक बात याद आई, भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता है। उसने तुरंत साथियों जमीन पर लेटकर अपनी सांस रोक ली और खुद को मरे हुआ जैसा मान लिया। भालू धीरे धीरे बच्चों उसके पास आया। उसने रवि को सूंघा, उसके कान के पास अपनी नाक लगाई। कुछ देर तक उसे ध्यान से देखता रहा। रवि का दिल बच्चों जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। कुछ क्षण ऐसा लगा कि जैसे समय थम गया हो। फिर भालू ने सोचा कि वह मर चुका है और वह धीरे धीरे वहां से चला गया। भालू के जाने के बाद मोहन पेड़ से नीचे उतरा। वह थोड़ा सहज था, लेकिन उसने मजाक करने की कोशिश की। रवि, भालू तुम्हारे कान में क्या कर रहा था? रवि धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। साथियों उसकी आंखों में दर्द और सच्चाई दोनों थे। वो बोला, बच्चों भालू ने मुझे आज बहुत ही बड़ी बात सिखाई है। मोहन ने कहा, क्या? रवि ने कहा, बच्चों भालू ने कहा कि ऐसे दोस्त से दूर रहो जो मुसीबत में तुम्हें अकेला छोड़ दे। ये सुनते ही साथियों मोहन का चेहरा उतर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोला, बच्चों रवि मुझसे गलती हो गई है, मैं डर गया था, मुझे माफ कर दो। साथियों रवि ने शांत स्वर में कहा, डर सभी को लगता है, लेकिन सच्ची दोस्ती वही होती है जो डर से ऊपर उठे। बच्चों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती सिर्फ अच्छे समय की हंसी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कठिन समय की परीक्षा में साबित होती है। मुसीबत वह आईना है जिसमें असली दोस्ती साफ दिखाई देती है। जो दोस्त अपने स्वार्थ के लिए आपको छोड़ दे, वह दोस्ती नहीं केवल एक साथ देने वाला व्यक्ति होता है। सच्ची मित्रता वही होती है बच्चों जो आपके डर में आपका सहारा बने, जो आपके गिरने पर आपको उठाए, जो अपनी सुरक्षा से पहले आपकी चिंता करे। डर इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन सच्ची दोस्ती इंसान को मजबूत बनाती है। साथियों हमें हमेशा ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो भरोसे के लायक हो, जो साथ निभाने वाले हो, जो मुश्किल में भागे नहीं बल्कि डटकर हमारे साथ खड़े रहें। जीवन में साथियों दोस्ती कम हो, लेकिन सच्ची और ईमानदार होनी चाहिए। तो बच्चों यह तो थी हमारी आज की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आज जो मैंने आपको दोनों कहानियाँ सुनाई है वह आपको जरूर पसंद आई होगी। क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो मैं अवश्य लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं बच्चों ये प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिएगा बच्चों वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी दोस्त रीना दीदी के साथ में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के साथ में ही हम विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आज जो मैंने आपको कहानियाँ सुनाई है वो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है साथियों 9460051234। और इसी के साथ आप हमारी ईमेल आईडी भी लिख लीजिए, हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी समय नई नई और प्यारी प्यारी कहानियों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी दोस्त रीना दीदी को, और इसी अनुमति के साथ बाय बाय बच्चों।

0: मोटा अनाज मोटा अनाज।
1: क्या है भाई ये मोटा अनाज?
2: बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार, पोषण से है भरपूर आहार।
0: नित्य करे जो सेवन इनका, जीवन स्वस्थ रहेगा उनका।
1: जी हाँ साथियों, दाल अनाज मिलाकर खाएं, स्वस्थ जीवन हम अपनाएं।
2: वागड़ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: बच्चों के अधिकार।
0: घर परिवार में दुलार, माँ का पहला दूध व अर्ध ठोस आहार बच्चों का है अधिकार।
1: जी हाँ,

0: वागधारा संस्था और वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
2: अरे सुषमा, आज तूने तेरे बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा?
3: अरे दीदी, स्कूल जाकर क्या करेगा, करना तो वही है ना जो हम करते आ रहे हैं।
2: अरे अरे नहीं सुषमा, हम जो करते आ रहे हैं वही हमारे बच्चे करें, जरूरी तो नहीं है ना। ये बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि इससे बच्चों का जीवन सुधर जाए।
3: अरे दीदी, आपकी बात सही है, मैं भी चाहती हूँ बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और कुछ अलग करे, पर देखो ना हालात ही कुछ ऐसे हैं।
2: सुषमा, हालात तो बनते और बिगड़ते हैं, पर हमें हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रखना चाहिए क्योंकि शिक्षा से ही उनका जीवन सुधरता है।
4: जी हाँ साथियों, शिक्षा जीवन का आधार, इसके बिना है सब बेकार। जो पाता है जीवन में शिक्षा, उसकी होती है पूरी हर इच्छा।
3: शिक्षा जीवन का आधार, जो करती सबके सपनों को साकार। बच्चों को आप पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा देकर संसार को बेहतर बनाओ।
1: जी हाँ, सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगा बेहतर कल शिक्षा। अच्छी शिक्षा और संस्कार, इन पर है सभी का अधिकार।
2: शिक्षा करेगी नवयुग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। शिक्षा पर जोर होगा तभी देश प्रगति की ओर होगा।
3: आओ मिलकर शिक्षा को बढ़ावा दे, एक नए सुखद कल का निर्माण करें।
4: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था बांसवाड़ा राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, असफलता के डर को अपने सपनों के बीच कभी बाधा मत बनने दें, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। जी हाँ श्रोता साथियों, सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम हमारे मेहमान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में जब भी हम हर रविवार को हाजिर होते हैं तो एक नई शख्सियत को कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ते हैं। तो आज भी श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत जुड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन्हीं के जीवन से जुड़ी ढेर सारी बातों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे। सर नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: जी धन्यवाद।
0: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और हमारे सभी श्रोता साथी जानते हैं कि जब भी कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम नई शख्सियत को जोड़ते हैं तो उनके जीवन से जुड़ी ढेर सारी बातों को जानते हैं। तो सर जैसा कि आप आज हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: जी सबसे पहले आपको धन्यवाद और जो वागड़ रेडियो है उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरा जो परिचय है, मेरा नाम अनिफ खान है और मैं रहने वाला हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से हूँ और मेरा पढ़ाई भी डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से ही हुआ है। वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एंड मास्टर डिग्री किया और मैं 2007 में इस डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़ा। शुरू में मैं जब जुड़ा तो मैं झारखंड में प्लेस हुआ और मेरा बैकग्राउंड इस क्षेत्र से नहीं था। मेरा पढ़ाई मैं समथिंग बैंक सेक्टर और ये की तरफ जाने का मेरा ज़्यादा रुझान था।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन मैं जब आदिवासी क्षेत्र में गया और वहाँ पे जाके जब गांव की स्थिति को मैंने नज़दीक से देखा तो धीरे धीरे करके वो दिमाग में या मेरे दिल के अंदर वो बदलाव मैं देख पाया कि नहीं, मैं वो जो पढ़ाई मैं किया हूँ उसको कैसे अब मैं अपने आप से उस समाज को दे पाऊँ।
0: बिल्कुल।
1: तो यही मेरा एक परिचय है।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया और आपने जैसा कि कहा कि आप बैंक के सेक्टर की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन जैसा कि आपने आदिवासी महिलाओं की स्थिति देखी और बहुत सारी चीजों को देखा तो आपका रुझान उस तरफ आया। तो सर जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमें आपके जीवन से रूबरू करा रहे हैं तो यही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो बचपन है वो किस कदर बीता।
1: मेरा बचपन गांव में बीता और मेरे जो पिता हैं वो भी किसान से जुड़े रहे हैं और अभी तक वो किसान से ही जुड़े हैं और मैं गांव में जाता हूं तो मेरा उसी मिट्टी के साथ जुड़ाव है अभी भी।
0: जी जी।
1: इसी वजह से मैं जो संस्था में अभी काम कर रहा हूं, जैसे मैं अभी प्रधान एक संस्था है उसमें जुड़ के इन परिवारों के साथ ज़्यादा नज़दीक से मैं काम कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक जो मेरा गांव के साथ अटूट रिश्ता बन रहा है तो मैंने जो सोसाइटी से लिया है मुझे ये लगता है कि मैं उसको कैसे वापस कर पाऊँ।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से आपका जो जुड़ाव है वो गांव से बना हुआ है और जैसा कि आप आदिवासी महिलाओं को जागरूक करने के लिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप जब समुदाय में कार्य करते हैं, महिलाओं को देखते हैं, तो क्या ज्यादातर समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं महिलाओं को लेकर?
1: देखिए, मेरा शुरू से जुड़ाव तो गांव के लोगों से रहा, उसमें खास तौर से महिला और यूथ के साथ मेरा जुड़ाव ज्यादा रहा है क्योंकि उनका जो समस्याएं हैं समाज में, जो वंचित है वो समुदाय सबसे ज्यादा वंचित है क्योंकि एक तो उसमें जो आज के दिन के जो हमारे समाज में जेंडर से संबंधित जो तरीके बने हुए हैं, सामाजिक परिस्थितियां जो बनी हुई हैं वो पितृसत्ता को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं, ना कि एक समानता को लेके बढ़ावा दे रही हैं। तो उन परिवारों या उन खासतौर से उन महिलाओं, उन लड़कियों के लिए मेरा ज़्यादा रहा है कि उनको कैसे उनसे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनकी जानकारी उन तक पहुँच पाए, उनको बोलने का अधिकार मिल पाए, उनको बात रखने का अपने परिवार में, या उनसे संबंधित जो स्वास्थ्य से संबंधित या उसके एजुकेशन से संबंधित या उनके जो एक्सेस से संबंधित कि जो भी इंटाइटल हैं लेकिन उसको पता ही नहीं है कि अच्छा ये किसके लिए है, कब लेना है, क्या करना है।
0: जी जी।
1: तो वो जो जानकारी है आज के दिन वो समस्याएं अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में डोमिनेट करती हैं, खास तौर से ये जो समस्या है आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की कमी के भाव की वजह से और ज्यादा है।
0: बिल्कुल।
1: और दूसरा जो मेजर समस्या है कि ये जो अपना वागड़ क्षेत्र है प्लस जो आदिवासी क्षेत्र है इसमें ज्यादातर जो लोग हैं उनका जुड़ाव खेती और मजदूरी से जुड़ा है। मजदूरी के लिए वो ज़्यादातर, क्योंकि खेती के टुकड़े कम हैं उनके पास, खेती से जितना आजीवन चाहिए परिवार को उतना उनसे नहीं मिल पाता अनाज के अलावा, तो उस वजह से वो लोग बाहर जाते हैं। और बाहर जब वो पुरुष या परिवार जाते हैं तो उनके बच्चों की पढ़ाई का छूटना, परिवार ये खास तौर से महिलाओं को जो आने जाने में या वो घर पे रहती है उसको अलग सामाजिक स्थितियों से झेलना, या पुरुष वहाँ पे जाता है उसको वहाँ पे अच्छी स्थितियाँ नहीं मिल पाना मजदूरी करने में या जो भी छोटी मोटी नौकरी करने में, उनके साथ जो टॉर्चर वहाँ पे होता है ठेकेदार, बड़े ठेकेदार या जो भी लोग वहाँ पे हैं, तो वो जब अपने अनुभव हमको आके बताते हैं और उसमें हमको लगता है कि जो जानकारी का अभाव है खास तौर से, कि मैं जा रहा हूँ तो मेरा लेबर कार्ड नहीं है, मेरा आईडी कार्ड शायद नहीं है, है ना, मेरा बैंक का मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, तो वो समस्याएं जो कहीं ना कहीं उस समाज को और पीछे छोड़ देगी।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें ये बताया है कि किस तरीके से आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनका जुड़ाव प्रकृति से

उसे अच्छी तालीम दे जिसे उसके सुंदरता में और निखार आए। बिरबल की बात सुनकर अकबर कहते हैं, बिरबल तुमने एक बार फिर से हमारा दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, माँ के लिए कैसा भी बच्चा हो वो बहुत ही अच्छा होता है। एक माँ की ममता बच्चे के जीवन में अनमोल से बढ़कर होती है। बच्चे को जिंदगी का एहसास ही पहला माँ की ममता का होता है। माँ वह एक ऐसी हस्ती है जिसके कदमों में जन्नत होती है। एक बच्चे का उसकी माँ का सिर्फ जन्म से ही नहीं सांसों तक का भी नाता होता है। पहली सांस जब बच्चा अपने माँ की कोख में लेता है तभी उनकी माँ के साथ जीवन की डोर बन जाती है। श्रोताओ, माँ एक सबसे अच्छी दोस्त होती है जो बच्चे के जन्म के बाद एक विशेष बंधन बन जाती है। वह अपने बच्चे को सारी चीजें बताती है और उसे हमेशा पूरा करने की कोशिश भी करती है। एक माँ हमेशा अपने बच्चों को सही राह दिखाती है, कभी गलत राह पे नहीं चलने देती। दोस्तों, अगर आप किसी भी मुसीबत में रहते हैं तो अपनी माँ को बताकर मुश्किल हल कर सकते हैं। एक दुनिया में सब कुछ करके आपको हर मुश्किल से आजाद करा सकती है वो सिर्फ और सिर्फ माँ होती है। जरूरत होने पर वह सख्त भी हो जाती है और फिर प्यार भी करने लगती है। वह हमेशा हमारे करियर और भविष्य के लिए गंभीर होती है। उन्हें बस यही टेंशन होती है कि मेरा बच्चा जिंदगी में सफल हो और उसका नाम रोशन हो। उन्हें कभी कोई परेशानी ना हो। अगर इस बात पर आपको कभी डांट भी दे तो आपको बुरा नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि डांट के पीछे छुपे हुए प्यार को देखो। वो आपसे बहुत प्यार करती है, तभी तो वो आपको सफल होते हुए देखना चाहती है। एक माँ कभी अपने बच्चों को बर्बाद हुए नहीं देख सकती। गिरते बच्चे को हाथ देकर संभालती है, रोते हुए बच्चे को आंचल से आंसू पोंछती है, दोस्ती की कमी पूरी करती है, दुख के ऊपर से भी झूठी मुस्कुराहट दिखाती है, बस आपका हौसला बनाए रखती है। माँ की ममता कहना आसान है श्रोताओं, पर निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी माँ की ममता को लेकर, और आप समझ भी गए होंगे कि माँ की ममता क्या होती है। तो दोस्तों, अब समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।

साथियों, असफलता के डर को अपने सपनों के बीच कभी बाधा मत बनने दें, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। जी हाँ श्रोता साथियों, सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम हमारे मेहमान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में जब भी हम हर रविवार को हाजिर होते हैं तो एक नई शख्सियत को कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ते हैं। तो आज भी श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत जुड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन्हीं के जीवन से जुड़ी ढेर सारी बातों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे। सर नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: जी धन्यवाद।
0: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और हमारे सभी श्रोता साथी जानते हैं कि जब भी कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम नई शख्सियत को जोड़ते हैं तो उनके जीवन से जुड़ी ढेर सारी बातों को जानते हैं। तो सर जैसा कि आप आज हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: जी सबसे पहले आपको धन्यवाद और जो वागड़ रेडियो है उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरा जो परिचय है, मेरा नाम अनिफ खान है और मैं रहने वाला हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से हूँ और मेरा पढ़ाई भी डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से ही हुआ है। वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एंड मास्टर डिग्री किया और मैं 2007 में इस डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़ा। शुरू में मैं जब जुड़ा तो मैं झारखंड में प्लेस हुआ और मेरा बैकग्राउंड इस क्षेत्र से नहीं था। मेरा पढ़ाई मैं समथिंग बैंक सेक्टर और ये की तरफ जाने का मेरा ज़्यादा रुझान था।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन मैं जब आदिवासी क्षेत्र में गया और वहाँ पे जाके जब गांव की स्थिति को मैंने नज़दीक से देखा तो धीरे धीरे करके वो दिमाग में या मेरे दिल के अंदर वो बदलाव मैं देख पाया कि नहीं, मैं वो जो पढ़ाई मैं किया हूँ उसको कैसे अब मैं अपने आप से उस समाज को दे पाऊँ।
0: बिल्कुल।
1: तो यही मेरा एक परिचय है।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया और आपने जैसा कि कहा कि आप बैंक के सेक्टर की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन जैसा कि आपने आदिवासी महिलाओं की स्थिति देखी और बहुत सारी चीजों को देखा तो आपका रुझान उस तरफ आया। तो सर जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमें आपके जीवन से रूबरू करा रहे हैं तो यहीं मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो बचपन है वो किस कदर बीता।
1: मेरा बचपन गांव में बीता और मेरे जो पिता हैं वो भी किसान से जुड़े रहे हैं और अभी तक वो किसान से ही जुड़े हैं और मैं गांव में जाता हूं तो मेरा उसी मिट्टी के साथ जुड़ाव है अभी भी।
0: जी जी।
1: इसी वजह से मैं जो संस्था में अभी काम कर रहा हूं, जैसे मैं अभी प्रधान एक संस्था है उसमें जुड़ के इन परिवारों के साथ ज़्यादा नज़दीक से मैं काम कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक जो मेरा गांव के साथ अटूट रिश्ता बन रहा है तो मैंने जो सोसाइटी से लिया है मुझे ये लगता है कि मैं उसको कैसे वापस कर पाऊँ।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से आपका जो जुड़ाव है वो गांव से बना हुआ है और जैसा कि आप आदिवासी महिलाओं को जागरूक करने के लिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप जब समुदाय में कार्य करते हैं, महिलाओं को देखते हैं तो क्या ज्यादातर समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं महिलाओं को लेकर।
1: देखिए, मेरा शुरू से जुड़ाव तो गांव के लोगों से रहा, उसमें खास तौर से महिला और यूथ के साथ मेरा जुड़ाव ज्यादा रहा है क्योंकि उनका जो समस्याएं हैं समाज में, जो वंचित है वो समुदाय सबसे ज्यादा वंचित है क्योंकि एक तो उसमें जो आज के दिन के जो हमारे समाज में जेंडर से संबंधित जो तरीके बने हुए हैं, सामाजिक परिस्थितियां जो बनी हुई हैं वो पितृसत्ता को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं, ना कि एक समानता को लेके बढ़ावा दे रही हैं। तो उन परिवारों या उन खासतौर से उन महिलाओं, उन लड़कियों के लिए मेरा ज़्यादा रहा है कि उनको कैसे उनसे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनकी जानकारी उन तक पहुँच पाए, उनको बोलने का अधिकार मिल पाए, उनको बात रखने का अपने परिवार में, या उनसे संबंधित जो स्वास्थ्य से संबंधित या उसके एजुकेशन से संबंधित या उनके जो एक्सेस से संबंधित कि जो भी इंटाइटल हैं लेकिन उसको पता ही नहीं है कि अच्छा ये किसके लिए है, कब लेना है, क्या करना है।
0: जी जी।
1: तो वो जो जानकारी है आज के दिन वो समस्याएं अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में डोमिनेट करती हैं। खास तौर से ये जो समस्याएं आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की कमी के भाव की वजह से और ज्यादा हैं।
0: बिल्कुल।
1: और दूसरा जो मेजर समस्या है कि ये जो अपना वागड़ क्षेत्र है प्लस जो आदिवासी क्षेत्र है इसमें ज्यादातर जो लोग हैं उनका जुड़ाव खेती और मजदूरी से जुड़ा है। मजदूरी के लिए वो ज़्यादातर, क्योंकि खेती के टुकड़े कम हैं उनके पास, खेती से जितना जीवन चाहिए परिवार को उतना उनसे नहीं मिल पाता अनाज के अलावा, तो उस वजह से वो लोग बाहर जाते हैं। और बाहर जब वो पुरुष या परिवार जाते हैं तो उनके बच्चों की पढ़ाई का छूटना, परिवार, ये खास तौर से महिलाओं को जो आने जाने में या वो घर पे रहती है उसको अलग सामाजिक स्थितियों से झेलना, या पुरुष वहाँ पे जाता है उसको वहाँ पे स्थितियाँ नहीं मिल पाना मजदूरी करने में या जो भी छोटी मोटी नौकरी करने में, उनके साथ जो टॉर्चर वहाँ पे होता है, ठेकेदार, बड़े ठेकेदार या जो भी लोग वहाँ पे हैं, तो वो जब अपने अनुभव हमको आके बताते हैं और उसमें हमको लगता है कि जो जानकारी का अभाव है, खास तौर से कि मैं जा रहा हूँ तो मेरा लेबर कार्ड नहीं है, मेरा आईडी कार्ड शायद नहीं है, है ना, मेरा बैंक का मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, तो वो समस्याएं जो कहीं ना कहीं उस समाज को और पीछे छोड़ दे रही।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें ये बताया है कि किस तरीके से आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनका जुड़ाव प्रकृति से होता है, और हम देखते हैं कि अभी के समय में खेती की जो चीजें हैं वो सीमित होती जा रही है, उसके चलते बहुत सी बार वो पलायन कर देते हैं, और पलायन करने के बाद उनके बच्चों की शिक्षा और साथ ही उनके साथ शोषण संबंधी जो समस्याएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। ऐसे में जब हमारे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो जागरूक होंगे, उन्हें उनके हक के बारे में पता होगा, तो हम देखेंगे कि उनका शोषण होने से बच जाएगा। तो सर, जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो यही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इन सारी समस्याओं से बचने के लिए क्या ऐसे प्रयास हैं जो हमें करने चाहिए जो उन्हें इन सारी चीजों से बचा सके।
1: देखिए, सबसे पहला मुझे लगता है कि उन लोग तक पहुंच बनना, उन तक उनकी आवाज पहुंचना, उनकी जो आवाज है वो हमारे तक आना है या गवर्नमेंट तक पहुंचना, वो उसमें बहुत बड़ा गैप है।
0: बिल्कुल।
1: और जो संसाधन है जो उन तक उनकी पहुंच होनी चाहिए वो पहुंच नहीं बन पाना भी एक बड़ी समस्या है, कि उनके रिसोर्सेज, जैसे उनके पास जमीन है लेकिन पानी नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, उनके पास शायद है छोटा मोटा शिक्षा लेकिन उस संबंधित रोजगार की जानकारी उसको नहीं है जिससे वो रोजगार ले पाए, या महिलाओं को जो शिक्षा से जोड़ने का है तो उसके जो स्कूल हैं या जो आंगनवाड़ी हैं उसमें से मिलने वाले जो उनके अधिकार हैं वो शायद उनके बारे में उनको जानकारी उतना नहीं है या उनको उतना एक्सेस नहीं हो पा रहा है दूरी या उनके जो रास्ते हैं वहाँ तक पहुँचने के, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बेसिक समस्याएँ हैं जो हम देखते हैं खासतौर से जो आदिवासी क्षेत्र हैं। अगर उस पर काम किया जाए मिल के, एक और बड़ा चीज़ मैं देखता हूँ कि आज के दिन जो काम हो रहा है, जो अलग अलग तरीके से काम किया जा रहा है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, डिपार्टमेंट हैं या समाज सेवी लोग हैं, वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। अगर यही तीनों चारों पांचों इंस्टीट्यूशन है अगर वो एक साथ मिलके एक एरिया के विकास के लिए बैठ के बात करते हैं और उसको अगर आगे लेके जाएंगे तो शायद, और उसी एरिया की महिलाएं, उसी एरिया के यूथ, उनको भी उसी प्लेटफॉर्म में जोड़ें, तो शायद है कि उनके अनुभवों के साथ उनके तरीकों के हिसाब से हम लोग के कुछ कर पाएं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि सभी को एक साथ मिलकर प्रयास करने की जरूरत है, साथ ही आदिवासी जो समुदाय है उनकी आवाज जो है वो सरकार तक और बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो उनके लिए कार्य करती है वहां तक पहुंचने की जरूरत है। तो सर, जैसा कि आपने आपके फील्ड से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें हमें बताई है, यहीं अब मैं आपके जीवन के बारे में जानना चाहूंगी कि आपके जीवन में क्या चीजें रही, कैसे क्या हुआ, कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां आप चीजों को लेकर परेशान हुए लेकिन फिर आपने हार नहीं मानी और उस चीज को प्राप्त किया।
1: जी, मैं अगर बोलूंगा कि मैं भी उसी परिवार से जुड़ा हूँ, मेरे देखेंगे तो मेरे पिताजी के पास सिर्फ 2 बीघा लैंड ही था लेकिन हम उसी से गुजारा करते थे, लेकिन आसपास की जमीन को मजदूरी करके मेरे पिताजी खेतीबाड़ी किए, लेकिन उन्होंने मेरे शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया, मुझे उस तरीके के संसाधन दे पाया कि मैं पढ़ पाया। और शुरू में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे इस तरीके की जो समस्याएं हैं जो आदिवासी क्षेत्र वाली, ये मेरे अनुभव नहीं थे क्योंकि ये मेरी लाइफ में मैंने कभी इतना नज़दीक से नहीं देखे थे।
0: जी जी।
1: तो जब मैं पढ़ते हुए और मेरा जब कैंपस से रिक्रूट हुआ तो मुझे भी थोड़ा एक बार तो डर लगा कि मैं एक झारखंड में जा रहा हूँ तो एक आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पे नक्सल वाला एरिया है, तो मैं वहाँ पे सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो वो एक मेरे लिए बड़ा चैलेंज था निर्णय लेने में। लेकिन उस टाइम में मैंने जब उनके साथ वहाँ पे गांव में ही मैंने 3 महीना बिताया उनके साथ, नजदीक से, तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, कि जब मैंने उस परिवार को बहुत नजदीक से देखा, उसकी हर चीज को मैंने अनुभव किया, तब मुझे लगा कि जितना मुझे मिला है तो वो तो मुझे बहुत बड़ा प्रिविलेज था, तो वो प्रिविलेज को मैं इन परिवारों के साथ मैं कैसे साझा कर पाऊं और इनके लिए मैं अपना कुछ अंश मतलब मेरा एजुकेशन का पोर्शन मैं उनको कैसे ये कर पाऊं ज्ञान के रूप में या मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे अनुभव के तौर पे, मैं उनके साथ रह के हार्ट एंड हार्ट से मैं उनके साथ रह के ये वाला चीज कर पाया, तो यही मेरा एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और इसी वजह से मैं इस सेक्टर में इतने साल से 15-16 साल से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और जो मुझे एनर्जी देता है जब भी कोई महिला की कहानी मैं सुनता हूँ और वो जो बदलाव वो बताती है उसके बच्चों के बारे में या उसकी खुद की जर्नी के बारे में, तो वो मुझे एक अलग तरीके का एनर्जी देता है और मोटिवेट करता है इस सेक्टर को और ज्यादा ये करने के लिए।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी बातों से हमें अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: तो मैं एक तो बोलूंगा कि ये जो वागड़ रेडियो है और जो वागधारा की एक ये पहल है, इससे लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ज्यादा से ज्यादा इस मंच के माध्यम से वो अपनी आवाज को लेके आए रखें, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी अगर वो अपने नई पीढ़ी को दे पाए यहाँ से जुड़ के, तो ये एक मुझे लगता है उनके लिए एक अच्छा क्षेत्र होगा जिसकी वजह से वो अपने आने वाले टाइम में सुधार कर पाए।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने कार्यक्रम में हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है, तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में प्रधान संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे अनिफ खान जी जुड़े हुए थे, जिनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से हमें अपने जीवन में आने वाली चीजों को बदलने की जरूरत है और बदलाव हर किसी के जीवन में आता है। तो आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में होने वाली सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारी।

साथियों, इस गीत के बाद हम विदा लेते हैं कार्यक्रम हमारे मेहमान से। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी

आईडी लिख लीजिए। इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vaghdhara.org, radio@vaghdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम हमारे मेहमान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: मानव जीवन है खतरे में, इसमें है हम सबकी समझदारी। हरियाली को बढ़ाना है, प्लास्टिक को हटाना है।
1: प्लास्टिक का प्रयोग न करें, स्वास्थ्य के खतरे को कम करें। पेड़ लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे।
0: जी हाँ साथियों, हरी भरी प्रकृति का है यह पैगाम, स्वस्थ सुखी हो हर इंसान।
1: वागड़ रेडियो 90.8 FM द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: सृष्टि का सृजन है बेटी, घर का आंगन है बेटी।
1: जिंदगी को जिंदगी से जोड़ते जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
2: जी हाँ, बेटियों को मत रखो निरक्षर, बेटियाँ भी बनेगी बड़ी अफसर।
3: खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी।
0: जी हाँ, दुश्मनों का मुकाबला डट के कर सकती है बेटी, मत बांधो बेड़ियों में ऊंची उड़ान भर सकती है बेटी।
1: जी हाँ साथियों, दे दो दर्जा बेटियों को समान अधिकार का, उनकी ख्वाहिशों पर न अंकुश लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
2: संसार देश जिंदगी की जरूरत है बेटी, बेटी से बन औरत हर आदमी की पूरक है बेटी।
3: जी हाँ साथियों, बेटी पत्नी माँ कई रूप है बेटी के, प्यार स्नेह एवं सानिध्य हर रूप में देती है।
0: भ्रूण हत्या घोर अपराध, देश का अपमान है, बेटी के प्रति छोड़ दो निष्ठा, इसी में समाधान है।
1: जी हाँ साथियों, बनो ज्ञानी बनो दानी, अब तो लोगों जग जाओ, मत करो भ्रूण हत्या, बेटी बचाने में लग जाओ।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: बच्चों के अधिकार।
1: घर परिवार में दुलार, माँ का पहला दूध व अर्ध ठोस आहार, बच्चों का है अधिकार।
0: जी हाँ, पर्यावरण सुधार, हरा भरा संसार, प्रेम पूर्ण व्यवहार और शिक्षा संस्कार, ये भी है बच्चों के अधिकार।
5: बिल्कुल सही, सभी प्रदूषण को रोकें, बस्ता लेवे हल्का, बाल मजदूरी को रोकें, पिता को दे रोजगार, ये सभी हैं बच्चों के अधिकार।
0: वागधारा संस्था और वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे गोरी, इतने सुस्त क्यों दिख रही हो, कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
2: अरे दीदी, क्या करूं, कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
1: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए, इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
2: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
1: ये हुई ना बात गोरी।
0: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में। साथियों सत्य अहिंसा का था वो पुजारी, कभी ना जिसने हिम्मत हारी, जिसने हमें दी आजादी, जन जन है उसका आभारी।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि श्रोता साथियों, पिछले रविवार को हमारे बीच में अहिंसा प्रकरण को लेकर बातचीत चल रही थी, आज भी श्रोता साथियों, अगर इस प्रकरण से आगे हम बात करें तो अहिंसा जब सेवा का रूप धारण करती है तब वह समाज के सबसे दलित, सबसे पिछड़े हुए लोगों से आरंभ करती है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल,
0: स्वयं गांधी जी ने इसके लिए हजारों मीलों की यात्रा की है। हम देखते हैं कि ठेठ अंतिम दिनों तक काम के अतिशय बोझ तले दबे होने पर भी दिन रात एक करके थर्ड क्लास के डिब्बे से स्टेशन से स्टेशन हाथ बाहर निकाल कर हरिजन फंड के लिए पैसे उगाए थे।
1: बिल्कुल,
0: गांधी जी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे साथियों, पर ऐसा करते हुए वे किसी को पंगु बनाना नहीं चाहते थे। अतः स्वयं भीख मांगते हुए किसी को भीख मांगा नहीं देते थे, इसके बदले वे कुछ न कुछ काम देने का प्रयास करते। उसी में से दोस्तों विकसित हुई चरखे की प्रवृत्ति, जिसने लगभग 200,000 गांव तक काटने वाली बहनों और बुनकर भाइयों तक मजदूरी पहुंचाई थी।
1: बिल्कुल,
0: सेवा के इसी विशाल काम में से ठेठ गांव तक पहुंचने वाले संगठन उन्होंने ही खड़े किए थे। हम देखते हैं कि अखिल भारतीय चरखा संघ, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ और हिंदुस्तानी तालीम संघ, अधिम जाति सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, ये सभी श्रोता साथियों संगठन गांधी जी की अहिंसा के विधायक पक्ष के सुसंगठित नमूने ही थे।
1: बिल्कुल, यही बात करी तो श्रोता साथियों, गांधी जी के खादी आंदोलन ने राजनीतिक रूप भी धारण किया था। सूत के धागे से स्वराज का उनका नारा कोई खोखला नहीं था। उसके कारण लंकाशायर और मैनचेस्टर की मीलें बंद हो गई थी, परंतु विदेशी माल के बहिष्कार या विलायती कपड़ों की होली जैसे नकारात्मक कार्यक्रमों के पीछे भी गांधी जी की अहिंसा का सकारात्मक पक्ष था। कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि दुनिया को उनका विश्वास तब हुआ जब गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड में गांधी जी ने स्वयं मांग की और बंद मिलों के कारीगरों से मिलने गए। ब्रिटिश सरकार को तब भय था कि भूख से पीड़ित मजदूर कहीं उनके इस मेहमान पर हमला न कर बैठे, पर गांधी जी उनके बीच खुलकर घूमे। इन मजदूरों को उन्होंने समझाया कि खादी के कार्यक्रम से अगर उनके पेट में एक एक इंच गड्ढे पड़ गए हैं तो ब्रिटिश मिलों के कारण हिंदुस्तान के मजदूरों के पेट में कहीं ज्यादा गड्ढे पड़े थे। मजदूरों के प्रति प्रेम की वजह से ही उन्होंने यह प्रवृत्ति हाथ में ली थी। गांधी जी कपड़ा मिलों के क्षेत्र में जहाँ गए वहाँ उनका हार्दिक स्वागत हुआ था। गांधी जी अहिंसा को ऐसा तत्व मानते थे कशिश जो समाज को टिकाए रखता है। तभी वे कहते थे कि जिस तरह गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी और अन्य ग्रह नक्षत्रों को संतुलित और व्यवस्थित रखता है, उसी तरह अहिंसा समाज को संतुलित रखती है। इसी कारण वे ब्रिटिश या दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा की गई हिंसा के विरोधी थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का कर्म क्षेत्र अपेक्षाकृत मर्यादित था, इसी से वे आंदोलन को अहिंसक रख सके थे।
0: बिल्कुल,
1: भारत में विशाल क्षेत्र था और यहाँ समस्याएं भी तरह तरह की थी। जहाँ गांधी जी पूरे देश को अहिंसा के मार्ग पर ले जा सके थे, परंतु 30 वर्षों तक प्रत्येक क्षेत्र में अहिंसा को बनाए रखने में सफल नहीं हुए थे।
0: जी हाँ,
1: विशेष रूप से उनके जीवन के अंत भाग में उत्तर भारत में जो कौमी दावानल फटा था उसे पूरी तरह से वे काबू नहीं कर सके थे। अहिंसा का मार्ग खांडे की धार पर चलने जैसा कठिन और सीधा था। वे कौमी हिंसा के समक्ष भी जूझते रहे। अत्यंत धैर्य पूर्वक और ताप झेलते हुए वे स्वयं जल कर प्रकाश देते रहे। आंतरिक हिंसा का सामना करने के लिए उन्होंने शांति सेना का मार्ग सोचा। श्रोता साथियों, पूरे देश में शांति सेना संगठित करने का उनका सपना अधूरा रहा था, परंतु अपने स्तर पर तो वे एक आदर्श शांति सैनिक के रूप में जिए और मरे थे।
0: बिल्कुल,
1: नोआखाली, बिहार, दिल्ली और कलकत्ते में उनके द्वारा किए गए शांति प्रयास बेजोड़ थे। गांधी जी ऐसा मानते थे कशिश के धैर्य के साथ कष्ट सहन करते जाने से मनुष्य के मन का मेल जलकर खाक हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: उत्तरोत्तर शुद्ध होता जाता है। मनुष्य का प्रेम जब चरम सीमा तक पहुँचता है तभी वह प्राणहुति दे सकता है। इस मान्यता को उन्होंने अपने जीवन में अक्षरश सिद्ध कर बताया था।
0: जी हाँ अंजलि जी, साथियों ये एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ गांधी जी अहिंसा का प्रत्यक्ष प्रयोग करके बता नहीं सकते थे। वह क्षेत्र था विदेशी आक्रमण समय अहिंसा। दक्षिण अफ्रीका में दो युद्धों के समय उन्होंने घायलों की सेवा करने के लिए टुकड़ियां संगठित की थी।
1: बिल्कुल,
0: वही ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी ने उन्हें इन दोनों युद्धों और प्रथम विश्व युद्ध के समय भी अंग्रेज साम्राज्य की तरफ रखा। जुलू युद्ध के वक्त वे गोरी सरकार के पक्ष में थे,
1: पर उन्होंने घायल जुलो लोगों की सेवा अत्यंत प्रेम पूर्वक की थी।
2: बिल्कुल
1: साथियों, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तब इंग्लैंड में भी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका जैसी स्वयंसेवकों की टुकड़ी संगठित करने के प्रयास किए थे, लेकिन बीमारी के कारण उनको भारत आ जाना पड़ा। इस युद्ध के समय उन्होंने भारत में तो रीति के अनुसार सैनिक भर्ती का प्रयास किया था, लेकिन उसमें उन्हें विशेष सफलता नहीं मिल पाई।
2: बिल्कुल
1: हम देखते हैं कि जीवन के दूसरे अनेक विषयों की तरह अहिंसा के बारे में गांधी जी के विचारों का भी विकास हुआ था। प्रथम महायुद्ध के समय जो सैनिक भर्ती करते थे अंजलि जी, वे द्वितीय महायुद्ध के समय युद्ध विरोधी बन चुके थे।
2: बिल्कुल

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं सबके गांधी गांधी आत्मदर्शन में अहिंसा प्रकरण की ओर। श्रोता साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी फौजी जब दक्षिणी एशिया की भूमि को हैरान परेशान करने लगी, तब अहिंसा के इस पुजारी ने पूछा कि विदेशी आक्रमण के समय अहिंसा किस तरह कारगर होगी। गांधी जी ने इस सवाल की तरफ भी ध्यान तो दिया ही था, बल्कि यदि जापानी सेनाएं भारत के पूर्व तट पर उतरे तो हिंद की प्रजा उसका सामना किस तरह कर सकती है। इस विषय की पूरी जांच पड़ताल करने के लिए उन्होंने मीरा बहन को उड़ीसा भेजा था। श्री सतीश चंद्र दास गुप्ता के नेतृत्व में बंगाल के कई सर्वोदय कार्यकर्ता भी तट विभाग में घूमकर लोकमानस को बनाए रखने के प्रयास करते थे। गांधी जी ने विदेशी आक्रमण के अहिंसक प्रतिकार के विषय में कशिश एक अमेरिकी अखबार को साक्षात्कार भी किया था। इस साक्षात्कार के विवरण और मीरा बहन के साथ हुए पत्र व्यवहार के आधार पर हमारी आंखों के आगे इस बाबत गांधी की कल्पना का एक चित्र खड़ा होता है।
1: बिल्कुल।
0: अलबत्ता जापानी सेना का विधिवत आक्रमण भारत पर नहीं हुआ था, यह स्वतंत्र भारत को अहिंसक प्रतिकार के संबंध में अंगुली उठाने का प्रत्यक्ष अवसर गांधी जी को मिला नहीं था। पर उस बाबत गांधी की कल्पना का सार संक्षेप में इस प्रकार हम बता सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, गांधी जी मानते थे कि आत्मरक्षा के लिए मारने को नहीं वरन मरने के लिए तैयारी चाहिए। स्वतंत्र भारत स्वेच्छा पूर्वक हिंसक सेना न रहने का निर्णय करेगा। यदि यह ऐसा करेगा तो स्वाभाविक रीति से इसे दुनिया के अनेक देशों की मित्रता मिलेगी और शेष दुनिया की सहानुभूति भी प्राप्त होगी।
1: बिल्कुल।
0: स्वतंत्र भारत की विदेशी नीति ऐसी होगी कशिश कि जिसके कारण इसका सभी देशों के साथ मैत्री संबंध होगा, ताकि इस पर आक्रमण की संभावनाएं घट जाएंगी। फिर भी अगर कोई सत्ता या संपत्ति लोलुप देश भारत भूमि पर सीधा आक्रमण करेगा तो अहिंसक सैनिक विशाल संख्या में इसकी सीमा पर निशस्त्र खड़े रहेंगे।
1: जी हाँ।
0: आक्रमकों की तोपों के सामने खड़े रहकर अपना बलिदान देंगे। ऐसे बलिदान के बाद भी यदि आक्रमण करने वाली सेनाएं भारत के अहिंसक सैनिकों की लाशों को रौंदकर भारत भूमि पर आगे घुस आएगी तो स्वतंत्र भारत की जनता का प्रत्येक वर्ग इस सेना के प्रति असहयोग रहेगा। यह असहयोग ऐसा सख्त होगा कि आक्रामक सैनिकों के लिए किसी भी तरह का जीवन व्यवहार कर पाना असंभव हो जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: उन्हें खाना नहीं मिलेगा, भूमि पानी वायु पर वाहन व्यवहार सामान ढोने संदेश व्यवहार हेतु किसी भी प्रकार की सेवा नहीं मिलेगी। रेलवे डाक विभाग बैंक उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करने से इनकार करेगी। इस प्रकार आक्रमक के लिए सरकार के बतौर काम कर पाना कठिन हो जाएगा।
1: जी हाँ साथियों, अलबत्ता यह एक कल्पना चित्र ही था। इसे कार्यान्वित करने के लिए गांधी जी ने अपने आश्रम वासियों से तोपों के मुहाने पर खड़े होने वाली सेना के सैनिक बनने के लिए तैयार रहने को कहा था। साथियों, लेखक के माता पिता दोनों ऐसी ही सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हुए थे। ऐसा यह कल्पना चित्र गांधी जी और उनके साथियों के लिए वास्तविक था। हम देखते हैं कि आज संसार में अनेक स्थानों पर शांति साधक इस संबंध में शोध करते हैं, तब उनके शोध के विषयों में गांधी जी द्वारा कल्पित यह चित्र भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
0: बिल्कुल।
1: गांधी जी को विशेष रूप से इस देश के लोगों में विद्यमान कायरता दूर करने का काम करना पड़ा था। अंजलि जी, वे एकाधिक बार यह कह चुके थे कि कायरता के बजाय हिंसा बेहतर है, पर वे हर बार ऐसा भी कहते थे कि हिंसा के बजाय अहिंसा कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है।
0: बिल्कुल।
1: कई हिंसा के समर्थक और कई बार तो सरकारी तंत्र तक कायरता और हिंसा बाबत गांधी जी के इन वचनों का दुरुपयोग हिंसा के प्रचार हेतु करते हैं। विशेष रूप से ऐसा करना उनके देहांत के बाद उनकी पीठ पीछे प्रहार करने के बराबर है। साथियों, भोली जनता को धोखा देने के प्रयास के समान है ये। स्वतंत्रता संग्राम के समय गांधी जी ने जो अहिंसा का मार्ग बताया था, वह एक प्रकार से देखें तो संकट को अवसर में बदल डालने का पराक्रमी कार्यक्रम था।
0: बिल्कुल।
1: उस समय संकट यह था साथियों कि अपना देश गुलाम था और इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए देश के पास शस्त्र नहीं थे। विनी शस्त्र संघर्ष का मार्ग बताकर गांधी जी ने इस संकट को अवसर में पलट दिया। साथियों, गांधी जी जिस अहिंसा की बात करते थे वह वीरों की अहिंसा की बात थी।
0: बिल्कुल।
1: उनके मन में अहिंसा के संपूर्ण दर्शन के संबंध में जीवंत निष्ठा थी। वहीं कांग्रेस ने जिस अहिंसा को अपनाया था उसे निष्ठा के रूप में नहीं बल्कि एक रणनीति के रूप में अपनाया था।
0: जी हाँ।
1: इनके द्वारा श्रोता साथियों प्रयुक्त अहिंसक शक्ति प्रेम से स्फुटित शक्ति नहीं थी, अतः कई बार देश के अहिंसक आंदोलनों में हिंसा प्रयुक्त नहीं होती थी, यह सही है, पर वह गांधी जी के अर्थ में शुद्ध अहिंसा नहीं थी, इसलिए नीति के रूप में स्वीकार की गई अहिंसा से उन्होंने काम चलाया और वे स्वयं तो अहिंसा में संपूर्ण निष्ठा रखते ही थे। साथियों
0: बिल्कुल श्रोता साथियों, उनके अनेक साथी भी इस संबंध में गांधी जी के साथ थे, पर देश के विशाल जन आंदोलन में जुड़े अधिकांश लोगों की धारणा अलग अलग थी। किसी से जीवन के अंतिम भाग में गांधी जी ने कहा कि ईश्वर को मुझसे अमुक काम कराना था, इस संबंध में मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मैंने कायरों की अहिंसा से भी काम चला लिया।
1: वीरों
0: की अहिंसा का यदि आचरण किया जाए तो उनके परिणाम कैसे निकलेंगे, यह हम गांधी जी के जीवन के अनेक उदाहरण में देख चुके हैं। संपूर्ण समाज, समाज का बड़ा भाग यदि वीरों की अहिंसा का उपयोग करे तो इसके शेष परिणाम आए, यह अभी दुनिया को देखना शेष है।
1: बिल्कुल,
0: यह थोड़ा अहिंसा धर्म और अहिंसा नीति पर विचार कर लेना चाहिए।
1: जी,
0: कांग्रेस ने अहिंसा को एक नीति के रूप में ही स्वीकार किया था, एक धर्म के रूप में नहीं। गांधी जी ने वीरों की अहिंसा और कायरों की अहिंसा के जो भेद बताए थे कशिश, वे भी इस बात को ध्यान में रखकर ही थे कि ऐसा माना जा सकता है कि विदेशों में बहुत से शांतिवादी और शांति के बारे में शोध करने वाले अहिंसा का एक कौशल्य युक्त रीति के रूप में महत्व मानते हैं, पर अहिंसा में एक जीवन शैली या फिलोसोफी के रूप में वे ज्यादा रुचि नहीं लेते।
1: बिल्कुल,
0: मानते हैं कि यह व्यक्तिगत रुचि का विषय है, जिनका ऐसा मानना हो वे माने, बाकी संपूर्ण विशाल समूह के लिए अहिंसा का उपयोग तो एक टेक्निक के रूप में ही है। गांधी जी के लिए अहिंसा के तत्व ज्ञान का ही महत्व था, जिसके अनुरूप वे अपनी संपूर्ण जीवन शैली बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। टेक्निक एक साधन है, जरूरत हो तब काम में ले लो और जरूरत न हो तब छोड़ जा सके, ऐसा साधन। गांधी जी स्वराज के बदले भी अहिंसा छोड़ने को तैयार न होते, क्योंकि वे इसे जीवन से जुड़ा धर्म मानते थे।
1: बिल्कुल अंतरे जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों, आज हमने बात की अहिंसा प्रकरण को लेकर, अगले रविवार को हम आपसे फिर से जुड़ेंगे एक नए प्रकरण के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन से जाने की अनुमति। नमस्कार।
2: तो साथियों, सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
3: ताजी खबर, कमला ने घर में चार बैरिए साने साने भराई गई। कौन हती कमला आ बैरिए?
4: अरे आ सब तो मारी दोस्तनी हती, आ सब खबर लेवा आवी हती कि मारी मुन्नी नो तंदुरुस्ती नो राज हूँ है।
3: राज अमने भी बताड़ो।
4: 100 महीना था तमेस पेट पूजा, रसोड़ा में जी भी हो चिमकी दार चावल ले लो, शाक भाजी मलावी ने बनावो, आने पीसी ने गाड़ो बनावो, ने अगर आपड़े घोर में घी हो तो ऊपर थकी घी मलावो, ने सोरा ने खवड़ावो, दाड़ा में तण वकत हो ग्रामनी कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, वाग रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में जारी। दोस्तों, तुम अपने खान पान का रखो अच्छे से ध्यान।
4: जी हाँ, वरना बाद में पछताओगे, यह बात आज ही तुम जान लो।
5: दूध दही है बहुत जरूरी, फल तरकारी बड़ी है न्यारी,
3: यह सब पोषण की है खान, जो तुम इनसे दूर रहोगे होगा सेहत का नुकसान।
5: वाग्धारा संस्थान और वागर रेडियो द्वारा जनहित में जारी।
6: आंगनवाड़ी जाई ने तारो नाम लगाओ, भारी पोग बहन तुम जासे तीन कराओ,
3: सोराना नक्काबजू नाना राको वार, साफ सफाई राखजू खाजू सब्जी दार,
6: भिंडा तुरिए आलड़ी कोराने वालोर, रोपो खाओ सब्जिए डीले आवे जोर,
3: सीरो दलियो राबड़ी थूली सोका दाल, पांचवे महीने बाल ने आ खवानो आल,
6: अणी वातनु ध्यान राखो आपड़ो जीवन सुरक्षित राखो।
1: नमस्कार साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई। कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर और स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि हम हर रविवार को हाजिर हो जाते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई को लेकर, एक नई स्वस्थ भारतीय व्यंजन विधि को लेकर। तो श्रोता साथियों, आज भी जैसा कि रविवार का दिन है और आज भी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नई स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधियाँ। श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे दो व्यंजन विधियाँ रहने वाली है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अगर हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तो हम हमारे भविष्य को बेहतर कर पाएंगे, और अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे, तो हम देख सकते हैं कि इसका प्रभाव हमारे भविष्य पर भी पड़ेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज भी मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए कुछ नई नई स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधियां लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। तो बातें ढेर सारी होंगी श्रोता साथियों हमारी आज कार्यक्रम में आपसे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों उसी दस्तूर को निभाते हुए पहले गीत सुन लिया जाए। जी बिल्कुल, तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में, और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहेंगे हम कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और अब मुझे आपको बताना है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारी आपसी कौन सी स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधियाँ रहने वाली है। साथियों, सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बनाने जा रहे हैं स्वास्थ्य तरीके से पाव भाजी। साथियों, जैसा कि पाव भाजी तो हम सभी ने खाई है और वो देखते हैं कि सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी होती है, तो ऐसे में आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पाव भाजी तो बनाएंगे ही, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, यानी कि हेल्दी तरीके से। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको पाव भाजी बनाने की विधि के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम हेल्दी पाव भाजी बनाने की सामग्री को जान लेते हैं। तो श्रोता साथियों, आप पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा, मैं आपको सामग्री बताने जा रही हूँ, आप उसे लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो साथियों, हमें चाहिए होंगे आलू, जो कि उबले हुए होने चाहिए, इसे आप दो ले सकते हैं मध्यम आकार के। गाजर भी इसमें चाहिए होगी, जो कि हमें कद्दूकस करनी होगी, ये भी हम एक ले सकते हैं, या फिर हम अगर ज्यादा बनाना चाहते हैं तो हम इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ ही सब्जियों में आप फूलगोभी ले लें, जो कि कटी हुई होनी चाहिए। हम इसमें मटर का भी इस्तेमाल करेंगे साथियों, तो हमें मटर भी लेना है। शिमला मिर्च, जो कि कटी हुई होनी चाहिए। टमाटर का इस्तेमाल हम करेंगे, वो भी कटा हुआ हमें चाहिए होगा। श्रोता साथियों, आप इसमें प्याज ले लें, जो कि बहुत ही ज़्यादा बारीक कटे हुए होने चाहिए। हरी मिर्च का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे, वो भी बारीक कटी हुई हमें यहाँ पर आवश्यकता होगी। इसी के साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट आप बना लें साथियों पहले ही, क्योंकि अदरक और लहसुन के पेस्ट से इसमें स्वाद बेहतर आएगा। इसके बाद ही हल्दी पाउडर आप इसमें लेंगे, लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल हम करेंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, पाव भाजी मसाला और नमक हमें स्वाद अनुसार लेना है। इसी के साथ ही तेल का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे, जो कि हम आवश्यकता अनुसार लेंगे। साथ ही यहाँ पर हरा धनिया आप ले लें, जो कि बारीक कटा हुआ होना चाहिए। नींबू का रस यहाँ पर चाहिए होगा स्वाद को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ ही पाव भी चाहिए होंगे, जो हम मात्रा के अनुसार लेंगे। अगर हम थोड़ी ही पाव भाजी बना रहे हैं तो हम इसमें 6 से 8 ब्रेड ले लेंगे पाव के, या फिर हम इसमें ओट्स पाव भी ले सकते हैं, मल्टीग्रेन पाव भी ले सकते हैं। जो भी आप लेना चाहें साथियों, अपनी सुविधा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। तो ये तो सामग्री मैंने आपको बता दी है साथियों, कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। मैं सामग्री पुनः दोहराना चाहूंगी साथियों, क्योंकि अगर कुछ रह गया हो तो आप उसे फिर से लिख सकते हैं। जैसे कि हमें आलू चाहिए होंगे उबले हुए, गाजर कद्दूकस की हुई, फूलगोभी हमें कटी हुई चाहिए होगी, मटर का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई चाहिए होंगी, टमाटर भी हमें यहाँ पर कटे हुए चाहिए होंगे, प्याज जो कि बारीक कटे हुए होंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हरी मिर्च का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट हम पहले से ही बना लेंगे, हल्दी पाउडर का इस्तेमाल होगा, लाल मिर्च पाउडर लेंगे, धनिया पाउडर लेंगे, गरम मसाला पाउडर लेंगे, और अगर पाव भाजी मसाला भी आप लेंगे श्रोता साथियों, तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा। साथ ही नमक का इस्तेमाल आप इसमें स्वाद अनुसार करने वाले हैं। तेल हम लेंगे, नींबू का रस हमें चाहिए होगा, साथ ही आवश्यकता अनुसार पाव भी हम लेंगे। तो दोस्तों, ये तो हम सामग्री जान पाए, अब यही अगर इसे बनाने की विधि के बारे में जाने तो शुरू करते हैं साथियों पाव भाजी बनाने की विधि। तो सबसे पहले तो दोस्तों, हमें सारी सब्जियों को मिलाकर उबालना होगा, यानी कि सबसे पहले हमें आलू, गाजर, फूल गोभी और मटर को पानी में उबाल लेना है। अब श्रोता साथियों, जब सब्जियां उबल जाएं तो उन्हें हमें कद्दूकस कर लेना है, यानी कि मेश कर लेना है और एक तरफ रख देना है। इसके बाद में प्याज, टमाटर और मसाले हमें तैयार करने हैं साथियों, जिसमें हम कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे, उसे गर्म करेंगे। अब उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च डालकर थोड़ी देर तक भूनेंगे साथियों। अब श्रोता साथियों, प्याज जो है वो हम देखेंगे कि हल्का सुनहरा हो गया है, तो सुनहरा होने के बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट उसमें डालकर कुछ सेकंड के लिए और भूनेंगे। अब साथियों, जो हमने सब्जियां उबाली थी, जो मेश कर रखी थी, उन सब्जियों को हमें इसमें मिला लेना है। अब इसमें टमाटर डालकर हम इसे पकने देंगे। टमाटर अच्छे से पक जाए श्रोता साथियों, तो उसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और पाव भाजी मसाला डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जब मसाले अच्छी तरीके से भून जाए श्रोता साथियों, तो हम इसमें उबली हुई सब्जियां डालकर इसे मिक्स करेंगे। अब श्रोता साथियों, सब्जियों को अच्छे से मिला लें आप, और फिर थोड़ी देर तक उसे ऐसे ही रहने दें। फिर थोड़ी देर बाद पानी डालकर उसे और मिक्स करें, ताकि भाजी नरम और गीली हो जाए साथियों। अब 5 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर इसे पकने दें,
ताकि सभी मसाले और सब्जियां अच्छे से एक दूसरे से मिल जाएं। अब श्रोता साथियों, जब तक हमारी भाजी बनकर तैयार हो रही है, तब तक हम करेंगे क्या, सर्व करने की तैयारी करेंगे। यानी कि हमें पाव को तवा पर हल्का सा सेंक लेना है, उसे हल्का सा घी लगाकर गर्म करना है। साथियों, अब जैसे ही अगर भाजी तैयार हो जाती है तो हमें हरा धनिया और नींबू का रस उसमें डालकर उसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब श्रोता साथियों, जैसा कि पाव और भाजी दोनों बनकर तैयार है, तो अब हमें पाव के साथ गर्मा गर्म भाजी परोसनी है। साथ में हम इसमें नींबू और प्याज की कटी हुई रिंग्स भी डालकर इसके स्वाद को और बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगी कि आप हेल्दी पाव भाजी को ताजे दही या फिर हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। साथियों, ये स्वादिष्ट और सेहतमंद दोनों है। तो दोस्तों, ये तो हमारे कार्यक्रम में स्वादिष्ट पाव भाजी बनकर तैयार हो गई। आगे भी एक और ऐसी स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधि को लेकर मैं आपसे बातचीत जरूर करूंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि साथियों, गीत से पहले एक बहुत ही स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधि के बारे में मैंने आपको बताया था। हमने जाना था कि हम घर पर किस प्रकार से आसान तरीके से हेल्दी पाव भाजी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जैसा कि वो रेसिपी तो मेरी आपसे पूरी हो चुकी थी, अब यही जानते हैं साथियों एक और नई व्यंजन विधि के बारे में। साथियों, अब हम बनाने वाले हैं चने की दाल का हलवा। साथियों, चने की दाल तो आप सभी ने देखी होगी, क्योंकि अक्सर हम दाल में चने की दाल का भी चुनाव करते हैं, जो कि स्वाद में बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद भी होती है। तो ऐसे में साथियों, आज हम बनाने वाले हैं चने की दाल का हलवा। इसकी अगर सामग्री के बारे में आपको बताऊं, तो यहाँ पर आपको चने की दाल लेनी है 1 कप, घी की आवश्यकता होगी जो कि आपको 2 से 3 चम्मच लेना है, गुड़ आपको लेना है 1/2 कप, पानी का आप इसमें इस्तेमाल आवश्यकता अनुसार करने वाले हैं, काजू बादाम कटे हुए होने चाहिए, इलायची पाउडर का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे जो कि हम 1/4 चम्मच लेंगे।

फिर चने की दाल जो आपने भिगो कर रखी है उस दाल को मिक्सी में पीस लेना है। साथियों अब एक कढ़ाई में घी गरम करना है, पिसी हुई दाल जो है उसे डालकर उसमें भूनना है, फिर धीरे धीरे पानी डालकर पकने देना है साथियों, और फिर आपको गुड़ डालना है। साथियों जब दाल पूरी तरह पक जाए और जो गुड़ आपने डाला है वो मिलकर हलवे जैसा बन जाए तो हम उसमें काजू बादाम जो हमने लिए थे वो डाल देंगे बारीक कटे हुए, और हम इसमें अब ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं साथियों कि हमारा गर्मा गर्म चने की दाल का हलवा बनकर तैयार है। हम चाहे तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं साथियों, क्योंकि पिस्ता भी एक तरह की सूखा मेवा होता है जो कि सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इस तरीके से श्रोता साथियों आप घर पर चने की दाल का हलवा बनाकर भी खा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो श्रोता साथियों ये थी हमारे आज के कार्यक्रम में दो व्यंजन विधियाँ। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक हेल्दी पाव भाजी बनाने की रेसिपी के बारे में बताया था, और अभी हमने जाना कि हम चने की दाल का हलवा कैसे बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ साथियों कि ये दोनों व्यंजन विधियाँ आपको जरूर पसंद आई होंगी, और आप भी अपने घर पर इन्हें बनाकर इनका सेवन कर सेहतमंद रहेंगे। तो श्रोता साथियों जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी है और अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो मैं जरूर लूंगी दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको सुनवाना चाहूंगी यहाँ पर एक और गीत।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से मैं विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्र द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, ये मुलाकात हमारी आपसे फिर होंगी अगले रविवार को कुछ नई स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन विधियों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ श्रोता साथियों, नमस्कार।

0: बच्चों के भविष्य को बचाना है, बाल विवाह को दूर भगाना है।
1: खेलने कूदने की उम्र है, बाल विवाह जुर्म है।
0: आओ ले सामाजिक एकता का संकल्प, समाज की तरक्की का यही है विकल्प। कोई भी बच्चा ना छूटे इस बार, शिक्षा पर है सबका अधिकार। वाग्धारा संस्था एवं वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में जारी। मानव जीवन है खतरे में, इसमें है हम सबकी समझदारी। हरियाली को बढ़ाना है, प्लास्टिक को हटाना है।
1: प्लास्टिक का प्रयोग न करें, स्वास्थ्य के खतरे को कम करें। पेड़ लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे।
0: जी हाँ साथियों, हरी भरी प्रकृति का है यह पैगाम, स्वस्थ सुखी हो हर इंसान।
1: वागड़ रेडियो 90.8 FM द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: बच्चों के अधिकार।
1: घर परिवार में दुलार, माँ का पहला दूध व अर्ध ठोस आहार, बच्चों का है अधिकार।
0: जी हाँ,

बाल मजदूरी को रोकें, पिता को दे रोजगार, ये सभी हैं बच्चों के अधिकार। वाग्धारा संस्था और वाग रेडियो द्वारा जनहित में जारी। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।

वागड़ रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

श्रोताओं, मैं भारत का संविधान, नियम, कायदा और विधान, कभी कठोर कभी लचीला, कभी एकात्मक कभी संघात्मक, पंथों की निरपेक्षता मुझसे, वर्गों का संरक्षक मैं, केंद्रों की शक्ति मुझसे, राज्यों का बल भी मैं हूँ, हर निराशा की आशा भी मैं हूँ, हर प्रश्न का उत्तर मैं हूँ, आजादी की लड़ाई का प्रतिफल मैं हूँ, इस भारत की आत्मा मैं हूँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी, पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमने जाना था भारतीय संविधान और रियासतों के बारे में, जिसमें हम जान रहे थे राजाओं के विशेषाधिकार और उनका अंत, निजी थैली क्या और कितनी बड़ी। इसी के साथ हमने जाना था निजी थैली और शासकों के विशेषाधिकारों की समाप्ति। इसी बीच रविवार विशेष कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में आज हमारी बातचीत होने वाली है संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता को लेकर बात करें, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या बिना संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता के भारत वांछित प्रगति हासिल कर सकता है? क्या बिना इसके आधुनिक भारत का बोध सुनिश्चित किया जा सकता है? देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने की बात की जा रही है। क्या वैमनस्यता, हिंसा, अवसाद, देश के फैलाव और लोकतांत्रिक अवमूल्यन के बीच ये लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा?
0: जी बिल्कुल जागृति जी, ये हमारे लिए बहुत बड़े प्रश्न है। यही बात करें संविधान बोध और सामाजिक हकीकत की, तो साथियों वर्ष 2022 में राजस्थान में धार्मिक विद्वेष के कारण दो मुसलमानों द्वारा कन्हैया लाल नामक एक हिंदू व्यक्ति की बर्बर हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश के नीमच में भवरलाल जैन नाम के मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति की हत्या केवल इस शंका के आधार पर की गई कि शायद वह मुसलमान है। राजस्थान के बारवा गाँव के जितेंद्र मेघवाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि सूरज सिंह राजपुरोहित और रमेश सिंह को अनुसूचित जाति के जिनेंद्र मेघवाल का तनी हुई मूछें रखना और नजरें मिलाकर बात करना अखरता था।
1: जी हाँ,
0: संविधान ने जिस प्रकार के समाज और देश के निर्माण की योजना का स्वप्न देखा था, ये घटनाएं उसके ठीक विपरीत है। ऐसी घटनाओं से अक्सर कानूनी तरीके से निपटा जाता है, जबकि इन्हें संवैधानिक मूल्यों की दृष्टि से भी देखा जाना आवश्यक है।
1: बिल्कुल अंजलि, अगर यही अदालती बोझ और न्याय बोध के बारे में जानें, तो भारत की जिला और तालुका स्तर की अदालतों में 4.17 करोड़ मामले लंबित हैं, जिनमें से 35.70 लाख मामले 10 लाख से ज्यादा से चल रहे हैं, 1.6 लाख प्रकरण तो 30 साल से ज्यादा पुराने हैं। इतना ही नहीं श्रोताओं, उच्च न्यायालयों में 59.67 लाख मामले लंबित हैं, इनमें से 13.40 लाख मामले 10 साल से ज्यादा समय से लंबित हैं। कारण ये है कि भारत राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था दोनों में ही न्याय बोध का जन्म नहीं हो पाया है।
0: जी हाँ,
1: कुछ न्यायाधीश अच्छे होते हैं और वे अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभाते हैं, लेकिन अंजलि इससे पूरी व्यवस्था में न्याय बोध पैदा नहीं होता।
0: जी हाँ,
1: भारत अपने भविष्य का निर्माण कृत्रिम मेधा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सांप्रदायिक मेधा यानी कि कम्युनल इंटेलिजेंस से नहीं, बल्कि संवैधानिक मेधा कॉन्स्टिट्यूशन इंटेलिजेंस के माध्यम से ही कर सकता है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता और वैमनस्यता की राजनीति विचारधारा भारतीय समाज में संवैधानिक बुद्धिमत्ता का विकास नहीं होने देगी। अतः यह पहल बहुत ऊर्जा और प्रतिबद्धता के आधार पर संचालित करनी होगी। इसे हम संवैधानिक प्रज्ञा भी कह सकते हैं। संवैधानिक मेधा या बुद्धिमत्ता हमें राज्य और राजनीतिक दलों की मंशा को समझने की शक्ति प्रदान कर सकती है। आज सरकार के कई जन विरोधी फैसले केवल इसलिए स्वीकार कर लिए जा रहे हैं क्योंकि वे राज्य व्यवस्था की ताकत का इस्तेमाल एक खास धर्म के अनैतिक विस्तार के लिए कर रहे हैं।
1: जी हाँ,
0: संविधान बोर्ड और विद्वान सदस्यों की राय के बारे में अगर जाने, तो हम कह सकते हैं कि संविधान सभा में विद्वान सदस्यों ने भी एक विषय में अपनी राय दर्ज की थी। किसी संविधान का सफल होना केवल उन लोगों पर निर्भर नहीं करता जागृति जी, जो उसे व्यवहार में लाते हैं, बल्कि उन लोगों पर निर्भर करता है जिनके लिए वह व्यवहार में लाया जाता है। हमारे देशवासियों का चरित्र इसी संविधान की कसौटी पर कसा जाएगा।
1: जी हाँ, इसी के साथ हम जदुवंश साहे को लेकर बात करें अंजलि, तो हमने बहुत ईमानदारी से परिश्रम करके तथा सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य से इस संविधान को पारित किया और अब हमें देखना है कि व्यवहार में ये कैसा रूप धारण करता है।
0: जी हाँ
1: श्रोताओं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस संविधान का पोषण करें और लोगों को इस संविधान में सन्निहित सिद्धांतों की शिक्षा दें।
0: जी
1: ये एक महान कार्य है और मुझे आशा है कि हमारा देश तथा केंद्र के हमारे नेता इस कार्य को संपन्न करने में समर्थ होंगे। यदि वे गलत रास्ते पर जाएंगे तो केंद्र के बहुत शक्तिशाली होने के कारण सारा राष्ट्र ही गलत रास्ते पर चला जाएगा।
0: जी बिल्कुल, अगर यही बात करें लोकनाथ मिश्र की, तो साथियों संविधान को हम जितना अच्छा बना सकते थे बनाया है,
1: अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी विधायी संसदीय क्षेत्र में जाएं और इस विधान को अपने गाँव में लोगों को समझाएं, जहां हमारा कार्य क्षेत्र है। शिक्षा व प्रचार के अभाव में कभी कभी जनता में बड़ी गलतफहमी फैल जाती है, और आम जनता के लिए स्वराज और संविधान का यही मतलब है कि उन लोगों को खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान और शिक्षा मिले।
0: जी हाँ, तो जैसा कि अंजलि हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता को लेकर, आगे भी हम जानेंगे बलवंत सिंह मेहता के बारे में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में। और गीत से पहले हम बात कर रहे थे संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता को लेकर। हम जान रहे थे अदालती बोध और न्याय बोध के बारे में, साथ ही हमने जाना संविधान बोध और विद्वान सदस्यों की राय, जिसमें हमने जदुवंश सहाय के बारे में जाना, लोकनाथ मिश्र के बारे में जाना, यही बलवंत सिंह मेहता के बारे में जानते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। बीते वर्षों के दौरान हमारी सरकारें और राजनीतिक दल संवैधानिक बोध जागृत करने में नाकाम रहे।
1: जी हाँ,
0: समाज से तो संवैधानिक बोध की अपेक्षा भी नहीं की जा रही थी, क्योंकि उसके ज्यादातर व्यवहार संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ ही रहे हैं। साथ ही अंजलि, भारत ने आजादी के बाद आर्थिक विकास को ज्यादा महत्व दिया, लेकिन वह आर्थिक विकास संवैधानिक मूल्यों पर कैसे आधारित हो ये सोचना भूल गया।
1: जी बिल्कुल,
0: सरकार के स्तर पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण सरीखी नीतियां बनी, लेकिन सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में संविधान की उपेक्षा की बड़ी चूक हो गई। आज आजादी के 75 साल बाद हमारा हासिल है असमानता से भरी अर्थव्यवस्था, सांप्रदायिक वैमनस्यता और संसाधनों का गैर जिम्मेदार इस्तेमाल।
1: जी बिल्कुल, अगर यही बात करें जागृति जी संवैधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता की, तो साथियों संवैधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता का अर्थ है हमारे निजी, सामाजिक और व्यवस्थागत जीवन में संवैधानिक मूल्यों का मौजूद होना, उनका पालन किया जाना, ऐसी नजर विकसित होना जो यह देख सके कि न्याय, समता, स्वतंत्रता, गरिमा, बंधुता के मूल्यों की कब, कहां और कैसे उपेक्षा होती है।
0: जी हाँ,
1: इस दृष्टि से ऐसी चेतना विकसित हो सकेगी जो देश के लोगों में आर्थिक असमानता और बहुसंख्यक आबादी के साथ होने वाले अमानवीय शोषण को देखे और उसका प्रतिरोध करने की क्षमता विकसित करेंगी। संवैधानिक चेतना विकसित होने का असर हमें भारत के जीवन पर भी दिखाई देता है।
0: जी हाँ अंजलि, संवैधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि इसे व्यक्ति में हर बच्चे, युवा और लैंगिक पहचान से जुड़े
1: जी
0: व्यक्ति में समान रूप से पाया जा सकता है, लेकिन समाज और सरकार मिलकर इसे निष्क्रिय बनाए रखते हैं। यदि संवैधानिक मूल्यों को सबके द्वारा स्वीकार कर लिया जाए तो मजहबी, जातीय, नस्ली आधारों पर होने वाले टकरावों को निष्प्रभावी किया जा सकता है।
1: जी बिल्कुल,
0: लोकतंत्र के मूल्यों को अपने जीवन के व्यवहार का आधार बनाना ही संवैधानिक बौद्धिकता है। साथ ही श्रोताओं, संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और अस्पृश्यता का व्यवहार करना गैर कानूनी है। वास्तव में इस प्रावधान को जीवन में सजगता के साथ अपनाना ही संवैधानिक बुद्धिमत्ता है। ये एक चुनौती है क्योंकि संविधान अस्पृश्यता का अंत करना चाहता है।
1: जी बिल्कुल,
0: लेकिन हमारा समाज इस व्यवहार और व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। छुआछूत और जातिवादी, नस्लवादी व्यवहार से मुक्त होने के लिए संवैधानिक बुद्धिमत्ता का होना एक अनिवार्यता है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, अगर यही अब हम जानें संवैधानिक साक्षरता की जरूरत के बारे में, तो साथियों संविधान अपेक्षा करता है कि हर भारतीय को संविधान की मूल भावना को जानना समझना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: यह उसकी जिम्मेदारी भी है और अधिकार भी। संवैधानिक बुद्धिमत्ता लोगों में वह विवेक उत्पन्न करेगी जिससे वे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के कामकाज की समीक्षा कर पाएंगे। इसके लिए संवैधानिक साक्षरता जरूरी है। अगर देश में संवैधानिक साक्षरता पर कोई पहल की गई होती तो लोगों को यह पता चल गया होता कि संविधान के मुताबिक भारत सरकार को जो भी शक्तियाँ या अधिकार मिलते हैं वह भारत के लोगों से ही मिलते हैं।
0: जी हाँ,
1: लोग जिस उम्मीदवार और जिस राजनीतिक दल को अपना मत देते हैं वे ही उसकी नीतियों, विचार और उनके कर्मों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं।
0: जी हाँ,
1: संविधान के द्वारा उन्हें दी गई शक्ति के बारे में भी जानना और उनके महत्व को महसूस करना ही संवैधानिक बुद्धिमत्ता कहलाती है।
0: बिल्कुल, साथ ही अंजलि, जैसे कि संवैधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता को अपनाने का मतलब है भारत के आधुनिक चारित्रिक विरोधाभास को समाप्त करना। जरा गौर करिए, बच्चों को स्कूल में गांधी, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ाया जाता है।
1: जी हाँ,
0: लेकिन उनके बारे में पढ़ाई उनकी जन्म तिथि, जन्म स्थान, आयोजनों तक सीमित रहती है। उनके मूल्य और विचारों को न्यूनतम ही रखा जाता है।
1: जी हाँ,
0: और यदि उन पर कहीं जिक्र आता भी है तो वह भी सूत्रों तक ही सीमित होता है। नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता है, लेकिन जब बच्चा घर वापस आता है तो वहाँ उसे छुआछूत, हिंसक, प्रतिस्पर्धा और असमानता की शिक्षा ही मिलती है।
1: जी बिल्कुल, अगर यही बात करें जागृति जी संविधान की जानबूझकर उपेक्षा के बारे में, तो साथियों भारत के राजनीतिक दलों, विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विचारधाराओं और सरकारों ने संविधान की सुविचारित उपेक्षा की है।
0: जी हाँ,
1: इस उपेक्षा का इतिहास उतना ही है जितना भारत के संविधान की उम्र है। भारत में सैनिक अनुशासन सिखाने के लिए शिविर लगाए जाते हैं, किंतु संविधान को जानने के लिए शिविर नहीं लगाए गए।
0: बिल्कुल,
1: भारत में हजारों वर्षों से मौजूद रामायण, महाभारत, सरीखी किताबों पर आज भी सैकड़ों टीकाएं और विश्लेषण लिखे और प्रकाशित भी किए जाते हैं। लेकिन संविधान पर ऐसी पहल करने में किसी समुदाय ने रुचि नहीं दिखाई। संविधान की यह उपेक्षा अनजाने में ही नहीं हुई है, वास्तव में भारत के संविधान को भारत के लोगों ने ही नहीं अपनाया। उन्होंने आजादी के बाद भी अपने मन मस्तिष्क में जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, लैंगिक भेदभाव, आर्थिक असमानता और समाज के भीतर मौजूद उपनिवेशवाद को ही सजाए रखा है।
0: जी हाँ,
1: संवैधानिक मूल्यों के पालन की जिम्मेदारी केवल सरकारों या लोक सेवा तक ही सीमित नहीं है। जागृति जी, संवैधानिक चेतना और बुद्धिमता के विकास से यह समझ बनेगी कि हर भारतीय को अपने निजी जीवन में, अपनी निजी और पेशेवर भूमिकाओं में और अपने सामाजिक व्यवहारों में भी समता, न्याय, बंधुता, गरिमा और स्वतंत्रता के मूल्यों को अपनाना ही होगा।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आज हमने बहुत सारी बातें की कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में, जाना संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता के बारे में और किस किस के बारे में क्या राय थी वो भी हमने जाना इस कार्यक्रम के माध्यम से। अगले रविवार कार्यक्रम में हम जानेंगे संवैधानिक नैतिकता के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार
1: साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। सृष्टि का सृजन है बेटी, घर का आंगन है बेटी,
2: जिंदगी को जिंदगी से जोड़ते जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
3: जी हाँ, बेटियों को मत रखो निरक्षर, बेटियाँ भी बनेगी बड़ी अफसर।
4: खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी।
1: जी हाँ, दुश्मनों का मुकाबला डट के कर सकती है बेटी, मत बांधो बेड़ियों में ऊंची उड़ान भर सकती है बेटी।
2: जी हाँ साथियों, दे दो दर्जा बेटियों को समान अधिकार का, उनकी ख्वाहिशों पर ना अंकुश लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
3: संसार देश जिंदगी की जरूरत है बेटी, बेटी से बन औरत हर आदमी की पूरक है बेटी।
4: जी हाँ साथियों, बेटी पत्नी माँ कई रूप है बेटी के, प्यार स्नेह एवं सानिध्य हर रूप में देती है।
1: भ्रूण हत्या घोर अपराध, देश का अपमान है, बेटी के प्रति छोड़ दो निष्ठा, इसी में समाधान है।
2: जी हाँ साथियों, बनो ज्ञानी बनो दानी, अब तो लोगो जग जाओ, मत करो भ्रूण हत्या, बेटी बचाने में लग जाओ।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अरे सुषमा, आज तूने तेरे बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा?
1: अरे दीदी, स्कूल जाकर क्या करेगा, करना तो वही है ना जो हम करते आ रहे हैं।
0: अरे अरे नहीं सुषमा, हम जो करते आ रहे हैं वही हमारे बच्चे करें, जरूरी तो नहीं है ना ये। बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि इससे बच्चों का जीवन सुधर जाए।
1: अरे दीदी, आपकी बात सही है, मैं भी चाहती हूँ बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और कुछ अलग करें, पर देखो ना हालात ही कुछ ऐसे हैं।
0: सुषमा, हालात तो बनते और बिगड़ते हैं, पर हमें हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही उनका जीवन सुधरता है।
2: जी हाँ साथियों, शिक्षा जीवन का आधार, इसकी बिना है सब बेकार। जो पाता है जीवन में शिक्षा, उसकी होती है पूरी हर इच्छा।
1: शिक्षा जीवन का आधार, जो करती सबके सपनों को साकार। बच्चों को आप पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा देकर संसार को बेहतर बनाओ।
3: जी हाँ, सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगा बेहतर कल शिक्षा। अच्छी शिक्षा और संस्कार, इन पर है सभी का अधिकार।
0: शिक्षा करेगी नव युग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। शिक्षा पर जोर होगा तभी देश प्रगति की ओर होगा।
1: आओ मिलकर शिक्षा को बढ़ावा दे, एक नए सुखद कल का निर्माण करें।
2: वागड रेडियो वागधरा संस्था बांसवाड़ा राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

तो भाइयों ने बनो आ तो हती हमारी आज की सभा। हमें आशा करा कि आज की सभा में प्रसारित थावा वारा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवा लाग्या इने बल्ले आप हमने राय सुझाव आली सको हमारे अणा पता माते। हमारो पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9460051234। तो भाइयों बोनो आ तो हती अमारी आज नी सभा। बीजी सभा में फेरी मुलाकात थागात तारुदी आपनी साथी अंजलि नू राम राम।

0: सृष्टि का सृजन है बेटी, घर का आंगन है बेटी।
1: जिंदगी को जिंदगी से जोड़ते जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
2: जी हाँ, बेटियों को मत रखो निरक्षर, बेटियाँ भी बनेगी बड़ी अफसर।
3: खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी।
0: जी हाँ, दुश्मनों का मुकाबला डट के कर सकती है बेटी, मत बांधो बेड़ियों में ऊंची उड़ान भर सकती है बेटी।
1: जी हाँ साथियों, दे दो दर्जा बेटियों को समान अधिकार का, उनकी ख्वाहिशों पर ना अंकुश लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
2: संसार देश जिंदगी की जरूरत है बेटी, बेटी से बन औरत हर आदमी की पूरक है बेटी।
3: जी हाँ साथियों, बेटी पत्नी माँ कई रूप है बेटी के, प्यार स्नेह एवं सानिध्य हर रूप में देती है।
0: भ्रूण हत्या घोर अपराध, देश का अपमान है, बेटी के प्रति छोड़ दो निष्ठा, इसी में समाधान है।
1: जी हाँ साथियों, बनो ज्ञानी बनो दानी, अब तो लोगो जग जाओ, मत करो भ्रूण हत्या, बेटी बचाने में लग जाओ।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: बच्चों के भविष्य को बचाना है, बाल विवाह को दूर भगाना है,
1: खेलने कूदने की उम्र है, बाल विवाह जुर्म है।
4: आओ ले सामाजिक एकता का संकल्प, समाज की तरक्की का यही है विकल्प। कोई भी बच्चा ना छूटे इस बार, शिक्षा पर है सबका अधिकार। वागधारा संस्था एवं वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में जारी।
5: बच्चों के अधिकार।
1: घर परिवार में दुलार, माँ का पहला दूध व अर्ध ठोस आहार, बच्चों का है अधिकार।
4: जी हाँ, पर्यावरण सुधार, हरा भरा संसार, प्रेम पूर्ण व्यवहार और शिक्षा संस्कार, ये भी है बच्चों के अधिकार।
0: बिल्कुल सही, सभी प्रदूषण को रोकें, बस्ता लेवे हल्का, बाल मजदूरी को रोकें, पिता को दे रोजगार, ये सभी हैं बच्चों के अधिकार।
4: वागधारा संस्था और वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो, कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
2: अरे दीदी, क्या करूं, कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
1: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है, और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए, इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
2: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी, और साथ में हरी सब्जियाँ और दाल भी खूब खाऊंगी।
1: ये हुई ना बात गोरी।
4: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक

0: धर्म महासभा के पश्चात उनका अमेरिका के विभिन्न स्थानों पर जाकर के व्याख्यान देने का दौर शुरू हुआ। एक कंपनी के साथ उनका 3 महीने का अनुबंध भी हुआ। वे व्याख्यान के बदले प्राप्त सम्मान राशि जमा करके भारत में आकर के विकास मूलक कार्य करना चाहते थे।
1: उन दिनों अमेरिकन समाज 2 भागों में बटा हुआ था। विज्ञान की प्रगति के साथ नवीन विचारधाराओं का जन्म हुआ जो उदारपंथी था, और उग्रपंथी प्राचीन लोग बाइबल को सीने से चिपकाए हुए उसमें कही गई सारी बातों का पालन करने को ही धर्म मानते थे। उन दिनों आध्यात्मिक उन्नति को वास्तविक सामाजिक उन्नति का आधार ना मानकर बल्कि सामाजिक और आर्थिक समृद्धि को ही आध्यात्मिक उन्नति का कारण या लक्षण कहा जाता था। अटलांटिक महासागर के तटीय भाग या पूर्वांचल में उदार पंथियों का प्रभाव अधिक था, और मध्य पश्चिम तथा दक्षिण में प्राचीन पंथी प्रबल थे। पूर्वांचल में उदार पंथियों का जोर था। सामाजिक तथा आर्थिक सुधार पर और दूसरे अंचल के निवासी पाप एवं मादकता निवारण पर बल देते थे।
0: मध्य पश्चिम तथा दक्षिण में चर्च तथा समाज में स्त्रियों का अधिपति था, जो तर्क के स्थान पर भावुकता को अधिक महत्व देती थी और समाज को पाप मुक्त करने में ही जुटी रहती थी। समाज इनसे त्रस्त था। ये स्त्रियां प्रगतिशील स्त्रियों को बुरी नजर से देख करके अवज्ञा करती थीं। सभी सामाजिक कार्यों में इनका ही वर्चस्व था और पुरुष चुपचाप इनका नेतृत्व स्वीकार कर लेते थे।
1: ऐसे माहौल में स्वामी जी व्याख्यान देने पहुंचे। वहां का समाज उन्हें बड़ा ही अजीब लगा। वहां के धर्माचार्य, जिन्हें भारत के बारे में कोई भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था, भारतीय धर्म और समाज को हीन बताने पर तुले थे। वहां चित्र बनाकर कविता के माध्यम से भारतीय समाज की निंदा की जाती थी। वे कहते थे,
2: पवित्र गंगा की धारा जहां प्रवाहित हो रही है, देखो वो अधार्मिक हिंदू नारी किस प्रकार अपने हाथों से अपने बच्चे को जल में विसर्जित कर रही है, और उस शिशु को जब घड़ियाल आदि हिंसक जंतु ले जाते हैं, तब बच्चे की मर्मांतक रुदन की ध्वनि उठती है। वो क्रंदन की आवाज क्रमशः दूर दूरांतर में विलीन हो जाती है, पर उसकी माता बिना विचलित हुए अपने वज्र कठोर हृदय के साथ उसे सुनती है। उस देश में बाइबल भेजो, शीघ्र भेजो, ईसा का संदेश इन माताओं के अंतर में प्रविष्ट होगा, तो उनका चित्त माँ के समान कोमल होगा और वो राक्षसी के समान संतान का जीवन नाश नहीं करेगी।
0: इन प्रचारकों के मतानुसार भारतीय पति अपने हाथ से चिताग्नि जला करके उसमें अपनी पत्नियों को जला देते हैं। माताएं नवजात शिशुओं को मांसाहारी पक्षियों के भक्षणार्थ वृक्ष की शाखाओं से लटका देती हैं। लोग स्वेच्छा से जगन्नाथ के रथ के नीचे कूद करके आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह के और भी न जाने कितने ख्याली पुलाव पकाए जाते थे। इसी प्रकार के मिथ्या आरोप से दुखी होकर के जब स्वामी जी ने कहा था कि पाश्चात्य देश भारत के विरुद्ध जिस प्रकार के मिथ्या प्रचार तथा निंदावाद में लगे हुए हैं, उसके प्रतिकार के रूप में यदि भारत हिंद महासागर के तल का सारा कीचड़ पाश्चात्य देशों पर फेंके तो भी वह पूरा नहीं होगा, ये कहने में उन्होंने थोड़ी भी अतिशोक्ति नहीं की थी।
1: ऐसे माहौल से, यानी कि मध्य पश्चिम से, स्वामी जी अपेक्षाकृत नवालोक से आलोकित मेम्फिस नगर में पहुंचे। वहां वे 19th सेंचुरी क्लब के आमंत्रण पर आए थे। उन दिनों व्याख्यान कंपनी से अनुबंधित होने के कारण स्वामी जी के व्याख्यानों से होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा कंपनी हजम कर जाती थी। मेम्फिस में 13 जनवरी से 21 जनवरी तक विभिन्न प्रतिष्ठानों में उनके व्याख्यान हुए। व्याख्यानों की रिपोर्ट अखबारों में रोज छपती और कानंद स्वामी यानी विवेकानंद की ख्याति चारों ओर फैलती गई। मेम्फिस कमर्शियल अखबार में विस्तृत रिपोर्ट छपी थी।
3: उनका व्यक्तित्व था परमत सही छूट था। जिस पर वह सार्वभौमिक दृष्टिकोण से ही बोले और दुष्टांत के रूप में उन्होंने हिंदू धर्म का उल्लेख किया। अन्य मठों के प्रति प्रेम और सहानुभूति की सभी धर्मों का सार होना चाहिए। हिंदू धर्म के आचारों अनुष्ठानों आदि को छोड़कर उन्होंने अपने मौलिक तत्वों का ही विशाल विवेचन किया। जिन कुछ अनुष्ठानों की बात उन्होंने उठाई उसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या भी की। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वासी है और बाइबिल के उस पापवाद को नहीं मानता जिसके अनुसार मानव जीवन के साथ मूलभूत पाप मिश्रित है। मनुष्य पवित्रता और पवित्रता में लोट जाता है। इतिहास से उदाहरण देकर उन्होंने दिखा दिया कि हिंदू केवल बातों में ही नहीं अपितु व्यवहारिक जीवन में भी परधर्म सहिष्णु है। किंतु लोगों की उदारता का प्रमाण देते हुए उन्होंने बताया कि एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों में इष्ट अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सभी भगवान के मूल गुण हैं। प्रेम के उपासक होने के कारण वस्तुतः एक ही भगवान के भक्त हैं। हिंदुओं की मूर्तियां भगवान के दिव्य गुणों के प्रतीक हैं और ध्यान में सहायता के लिए हैं।
4: उनके समूचे भाषण को प्रस्तुत करना कठिन है, परंतु यह विश्व बंधुत्व की स्थापना के लिए एक उत्कृष्ट आवेदन था और एक मनोरम धर्म मत का एक सुयोग्य समर्थन था। इसका उपसंहार भी विशेष सुंदर बन पड़ा था, जबकि उन्होंने घोषणा की कि वे ईसा को स्वीकार करने को तैयार होकर भी कृष्ण और बुद्ध के समक्ष सिर अवश्य झुकाएंगे। तदुपरांत उन्होंने सभ्यता की निष्ठुरता का एक चित्र खींचते हुए कहा कि प्रगति के नाम पर होने वाले इन अपराधों के लिए वे ईसा मसीह को उत्तरदायी नहीं मानते।
0: मेम्फिस में स्वामी जी के अनुरागियों की संख्या बढ़ती गई और लोगों के अनुरोध पर उन्हें कुछ और अतिरिक्त व्याख्यान देने पड़े। उनका एक व्याख्यान था पुनर्जन्म पर। उसमें स्वामी जी बोले,
5: सभी प्राचीन धर्मों में पुनर्जन्म का सिद्धांत स्वीकृत था, पर अब हिंदू और बौद्ध ही इसे मानते हैं। पाश्चात्य लोग सोचते हैं कि पुनर्जन्म मानने से अनैतिकता को प्रश्रय मिलेगा, न्याय होने से अन्याय भी रहेगा। जगत में व्याप्त अन्याय के लिए यदि ईश्वर उत्तरदायी न हो तो कौन होगा? पुनर्जन्म के सिद्धांत से इसकी मीमांसा हो जाती है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। शून्य से जगत की सृष्टि नहीं हुई। कारण परंपरा ही कार्य परंपरा को जन्म देती है। अतः मनुष्य का वर्तमान जन्म उसके पूर्व जन्म के कर्मों के फल से बना है।
0: उन्होंने एक घटना का जिक्र और किया और कहा,
5: मैं जब मिनियापोलिस से ट्रेन में आ रहा था तो उसी में एक गोपालक मिला जो जड्ड स्वभाव का और शुद्ध आचारवादी था। उसने पूछा कि मैं कहां से आया हूं। मैंने कहा, भारत से। उसने पूछा, आपका धर्म क्या है? मैंने कहा, हिंदू। उसने कहा, तब तो आपको नरक में जाना होगा। तब मैंने उसे पुनर्जन्म का सिद्धांत बताया। उसने कहा कि वो सदा से ही इस सिद्धांत में विश्वास करता आया है, क्योंकि एक दिन जब वो लकड़ी चीर रहा था तो उसकी छोटी बहन उसके कपड़े पहनकर आकर बोली कि वो पहले पुरुष थी। पुनर्जन्मवाद की एक और अच्छी बात यह है कि जो कुछ हो गया है उसके लिए पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं, बल्कि प्रति क्षण पुनः भले कर्म करने के जो नए नए अवसर आ रहे हैं उनका लाभ उठाना चाहिए।
1: भाषण के बाद ज्यादातर महिलाएं उनसे प्रश्न पूछती और स्वामी जी हंसते हुए उन सबको उत्तर देते। परंतु ये भी सच है कि सभी ने उनको प्रेम पूर्वक ग्रहण नहीं किया। विशेषकर कुछ पादरी उनका विरोध करते रहे। व्याख्यान के बाद वे भी कटाक्ष पूर्ण प्रश्न पूछते थे,
6: हिंदू लोग अगर इतने ही धार्मिक और नीति परायण है तो वो दूसरे राष्ट्रों की तुलना में इतने पिछड़े क्यों हैं?
5: इसलिए कि सांसारिक उन्नति धर्म का कार्य क्षेत्र नहीं है, और धर्म ने तो ईसाई जगत की उन्नति नहीं की, बल्कि ईसाई धर्म ने तो पश्चिमी जगत में विज्ञान के नवालोक के पथ में पग पग पर बाधा खड़ी की है। पाश्चात्य चिंतन एवं कार्य प्रणाली के साथ भारतीय चिंतन एवं कार्य प्रणाली का मिलन ही दोनों अंचलों के लिए हितकर एक नवीन पथ का निर्माण कर सकेगा।
0: पादरी महाशय निरुत्तर हो गए। तब स्वामी जी ने समझा करके कहा,
5: किसी न किसी रूप में धर्म सर्वत्र, यहाँ तक कि असभ्य लोगों में भी विद्यमान है। मानव आत्मा मानो हवा के बुलबुले के समान पृथ्वी के तल में जाकर स्वभाव से ही सर्वदा ऊपर उठने का प्रयास कर रही है, और यही प्रयास धर्म का रूप धारण कर लेता है।
1: 22 जनवरी को स्वामी जी मेम्फिस छोड़कर वापस शिकागो आ गए। इन 6 सप्ताहों के दौरान उन्होंने 12 नगरों में व्याख्यान दिए। श्रोतागण हमेशा एक जैसे नहीं होते, श्रोताओं के अनुसार ही स्वामी जी अपना विषय चुनते। जैसे अगर किसी खदान नगर में बोलते तो किसी बौद्धिक विषय के बदले सामाजिक विषय चुनते।
0: व्याख्यान कंपनी के साथ स्वामी जी भी लगातार घूमते रहे। श्रीमती बर्क ने भी लिखा है,
7: उनका एक चित्र मानस पलट पर उभरता है जिसमें वे सप्ताह पर सप्ताह भीषण ठंड के दिनों में रेल यात्रा करते, अपना सामान संभालते, श्रोताओं के सम्मुख व्याख्यान देते, पैसों का हिसाब करते, परिश्रम साध्य दीर्घ भाषण देने के पश्चात उलझुल प्रश्नों के उत्तर देते। सच कहें तो उनके शक्ति सामर्थ्य को निर्ममता पूर्वक अपने सामर्थ्य साधन में उपयोग करने के लिए मानो तो उस कंपनी ने कमर कस ली थी। स्वामी जी भी कार्य के उत्साह तथा धर्म एवं भारत की बातें सुनाने की उत्सुकता में अपनी सुख सुविधा तथा स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल ही भूल गए थे।
0: मेम्फिस से वापस शिकागो आने के बाद स्वामी जी हेल परिवार के साथ ही ठहरे। शिकागो में वही उनका स्थायी ठिकाना हो गया। हेल दंपति उन्हें पुत्र की तरह स्नेह करते थे और उनकी 2 बेटियां और भांजियां स्वामी जी की दुलारी बहनें थी। विशेषकर मैरी हेल और इशाबेल मैककिन्नी के साथ उनका संबंध बड़ा ही आंतरिक था। उन लोगों के बीच कई पत्राचार हुए जिसमें स्वाभाविक विचार विनिमय, व्यंग विनोद, रोना गाना और सहानुभूति आदि दिख पड़ती थी।
1: हेल परिवार का परिचय देते हुए उन्होंने 25 सितंबर 1894 में स्वामी रामकृष्णानंद को लिखा था,
5: हेल और उनकी पत्नी दोनों ही वृद्ध हैं, साथ में 2 पुत्रियां, 2 भांजियां तथा एक लड़का है जो रोजगार के लिए दूसरी जगह रहता है। लड़कियां घर पर रहती हैं। इस देश में लड़की का रिश्ता ही सही रिश्ता है। चारों कन्याएं युवती और अविवाहित हैं। दोनों पुत्रियों के बाल सुनहरे हैं और भांजियों के काले। ये जूते की सिलाई से पूजा पाठ तक हर काम में माहिर हैं। भांजियों के पास उतना धन नहीं है, वे किंडरगार्टन स्कूल चलाती हैं, लेकिन पुत्रियां कुछ नहीं कमाती। लड़कियां मुझे भैया कहती हैं, मैं उनकी माँ को माँ कहता हूँ। मेरा सामान सब उन्हीं के घर में है। मैं कहीं भी जाऊं वे उसकी देखभाल करती हैं। यहाँ निर्धनों के लिए किंडरगार्टन स्कूल अपरिचित नहीं है, पर धनिकों की संतानों के लिए ऐसे किंडरगार्टन अति विरल हैं। अतः संभ्रांत वंश की मैककिंडली बहनों द्वारा स्थापित विद्यालय में कुछ नयापन और वैशिष्ट्य है जिसके लिए समाज में उन्हें विशेष प्रशंसा भी मिली है। एक समाचार पत्र में इसाबेल के बारे में लिखा गया है कि मिस मैककिंडली की अपने कार्य पर अच्छी पकड़ है और बच्चों के साथ उनका संबंध स्नेह तथा विवेकवान है। वे मन की बड़ी अच्छी हैं और वार्तालाप के समय उनकी प्रतिभा देखते ही बनती है।
1: हेल परिवार के साथ स्वामी जी की ये आत्मीयता आजीवन बनी रही। लंदन से भारत लौटने के पूर्व हेल बहनों से विदा लेते हुए 28 नवंबर 1896 को लिखे उनके एक पत्र में है,
5: मुझे लगता है इस पृथ्वी पर मैं तुम चारों से ही सर्वाधिक स्नेह करता हूँ और मेरा विश्वास है कि तुम लोग भी मेरे प्रति वैसा ही स्नेह भाव रखती हो। तुम लोग और तुम्हारा सारा परिवार मेरे प्रति इतना प्रेम रखता है कि जिसे हम भारतीय कहते हैं, लगता है मैं पिछले जन्म में तुम्हारे ही परिवार का रहा होऊंगा।
0: स्वामी जी के व्याख्यानों की जो भी रिपोर्ट अमेरिकी अखबारों में छपती थी वे बंबई, कलकत्ता और मद्रास के भारतीय अखबारों में पुनर्मुद्रित होती थी, जिससे उनके भक्तों को और देशवासियों को पता चलता था कि अमेरिका में स्वामी जी कितने जनप्रिय हो गए हैं। उनकी विजय वार्ता पाकर समग्र भारतीय समाज उल्लासित हो उठा था। इंडियन मिरर, अमृत बाजार आदि अखबारों ने अमेरिकी अखबारों के लेखों को इस प्रकार प्रकाशित किया।
3: प्रतीक्षा गृह में सबसे आकर्षक व्यक्ति सन्यासी स्वामी विवेकानंद से सबकी भेंट होती है। वे सुगठित शरीर के है और हिंदुस्तानियों का उन्नत व्यवहार उनमें है। दाढ़ी मूछ विहीन चेहरा, समुचित ढला हुआ सामान्य आकार, सफेद दंत पंथिया और सुगठित होठ, जो वार्तालाप के समय प्राय मुदु मुस्कान के रूप में खुले रहते हैं। उनके संतुलित आकार के सिर पर नारंगी अथवा लाल रंग की पगड़ी शोभायान रहती है और उनका चोगा कमरबंद से बंधा घुटनों के नीचे तक लटकता रहता है। वो कभी चमकीले नारंगी रंग का और कभी गहरे लाल रंग का होता है। वे उत्तम अंग्रेजी बोलते हैं और गंभीरता पूर्वक पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने को सर्वदा प्रस्तुत रहते हैं।
8: महासभा में वो अपने भावों तथा आकृति की भव्यता के कारण बड़े लोकप्रिय हैं। मंच पर उनके आने मात्र से ही हर्ष ध्वनि होने लगती है और हजारों व्यक्तियों द्वारा यह विशेष सम्मान वे विनय पूर्वक और बाल सुलभ संतोष के साथ स्वीकार करते हैं। निर्धनता तथा आत्म संयम के जीवन से सहसा इस वैभव और उत्कर्ष में आ पड़ना अवश्य ही इस विनम्र सन्यासी के लिए अपूर्व अनुभव होगा।
1: अक्सर इसी तरह स्वामी जी की विजय वार्ता प्रकाशित होते रहने से ब्राह्म समाज तथा अनेक ईसाई मिशनरी उनके प्रति विद्वेष से भर उठे। विशेषकर प्रताप चंद्र मजूमदार की व्यवस्था में चलने वाली यूनिटी एंड द मिनिस्टर पत्रिका में लिखा गया,
9: नव हिंदू बाबू नरेंद्रनाथ दत्त उर्फ विवेकानंद की प्रशंसा में इंडियन मिरर में अनेक लंबे संपादकीय लेख निकल चुके हैं। इस सन्यासी के विषय में ऐसी प्रशंसावली के प्रकाशन में हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब वे नव वृंदावन थिएटर में अभिनय करने हेतु हमारे पास आए थे अथवा जब वे इस महानगरी के किसी ब्रह्म समाज में भजन गाते थे, तभी से हम उन्हें इतनी भली भांति जानते हैं कि उनके बारे में आज के समाचार पत्रों में चाहे जितना भी कुछ लिखा जाए, इससे उनके चरित्र के बारे में हमारी धारणा पर कोई प्रकाश नहीं पड़ने वाला है। हमारे इन पुराने मित्र ने संप्रति अपने आख्यानों के द्वारा अमेरिका में जो भाव तरंग उठाया है, उससे हम आनंदित हैं। परंतु हम ये भी जानते हैं कि हमारे मित्र जिस नवीन हिंदू मत का प्रचार कर रहे हैं, वो सनातन हिंदू धर्म नहीं है। उन्होंने जो पूर्ण रूप से अनुचित किया है वो है समुद्र पार जाना, मलिच्छों का अनुग्रहण करना, लगातार सिगरेट पीना अथवा इसी प्रकार का और कुछ करना। शुद्ध सनातनी हिंदू जितने हमारी श्रद्धा के पात्र हो सकते हैं, आधुनिक हिंदू मत के अनुयायी वैसी श्रद्धा पाने का दावा नहीं करते, परंतु विवेकानंद की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए हमारे सहयोगी पत्रकारों के यथासाध्य प्रयास करने के बावजूद जब वे बिल्कुल बेकार की बातें बकते हैं तो हमारा धैर्य छूट जाता है।
1: इसके बाद भी अमेरिका के संवाद पत्रों में जो सुंदर संवाद प्रकाशित होते थे, उन्हें टिप्पणी के साथ इंडियन मिरर, पायनियर आदि संवाद पत्रों में प्रकाशित किया जाता था। ये बात और है कि कुछ व्यक्तियों की तरह कुछ संवाद पत्र भी इन खबरों को प्रेम पूर्वक ग्रहण नहीं करते थे, तथापि भारतवासी जान गए थे कि स्वामी जी का विजय गौरव सचमुच ही आश्चर्यजनक है।
0: इसी बीच श्री बैरोज द्वारा प्रकाशित ग्रंथ द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में स्वामी जी को अति उच्च स्थान मिला और उस ग्रंथ की एक अच्छी समीक्षा अमेरिका के रिव्यू ऑफ रिव्यूज में जनवरी अंक में छपने के बाद 21 फरवरी 1894 के इंडियन मिरर के संपादकीय लेख द्वारा उस ग्रंथ का विस्तृत रूप से प्रचार हुआ। तब भारतवासियों को समझने में देर न लगी कि स्वामी जी का विजय संवाद प्रमाणिक है और उन्होंने सनातन धर्म को समुचित ढंग से पाश्चात्य जगत के सामने प्रस्तुत किया है और ये भी समझ गए कि उनके विरुद्ध जो बातें भारत में प्रचारित की जा रही हैं, वे सब झूठ हैं, ईर्ष्या जनित हैं। वस्तुतः सबने यह स्वीकार कर लिया

0: स्वामी विवेकानंद का उदय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है।
1: धर्म महासभा की विज्ञान शाखा के अध्यक्ष श्रीयुत मार्विन मैरी स्नेल ने 30 जनवरी 1894 को पायोनियर पत्र के संपादक को विस्तार पूर्वक पत्र में लिखा था। उसमें भी बैरोज के मत ही दृढ़ता पूर्वक लोगों के हृदय में अंकित हो गए। स्वामी जी ने महासभा में 19 सितंबर 1893 को हिंदू धर्म विषय के जिस निबंध का पाठ किया था, वे मद्रास तथा कलकत्ता के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ और दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण की जन्म तिथि के उत्सव में 11 मार्च 1894 को पुस्तिका के रूप में वितरित हुआ। इससे स्वामी जी के वक्तव्य का एक प्रामाणिक विवरण मिला। 21 मार्च के इंडियन मिरर में इसकी खूब प्रशंसा की गई।
0: स्वामी जी की विजय वार्ता सिर्फ साधारण जनता तक ही सीमित नहीं रही। यह संवाद उनके गुणमुग्ध राजा और महाराजाओं तक भी पहुंची। रामनद के राजा भास्कर वर्मा सेतुपति तथा खेतड़ी के राजा अजय सिंह बहादुर, इन दोनों स्वामी जी के शिष्यों ने आम दरबार में ठाट बाट के साथ अपनी प्रजा को बुला करके भारत के मुख उज्जवल करने वाले स्वामी जी के कार्यों की प्रशंसा की और महासभा में वे जो सनातन धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादन करने में समर्थ हुए हैं, इसलिए उन्हें धन्यवाद देकर के पत्र भी लिखा गया।
1: मद्रास में राजा रामास्वामी मुदलियार तथा दीवान बहादुर सुब्रमण्यम अय्यर महोदय के नेतृत्व में एक विराट सभा बुलाई गई। वहां उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने स्वामी जी के प्रचार कार्य का समर्थन किया और सभा की रिपोर्ट के साथ उन्हें उत्साहवर्धक पत्र भी लिखा। उधर स्वामी जी की जन्म नगरी कलकत्ता भी उत्साह और आनंद से भर उठी। वहां राजा प्यारे मोहन मुखर्जी के सभापतित्व में कलकत्ता टाउन हॉल में एक विराट सभा बुलाई गई, जिसमें नगर के सभी प्रतिष्ठित व विद्वान सज्जन साधारण जनता के साथ उपस्थित हुए थे। माननीय सभापति महोदय ने सर्वसम्मति से सभा की तरफ से शिकागो धर्म सभा के सभापति डॉक्टर बैरोज साहब के पास धन्यवाद सूचक पत्र भेजा।
0: इस तरह भारत में स्वामी जी के विजय का चारों ओर जश्न मनाया गया। इससे यह फल हुआ कि उनकी निंदा और आलोचना करने वालों की ही आलोचना हुई और अंततः वे हार मान करके चुप हो गए। उधर अमेरिका में स्वामी जी के व्याख्यानों का दौर चल रहा था और वे एक के बाद एक अमेरिका के नगर की जनता को अपने ज्ञान और वाग्मिता से वशीभूत करते जा रहे थे।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग परिवर्तन। यह आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने सुझाव हम तक भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
3: सृष्टि का सृजन है बेटी, घर का आंगन है बेटी।
4: जिंदगी को जिंदगी से जोड़ते जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
5: जी हाँ, बेटियों को मत रखो निरक्षर, बेटियाँ भी बनेगी बड़ी अफसर।
6: खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी।
5: जी हाँ, दुश्मनों का मुकाबला डट के कर सकती है बेटी, मत बांधो बेड़ियों में ऊंची उड़ान भर सकती है बेटी।
4: जी हाँ साथियों, दे दो दर्जा बेटियों को समान अधिकार का, उनकी ख्वाहिशों पर ना अंकुश लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
5: संसार देश जिंदगी की जरूरत है बेटी, बेटी से बन औरत हर आदमी की पूरक है बेटी।
6: जी हाँ साथियों, बेटी पत्नी माँ कई रूप है बेटी के, प्यार स्नेह एवं सानिध्य हर रूप में देती है।
5: भ्रूण हत्या घोर अपराध, देश का अपमान है, बेटी के प्रति छोड़ दो निष्ठा, इसी में समाधान है।
4: जी हाँ साथियों, बनो ज्ञानी बनो दानी, अब तो लोगों जग जाओ, मत करो भ्रूण हत्या, बेटी बचाने में लग जाओ।
5: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। दोस्तों, तुम अपने खान पान का रखो अच्छे से ध्यान।
7: जी हाँ, वरना बाद में पछताओगे। यह बात आज ही तुम जान लो।
4: दूध दही है बहुत जरूरी, फल तरकारी बड़ी है न्यारी।
5: यह सब पोषण की है खान, जो तुम इनसे दूर रहोगे होगा सेहत का नुकसान।
4: वाग्धारा संस्थान और वागर रेडियो द्वारा जनहित में जारी। अरे गोरी, इतने सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
8: अरे दीदी, क्या करूं, कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
4: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है, और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
8: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी, और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
4: ये हुई ना बात गोरी।
7: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित। आंगनवाड़ी जाई में तारो नाम लकाओ, भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ। सोराना नक काबजू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार। भिंडा तुरिये आलड़ी, कोराने वालोर, रोपो खाओ सब्जिये, डीले आवे जोर। सीरो दलियो राबड़ी, फूली सोका दाल, पांसे महीने बाल ने आ खवानो आल। अणी वातनु ध्यान राखो, आपणो जीवन सुरक्षित राखो।
8: अरे सुषमा, आज तूने तेरे बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा?
4: अरे दीदी, स्कूल जाकर क्या करेगा, करना तो वही है ना जो हम करते आ रहे हैं।
8: अरे अरे नहीं सुषमा, हम जो करते आ रहे हैं वही हमारे बच्चे करें, जरूरी तो नहीं है ना। ये बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि इससे बच्चों का जीवन सुधर जाए।
4: अरे दीदी, आपकी बात सही है, मैं भी चाहती हूँ बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और कुछ अलग करे, पर देखो ना हालात ही कुछ ऐसे हैं।
8: सुषमा, हालात तो बनते और बिगड़ते हैं, पर हमें हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही उनका जीवन सुधरता है।
7: जी हाँ साथियों, शिक्षा जीवन का आधार, इसकी बिना है सब बेकार। जो पाता है जीवन में शिक्षा, उसकी होती है पूरी हर इच्छा।
4: शिक्षा जीवन का आधार, जो करती सबके सपनों को साकार। बच्चों को आप पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा देकर संसार को बेहतर बनाओ।
7: जी हाँ, सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगा बेहतर कल शिक्षा। अच्छी शिक्षा और संस्कार, इन पर है सभी का अधिकार।
8: शिक्षा करेगी नव युग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। शिक्षा पर जोर होगा तभी देश प्रगति की ओर होगा।
4: आओ मिलकर शिक्षा को बढ़ावा दे, एक नए सुखद कल का निर्माण करें।
7: वागड़ रेडियो, वागधारा संस्था, बांसवाड़ा राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: मोटा अनाज, मोटा अनाज,
5: क्या है भाई ये मोटा अनाज?
7: बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार, पोषण से है भरपूर आहार।
4: नित्य करे जो सेवन इनका, जीवन स्वस्थ रहेगा उनका।
8: जी हाँ साथियों, दाल अनाज मिलाकर खाएं, स्वस्थ जीवन हम अपनाएं।
7: वागड़ रेडियो, वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

श्रोताओं, उसकी हर दुआ कबूल है, वो तो ममता का एक फूल है। शायद तभी भगवान से भी ऊपर आती है माँ, एक सच्चा दोस्त कहलाती है माँ। तुझे न हो फुर्सत एक पल भी उसके लिए, उसका हर पल हर लम्हा है तेरे लिए, माँ सब जानती है। जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ कार्यक्रम कथा कहानी को एक ममता भरी कहानी के साथ। में आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में, और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागुर रेडियो 90.8 FM। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज भी मैं आपको एक प्रेरणादायी शिक्षाप्रद कहानी सुनाने वाली हूँ, और उस कहानी का शीर्षक है माँ की ममता। जी हाँ, तो दोस्तों ये कहानी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए शुरुआत में हम सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप सुनते रहिए वागुर रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम कथा कहानी, आपकी अपनी दोस्त जागृति के साथ।

अंधेरी रातों में मुझको थपकी देकर कभी सुलाती, कभी प्यार से मुझे चूमती, कभी डांट कर पास बुलाती, कभी आंख के आंसू मेरे आंचल से पोछा करती, वो सपनों के झूलों में अक्सर धीरे धीरे मुझे झुलाती। सब दुनिया से रुट रपट कर जब मैं बेमन से सो जाता, होले से वो चादर खींचे अपने सीने मुझे लगाती। जी हाँ दोस्तों, वो है मेरी प्यारी माँ, सारे जग से न्यारी माँ। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में श्रोताओं। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सी माँ की ममता से भरी कहानी सुनाने वाली हूँ। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है इस तरह से। माँ इस दुनिया में निस्वार्थ इंसान है जो बच्चे की दुनिया में आने से पहले ही प्यार करने लग जाती है। माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता। हर एक जीवन में माँ एक अनमोल इंसान के रूप में होती है जिसके बारे में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा सुना है कि अब हर इंसान के साथ तो खुदा रहेगा नहीं, इसीलिए माँ को बनाया गया है। और एक माँ वह हमारे जीवन में छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखने वाली खूबसूरत माँ होती है। हर पल हाजिर रहती है हमारा ख्याल रखने के लिए। सुबह जब वो प्यार से सर पर हाथ फैला करके हमें उठाती है और रात के समय प्यारी कहानियां सुनाकर सुलाती है। खुद भूखी सो जाती है पर हमें बिना खाए सोने नहीं देती है। ये होती है माँ। हमारे स्कूल या कॉलेज जाने में हमारी मदद करती है, साथ ही हमारे लिए सुबह जल्दी उठकर हमारे लिए नाश्ता, दोपहर का खाना बनाती है और फिर दोपहर को दरवाजे पर खड़े होकर हमारा इंतजार भी करती है। स्कूल से आने के बाद हमारे होमवर्क में हमारी मदद करती है। अच्छी माँ और अच्छी दोस्ती का फर्ज हमारी माँ ही हमसे निभाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी शुरू होती है अकबर और बिरबल की। अपने शहजादे को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मानते थे अकबर, और बिरबल ने किस तरह से उनका घमंड तोड़ा उस पर आज बात करते हैं। दोस्तों, माता पिता के लिए उसका बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा होता है। ठीक ऐसे ही अकबर भी अपने शहजादे को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा बोल रहे थे। फिर बिरबल ने इस पर आपत्ति क्यों जताई? दोस्तों, अकबर और बिरबल की किस्से कहानियाँ खूब मशहूर है, आपने भी सुनी होगी। बिरबल हमेशा ही अपनी समझदारी, बुद्धिमानी और चतुराई से बादशाह अकबर का दिल जीत लेते थे, इसीलिए तो बिरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। आज अकबर और बिरबल के किस्सों में आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जो अकबर के शहजादे से जुड़ी हुई है। अकबर अपने शहजादे को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मानते थे, हालांकि बिरबल इस बात पर सहमत नहीं होते, जिससे कि बादशाह अकबर भड़क भी जाते हैं। लेकिन इसके बाद बिरबल कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हमेशा की तरह एक बार फिर अकबर उसकी तारीफ करते हैं। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर अपने शहजादे के साथ दरबार में थे। अकबर का शहजादा बहुत ही सुंदर था, जिस कारण दरबार में मौजूद हर किसी की नजर उसी पर थी। वहाँ पर मौजूद हर कोई कह रहा था कि शहजादा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। खुद अकबर भी ये कह रहे थे कि उनका शहजादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, और दरबार में उपस्थित सभी लोग अकबर की बात पर हामी भर रहे थे। तभी बिरबल भी दरबार में पहुँचते हैं और अकबर बिरबल से पूछते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है, मेरा शहजादा है ना दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा। तो दोस्तों, इस पर बिरबल कहते हैं, जहाँ पना शहजादा सुंदर तो है, लेकिन मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं हो सकता। बिरबल की बात सुनकर अकबर

गुस्से से कहते हैं, बिरबल तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कि शहजादा सुंदर नहीं है? बिरबल कहते हैं, नहीं जहांपनाह, मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं है। आप मेरी बात का गलत मतलब ना निकाले, हमारा शहजादा बहुत खूबसूरत है, लेकिन वह दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं हो सकता। अकबर बिरबल से कहते हैं, तो क्या हम यह समझे कि पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा हमारा शहजादा नहीं है? बिरबल कहते हैं, जी जहांपनाह, मेरी बात का यही मतलब है। तब अकबर बिरबल से कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया में शहजादे से भी ज्यादा खूबसूरत बच्चा है, तो तुम उसे हमारे पास लेकर आओ। इसके बाद बिरबल शहजादे से भी ज्यादा सुंदर बच्चे की खोज में निकल पड़ते हैं। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और बिरबल दरबार पहुँचते हैं। बिरबल को दरबार में अकेला देख अकबर कहते हैं, क्यों बिरबल, तुम अकेले आए हो? क्या तुम्हें शहजादे से ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं मिला? बिरबल कहते हैं, जहांपनाह, मैं आपको यही बताने आया हूँ कि मुझे शहजादे से भी अधिक सुंदर बच्चा मिल गया है, लेकिन मैं उसे दरबार लेकर नहीं आ सकता, आपको उस बच्चे के पास जाना होगा। अकबर कहते हैं, ठीक है, फिर हम कल सुबह उस बच्चे के पास चलेंगे। श्रोताओं, जब सबसे खूबसूरत बच्चे से मिलने पहुँचे अकबर, तब क्या होता है उस पर बात करें, तो बिरबल कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आपको उस बच्चे से मिलने के लिए भेष बदल कर जाना होगा। अकबर इसके लिए भी मान जाते हैं और अगले सुबह बिरबल के साथ बच्चे से मिलने के लिए निकल जाते हैं। बिरबल अकबर को एक झोपड़ी में लेकर जाते हैं। वहाँ एक छोटा बच्चा होता है जो कि धूल मिट्टी से खेल रहा होता है। बिरबल उस बच्चे को अकबर को दिखाते हुए कहते हैं, देखिए जहांपनाह, वो रहा सबसे सुंदर बच्चा। अकबर को बिरबल पर गुस्सा आ जाता है श्रोताओं, और वो बिरबल से कहते हैं, तुम झोपड़ी में रहने वाले एक बदसूरत बच्चे को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा बता रहे हो? अकबर की गुस्से वाली आवाज सुनकर वह बच्चा जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगता है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ वहाँ आ जाती है और अकबर को गुस्से में बुरा भला कहने लगती है। वह अकबर से कहती है, तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कैसे कहा? मेरा बच्चा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। अगर दोबारा मेरे बच्चे को बदसूरत कहा तो मैं तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर दूंगी। निकल जाओ मेरी झोपड़ी से और दोबारा यहाँ नजर मत आना। इसके बाद माँ अपने बच्चे को लाड़ प्यार से खिलाने लगती है और बच्चे से कहती है, मेरा बच्चा सबसे सुंदर बच्चा है। अकबर भी उस बच्चे की माँ की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, बिरबल कहते हैं, जहांपनाह, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि बच्चा कैसा भी हो, उसकी माँ के लिए वह दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा होता है। बिरबल आगे कहते हैं कि हमारा शहजादा भी बहुत सुंदर है, बस आप उसे अच्छी तालीम दें जिससे उसकी सुंदरता में और निखार आए। बिरबल की बात सुनकर अकबर कहते हैं, बिरबल, तुमने एक बार फिर से हमारा दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, माँ के लिए कैसा भी बच्चा हो, बहुत ही अच्छा होता है। एक माँ की ममता बच्चे के जीवन में अनमोल से बढ़कर होती है। बच्चे को जिंदगी का एहसास ही पहला माँ की ममता का होता है। माँ वह एक ऐसी हस्ती है जिसके कदमों में जन्नत होती है। एक बच्चे का उसकी माँ का सिर्फ जन्म से ही नहीं, सांसों तक का भी नाता होता है। पहली सांस जब बच्चा अपने माँ की कोख में लेता है, तभी उनकी माँ के साथ जीवन की डोर बन जाती है। श्रोताओं, माँ एक सबसे अच्छी दोस्त होती है जो बच्चे के जन्म के बाद एक विशेष बंधन बन जाती है। वो अपने बच्चे को सारी चीजें बताती है और उसे हमेशा पूरा करने की कोशिश भी करती है। एक माँ हमेशा अपने बच्चों को सही राह दिखाती है, कभी गलत राह पे नहीं चलने देती है। दोस्तों, अगर आप किसी भी मुसीबत में रहते हैं तो अपनी माँ को बताकर मुश्किल हल कर सकते हैं। एक दुनिया में सब कुछ करके आपको हर मुश्किल से आजाद करा सकती है वो सिर्फ और सिर्फ माँ होती है। जरूरत होने पर वह सख्त भी हो जाती है और फिर प्यार भी करने लगती है। वह हमेशा हमारे करियर और भविष्य के लिए गंभीर होती है। उन्हें बस यही टेंशन होती है कि मेरा बच्चा जिंदगी में सफल हो और उसका नाम रोशन हो। उन्हें कभी कोई परेशानी ना हो। अगर इस बात पर आपको कभी डांट भी दे तो आपको बुरा नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि डांट के पीछे छुपे हुए प्यार को देखो। आप वो आपसे बहुत प्यार करती है, तभी तो वो आपको सफल होते हुए देखना चाहती है। एक माँ कभी अपने बच्चों को बर्बाद हुए नहीं देख सकती। गिरते बच्चे को हाथ देकर संभालती है, रोते हुए बच्चे को आंचल से आंसू पोंछती है, दोस्ती की कमी पूरी करती है, दुख के ऊपर से भी झूठी मुस्कुराहट दिखाती है, बस आपका हौसला बनाए रखती है। माँ की ममता कहना आसान है श्रोताओं, पर निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी माँ की ममता को लेकर, और आप समझ भी गए होंगे कि माँ की ममता क्या होती है। तो दोस्तों, अब समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।

इस गीत के साथ श्रोता साथी विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आज जो भी कहानी मैंने आपको सुनाई, जो भी माँ से जुड़ी बातें मैंने आपको बताई, वह आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख सकते हैं श्रोता साथियों, हमारा नंबर है 9460051234। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नई शिक्षा प्रद प्रेरणादायी कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने दोस्त जागृति को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार, साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ इस गीत के साथ में।

0: अरे सुषमा, आज तूने तेरे बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा?
1: अरे दीदी, स्कूल जाकर क्या करेगा, करना तो वही है ना जो हम करते आ रहे हैं।
0: अरे अरे नहीं सुषमा, हम जो करते आ रहे हैं वही हमारे बच्चे करें, जरूरी तो नहीं है ना। ये बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि इससे बच्चों का जीवन सुधर जाए।
1: अरे दीदी, आपकी बात सही है, मैं भी चाहती हूँ बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और कुछ अलग करे, पर देखो ना हालात ही कुछ ऐसे हैं।
0: सुषमा, हालात तो बनते और बिगड़ते हैं, पर हमें हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही उनका जीवन सुधरता है।
2: जी हाँ साथियों, शिक्षा जीवन का आधार, इसकी बिना है सब बेकार। जो पाता है जीवन में शिक्षा, उसकी होती है पूरी हर इच्छा।
1: शिक्षा जीवन का आधार, जो करती सबके सपनों को साकार। बच्चों को आप पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा देकर संसार को बेहतर बनाओ।
3: जी हाँ, सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगा बेहतर कल। शिक्षा, अच्छी शिक्षा और संस्कार, इन पर है सभी का अधिकार।
0: शिक्षा करेगी नव युग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। शिक्षा पर जोर होगा तभी देश प्रगति की ओर होगा।
1: आओ मिलकर शिक्षा को बढ़ावा दे, एक नए सुखद कल का निर्माण करें।
2: वागड रेडियो, वागधरा संस्था, बांसवाड़ा राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। सृष्टि का सृजन है बेटी, घर का आंगन है बेटी।
1: जिंदगी को जिंदगी से जोड़ते जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
0: जी हाँ, बेटियों को मत रखो निरक्षर, बेटियाँ भी बनेगी बड़ी अफसर।
4: खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी।
2: जी हाँ, दुश्मनों का मुकाबला डट के कर सकती है बेटी, मत बांधो बेड़ियों में ऊंची उड़ान भर सकती है बेटी।
1: जी हाँ साथियों, दे दो दर्जा बेटियों को समान अधिकार का, उनकी ख्वाहिशों पर ना अंकुश लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
0: संसार देश जिंदगी की जरूरत है बेटी, बेटी से बन औरत हर आदमी की पूरक है बेटी।
4: जी हाँ साथियों, बेटी पत्नी माँ कई रूप है बेटी के, प्यार स्नेह एवं सानिध्य हर रूप में देती है।
2: भ्रूण हत्या घोर अपराध, देश का अपमान है, बेटी के प्रति छोड़ दो निष्ठा, इसी में समाधान है।
1: जी हाँ साथियों, बनो ज्ञानी बनो दानी, अब तो लोगों जग जाओ, मत करो भ्रूण हत्या, बेटी बचाने में लग जाओ।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: मोटा अनाज मोटा अनाज,
0: क्या है भाई ये मोटा अनाज?
2: बाजरा मक्का रागी ज्वार, पोषण से है भरपूर आहार।
1: नित्य करे जो सेवन इनका, जीवन स्वस्थ रहेगा उनका।
0: जी हाँ साथियों, दाल अनाज मिलाकर खाएं, स्वस्थ जीवन हम अपनाएं।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त रीना दीदी। लेकर आ गई हूं बच्चों आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की को लेकर और नई नई प्यारी प्यारी कहानियों के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा

आप सभी जानते हैं कि हम हर रविवार को कार्यक्रम के माध्यम से आपको नई नई और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनवाते हैं। तो आज भी मैं आपको ऐसी ही नई नई और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाऊंगी। लेकिन कहानी सुनने से पहले सुन लेते हैं बच्चों ये प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिएगा साथियों कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में आपके अपनी दोस्त रीना दीदी के साथ में।

बच्चों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि साथियों मैंने गीत से पहले बताया था कि आज मैं आपको कहानियाँ सुनाऊंगी, तो आइए बच्चों सुनते हैं ये कहानी। ये कहानी है साथियों शेर और चूहे की। जी हाँ बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, एक घने सुंदर और रहस्यमय जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। उसका नाम था साथियों सिंह राजा। जंगल का हर जानवर उसे डरता था। जब वह दहाड़ता तो पेड़ की पत्तियां भी कांप उठती। सिंह राजा को साथियों अपनी इस ताकत पर बहुत ही घमंड था। वह अक्सर कहता, इस पूरे जंगल में मुझसे बड़ा और ताकतवर कोई नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जंगल के जानवर बच्चों आपस में बातें करते और कहते कि शेर तो बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन उसका घमंड उसे एक दिन मुश्किल में डाल देगा। उसी जंगल में बच्चों एक छोटा सा चूहा रहता था। उसका नाम था साथियों मिंटू। वह बहुत ही चंचल, खुश मिजाज और दयालु था। वह हमेशा सबकी मदद करना चाहता था। एक दिन बच्चों मिंटू अपनी माँ से बोला, माँ मैं भी बड़ा होकर सबकी मदद करना चाहता हूँ, चाहे मैं छोटा ही क्यों ना हूँ। साथियों यह सुनकर उसकी माँ मुस्कुराई और प्यार से बोली, बेटा आकार छोटा या बड़ा नहीं होता, इसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। एक दिन दोपहर में तेज धूप थी दोस्तों। सिंह राजा शिकार करके थक चुका था। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर सो गया। उसी समय साथियों चिंटू वहाँ खेलते खेलते पहुँच गया। उसे पता ही नहीं था कि वहाँ शेर सो रहा है। वो उछल कूद करते हुए सीधे शेर के ऊपर चढ़ गया। वो बोला, वाह यह तो बहुत ही बड़ा और मुलायम पहाड़ है। वो इधर उधर दौड़ने लगा साथियों। अचानक सिंह राजा की नींद खुली बच्चों। उसने आंखें खोल के देखा कि एक छोटा सा चूहा उसके शरीर पर दौड़ रहा है। सिंह राजा गुस्से में आया। उसने झट से मिंटू को अपने पंजे में पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर कूदो, सिंह राजा गुस्से में बोला बच्चों ये। मिंटू डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती से ऐसा नहीं किया है, अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी आपकी एक दिन मदद करूंगा। बच्चों ये सुनकर सिंह राजा जोर जोर से हंसने लगा। तुम और मेरी मदद, तुम कितने छोटे हो। लेकिन मिंटू की मासूमियत देखकर सिंह राजा का दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जाओ चले जाओ। मिंटू खुशी खुशी बोला, धन्यवाद महाराज, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद बच्चों जंगल में शिकारी आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए मजबूत जाल बिछाया। सिंह राजा शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसका पैर जाल में फंस गया। वह पूरी तरह जाल में उलझ गया। उसने बहुत ही कोशिश की लेकिन जाल मजबूत था। वह जोर जोर से धाड़ने लगा और बोला, बचाओ कोई है, मुझे बाहर निकालो। मिंटू ने तुरंत शेर की आवाज सुनी। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो महाराज की आवाज है। वह तेजी से वहां पहुंचा। उसने देखा साथियों कि सिंह राजा जाल में फंस चुका है। मिंटू बोला, महाराज घबराइए मत, मैं आ गया हूँ ना। सिंह राजा ने निराश होकर कहा, बच्चों तुम मेरी क्या मदद कर पाओगे। साथियों मिंटू बोला, महाराज आपने मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है। उसने अपने छोटे छोटे दांतों से साथियों जाल को कुतरना शुरू किया। वह लगातार मेहनत करता रहा। धीरे धीरे जाल के धागे टूटने लगे। कुछ समय बाद बच्चों जाल टूट गया और सिंह राजा आजाद हो गया। सिंह राजा बहुत ही भावुक हो गया और उसने कहा, मिंटू आज तूने मेरी जान बचाई है, मैं गलत था, मैंने तुम्हें छोटा समझा, लेकिन तुम तो बड़े ही दिल वाले निकले। मिंटू मुस्कुराया बच्चों और बोला, महाराज हर किसी की अपनी अहमियत होती है। उस दिन के बाद सिंह राजा बदल गया। अब वह घमंडी नहीं रहा साथियों। वह सभी जानवर के साथ प्यार से बात करने लगा और मिंटू सबसे अच्छा उसका दोस्त बन गया। पूरा जंगल अब खुश था साथियों। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को छोटा मत समझो, छोटा दिखने वाला भी बड़ा काम कर सकता है। घमंड इंसान को कमजोर बना देता है। शेर शक्तिशाली था लेकिन घमंड ने उसे अंधा बना दिया था। दया का फल हमेशा अच्छा होता है। शेर ने दया दिखाई चिंटू पर, उसी का फल उसे मिला। साथियों अच्छी ताकत दिल में होती है। मिंटू छोटा था लेकिन उसका साहस और दिल बहुत ही बड़ा था। जीवन में कभी भी किसी की मदद की जरूरत हमें पड़ सकती है। दोस्ती बराबरी से नहीं बनती बच्चों, भाव से होती है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहें। तो बच्चों यह तो थी हमारी प्यारी सी कहानी। एक और कहानी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन वो कहानी सुनने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारे से गीत को। तो आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में।

बच्चों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि दोस्तों मैंने गीत से पहले बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाई थी, अब यहीं मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी का शीर्षक है साथियों, दो दोस्त और भालू। जहाँ बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर सा गाँव था जहाँ हरियाली, शांति और सादगी भरी जिंदगी थी। उसी गाँव में दो दोस्त रहते थे, रवि और मोहन। दोनों की दोस्ती बच्चों इतनी गहरी थी कि लोग कहते, अगर सच्ची दोस्ती देखनी हो तो रवि और मोहन की देखो। वे बचपन से साथ रहते हैं, साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते हैं, साथ खेतों में घूमते हैं और यहाँ तक कि अपने सपने भी साथ देखते हैं। साथियों, एक दिन दोनों खेत के किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था और हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। रवि ने कहा मोहन से, मोहन हम हमेशा दोस्त बने रहेंगे ना, चाहे कुछ भी हो जाए। मोहन ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, रवि दोस्ती तो दिल से होती है, हम कभी अलग नहीं होंगे, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोनों ने साथियों हाथ मिलाकर वादा किया। कुछ दिन बाद गांव में खबर आई कि पास के शहर में बहुत ही बड़ा मेला लग रहा है। बच्चों, दोनों ने सोचा कि हम भी चलेंगे। गाँव के बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, रास्ता जंगल से होकर जा रहा है, सावधान रहना। लेकिन दोनों को अपनी दोस्ती पर पूरा भरोसा था। वह सुबह सुबह निकल पड़े बच्चों, हंसते गाते सपनों की बातें करते। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए साथियों, जंगल घना होता गया। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं, अजीब सी आवाजें, पक्षियों की चीखें, सब कुछ थोड़ा डरावना लगने लगा। रवि ने धीरे से मोहन से कहा, मोहन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मोहन बोला, डर मत, मैं हूँ ना। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी बच्चों। अचानक झाड़ियों में से जोर की आवाज सुनाई दी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक विशाल भालू उनकी तरफ बढ़ रहा था। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। साथियों, मोहन को पेड़ पर चढ़ना आता था। डर के मारे उसने बिना कुछ सोचे समझे पास के एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। रवि चिल्लाया, मोहन मुझे भी ऊपर चढ़ाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन डर ने मोहन की समझ छीन ली। बच्चों, उसने अपने दोस्त की तरफ देखा भी नहीं। रवि अकेला रह गया। उसके मन में डर, दर्द और एक सवाल था, क्या यही दोस्ती है? रवि बहुत ही घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे बचपन में सुनी एक बात याद आई, भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता है। उसने तुरंत साथियों जमीन पर लेटकर अपनी सांस रोक ली और खुद को मरे हुआ जैसा मान लिया। भालू धीरे धीरे बच्चों उसके पास आया। उसने रवि को सूंघा, उसके कान के पास अपनी नाक लगाई, कुछ देर तक उसे ध्यान से देखता रहा। रवि का दिल बच्चों जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। कुछ क्षण ऐसा लगा कि जैसे समय थम गया हो। फिर भालू ने सोचा कि वह मर चुका है और वह धीरे धीरे वहां से चला गया। भालू के जाने के बाद मोहन पेड़ से नीचे उतरा। वह थोड़ा सहज था, लेकिन उसने मजाक करने की कोशिश की, रवि भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? रवि धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। साथियों, उसकी आंखों में दर्द और सच्चाई दोनों थे। वो बोला, बच्चों भालू ने मुझे आज बहुत ही बड़ी बात सिखाई है। मोहन ने कहा, क्या? रवि ने कहा, बच्चों भालू ने कहा कि ऐसे दोस्त से दूर रहो जो मुसीबत में तुम्हें अकेला छोड़ दे। ये सुनते ही साथियों मोहन का चेहरा उतर गया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोला, बच्चों रवि मुझसे गलती हो गई है, मैं डर गया था, मुझे माफ कर दो। साथियों, रवि ने शांत स्वर में कहा, डर सभी को लगता है, लेकिन सच्ची दोस्ती वही होती है जो डर से ऊपर उठे। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती सिर्फ अच्छे समय की हंसी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कठिन समय की परीक्षा में साबित होती है। मुसीबत वह आईना है जिसमें असली दोस्ती साफ दिखाई देती है। जो दोस्त अपने स्वार्थ के लिए आपको छोड़ दे, वह दोस्ती नहीं, केवल एक साथ देने वाला व्यक्ति होता है। सच्ची मित्रता वही होती है बच्चों, जो आपके डर में आपका सहारा बने, जो आपके गिरने पर आपको उठाए, जो अपनी सुरक्षा से पहले आपकी चिंता करे। डर इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन सच्ची दोस्ती इंसान को मजबूत बनाती है। साथियों, हमें हमेशा ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो भरोसे के लायक हो, जो साथ निभाने वाले हो, जो मुश्किल में भागे नहीं बल्कि डट कर हमारे साथ खड़े रहें। जीवन में साथियों दोस्ती कम हो, लेकिन सच्ची और ईमानदार होनी चाहिए। तो बच्चों, यह तो थी हमारी आज की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आज जो मैंने आपको दोनों कहानियाँ सुनाई है वह आपको जरूर पसंद आई होगी। क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो मैं अवश्य लूंगी, लेकिन जाने से पहले
सुन लेते हैं बच्चों ये प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिएगा बच्चों वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी दोस्त रीना दीदी के साथ में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के साथ में ही हम विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आज जो मैंने आपको कहानियाँ सुनाई है वो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है साथियों 9460051234। और इसी के साथ आप हमारी ईमेल आईडी भी लिख लीजिए, हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी समय नई नई और प्यारी प्यारी कहानियों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी दोस्त रीना दीदी को। और इसी अनुमति के साथ बाय बाय बच्चों।

0: अरे सुषमा, आज तूने तेरे बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा?
1: अरे दीदी, स्कूल जाकर क्या करेगा, करना तो वही है ना जो हम करते आ रहे हैं।
0: अरे अरे नहीं सुषमा, हम जो करते आ रहे हैं वही हमारे बच्चे करें, जरूरी तो नहीं है ना। ये बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि इससे बच्चों का जीवन सुधर जाए।
1: अरे दीदी, आपकी बात सही है, मैं भी चाहती हूँ बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और कुछ अलग करे, पर देखो ना हालात ही कुछ ऐसे हैं।
0: सुषमा, हालात तो बनते और बिगड़ते हैं, पर हमें हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही उनका जीवन सुधरता है।
2: जी हाँ साथियों, शिक्षा जीवन का आधार, इसकी बिना है सब बेकार। जो पाता है जीवन में शिक्षा, उसकी होती है पूरी हर इच्छा।
1: शिक्षा जीवन का आधार, जो करती सबके सपनों को साकार। बच्चों को आप पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा देकर संसार को बेहतर बनाओ।
2: जी हाँ, सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगा बेहतर कल शिक्षा। अच्छी शिक्षा और संस्कार, इन पर है सभी का अधिकार।
0: शिक्षा करेगी नवयुग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। शिक्षा पर जोर होगा तभी देश प्रगति की ओर होगा।
1: आओ मिलकर शिक्षा को बढ़ावा दे, एक नए सुखद कल का निर्माण करें।
2: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था बांसवाड़ा राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, असफलता के डर को अपने सपनों के बीच कभी बाधा मत बनने दें, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। जी हाँ श्रोता साथियों, सपनों को साकार करने का पहला कदम

0: आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम हमारे मेहमान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में जब भी हम हर रविवार को हाजिर होते हैं तो एक नई शख्सियत को कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ते हैं। तो आज भी श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत जुड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन्हीं के जीवन से जुड़ी ढेर सारी बातों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे। सर नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागर रेडियो परिवार में।
1: जी धन्यवाद।
0: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और हमारे सभी श्रोता साथी जानते हैं कि जब भी कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम नई शख्सियत को जोड़ते हैं तो उनके जीवन से जुड़ी ढेर सारी बातों को जानते हैं। तो सर जैसा कि आप आज हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: जी सबसे पहले आपको धन्यवाद और जो वागड़ रेडियो है उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरा जो परिचय है, मेरा नाम अनिफ खान है और मैं रहने वाला हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से हूँ और मेरा पढ़ाई भी डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से ही हुआ है। वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एंड मास्टर डिग्री किया और मैं 2007 में इस डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़ा। शुरू में मैं जब जुड़ा तो मैं झारखंड में प्लेस हुआ और मेरा बैकग्राउंड इस क्षेत्र से नहीं था। मेरा पढ़ाई मैं समथिंग बैंक सेक्टर और ये की तरफ जाने का मेरा ज़्यादा रुझान था।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन मैं जब आदिवासी क्षेत्र में गया और वहाँ पे जाके जब गांव की स्थिति को मैंने नज़दीक से देखा तो धीरे धीरे करके वो दिमाग में या मेरे दिल के अंदर वो बदलाव मैं देख पाया कि नहीं, मैं वो जो पढ़ाई मैं किया हूँ उसको कैसे अब मैं अपने आप से उस समाज को दे पाऊँ।
0: बिल्कुल।
1: तो यही मेरा एक परिचय है।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया और आपने जैसा कि कहा कि आप बैंक के सेक्टर की तरफ जाना चाहते थे लेकिन जैसा कि आपने आदिवासी महिलाओं की स्थिति देखी और बहुत सारी चीजों को देखा तो आपका रुझान उस तरफ आया। तो सर जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमें आपके जीवन से रूबरू करा रहे हैं तो यही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो बचपन है वो किस कदर बीता।
1: मेरा बचपन गांव में बीता और मेरे जो पिता हैं वो भी किसान से जुड़े रहे हैं और अभी तक वो किसान से ही जुड़े हैं और मैं गांव में जाता हूं तो मेरा उसी मिट्टी के साथ जुड़ाव है अभी भी।
0: जी जी।
1: इसी वजह से मैं जो संस्था में अभी काम कर रहा हूं, जैसे मैं अभी प्रधान एक संस्था है उसमें जुड़ के इन परिवारों के साथ ज़्यादा नज़दीक से मैं काम कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो एक जो मेरा गांव के साथ अटूट रिश्ता बन रहा है तो मैंने जो सोसाइटी से लिया है मुझे ये लगता है कि मैं उसको कैसे वापस कर पाऊँ।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से आपका जो जुड़ाव है वो गांव से बना हुआ है और जैसा कि आप आदिवासी महिलाओं को जागरूक करने के लिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप जब समुदाय में कार्य करते हैं, महिलाओं को देखते हैं तो क्या ज्यादातर समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं महिलाओं को लेकर।
1: देखिए मेरा शुरू से जुड़ाव तो गांव के लोगों से रहा, उसमें खास तौर से महिला और यूथ के साथ मेरा जुड़ाव ज्यादा रहा है क्योंकि उनका जो समस्याएं हैं समाज में, जो वंचित है वो समुदाय सबसे ज्यादा वंचित है क्योंकि एक तो उसमें जो आज के दिन के जो हमारे समाज में जेंडर से संबंधित जो तरीके बने हुए हैं, सामाजिक परिस्थितियां जो बनी हुई हैं वो पितृसत्ता को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं, ना कि एक समानता को लेके बढ़ावा दे रही हैं। तो उन परिवारों या उन खासतौर से उन महिलाओं, उन लड़कियों के लिए मेरा ज़्यादा रहा है कि उनको कैसे उनसे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनकी जानकारी उन तक पहुँच पाए, उनको बोलने का अधिकार मिल पाए, उनको बात रखने का अपने परिवार में या उनसे संबंधित जो स्वास्थ्य से संबंधित या उसके एजुकेशन से संबंधित या उनके जो एक्सेस से संबंधित कि जो भी इंटाइटल हैं लेकिन उसको पता ही नहीं है कि अच्छा ये किसके लिए है, कब लेना है, क्या करना है।
0: जी जी।
1: तो वो जो जानकारी है आज के दिन वो समस्याएं अगर हम देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा गाँव में डोमिनेट करती हैं। खास तौर से ये जो समस्या है आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की कमी के भाव की वजह से और ज्यादा है।
0: बिल्कुल।
1: और दूसरा जो मेजर समस्या है कि ये जो अपना वागड़ क्षेत्र है प्लस जो आदिवासी क्षेत्र है इसमें ज्यादातर जो लोग हैं उनका जुड़ाव खेती और मजदूरी से जुड़ा है। मजदूरी के लिए वो ज़्यादातर, क्योंकि खेती के टुकड़े कम हैं उनके पास, खेती से जितना जीवन चाहिए परिवार को उतना उनसे नहीं मिल पाता अनाज के अलावा, तो उस वजह से वो लोग बाहर जाते हैं। और बाहर जब वो पुरुष या परिवार जाते हैं तो उनके बच्चों की पढ़ाई का छूटना, परिवार ये खास तौर से महिलाओं को जो आने जाने में या वो घर पे रहती है उसको अलग सामाजिक स्थितियों से झेलना, या पुरुष वहाँ पे जाता है उसको वहाँ पे अच्छी स्थितियाँ नहीं मिल पाना मजदूरी करने में या जो भी छोटी मोटी नौकरी करने में, उनके साथ जो टॉर्चर वहाँ पे होता है ठेकेदार, बड़े ठेकेदार या जो भी लोग वहाँ पे हैं, तो वो जब अपने अनुभव हमको आके बताते हैं और उसमें हमको लगता है कि जो जानकारी का अभाव है खास तौर से कि मैं जा रहा हूँ तो मेरा लेबर कार्ड नहीं है, मेरा आईडी कार्ड शायद नहीं है, है ना, मेरा बैंक का मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, तो वो समस्याएं जो है कहीं ना कहीं उस समाज को और पीछे छोड़ दे रही है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें ये बताया है कि किस तरीके से आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनका जुड़ाव प्रकृति से होता है, और हम देखते हैं कि अभी के समय में खेती की जो चीजें हैं वो सीमित होती जा रही है, उसके चलते बहुत सी बार वो पलायन कर देते हैं, और पलायन करने के बाद उनके बच्चों की शिक्षा और साथ ही उनके साथ शोषण संबंधी जो समस्याएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। ऐसे में जब हमारे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो जागरूक होंगे, उन्हें उनके हक के बारे में पता होगा, तो हम देखेंगे कि उनका शोषण होने से बच जाएगा। तो सर, जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो यही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इन सारी समस्याओं से बचने के लिए क्या ऐसे प्रयास हैं जो हमें करने चाहिए जो उन्हें इन सारी चीजों से बचा सके।
1: देखिए, सबसे पहला मुझे लगता है कि उन लोग तक पहुंच बनना, उन तक उनकी आवाज पहुंचना, उनकी जो आवाज है वो हमारे तक आना है या गवर्नमेंट तक पहुंचना, वो उसमें बहुत बड़ा गैप है।
0: बिल्कुल।
1: और जो संसाधन है जो उन तक उनकी पहुँच होनी चाहिए वो पहुंच नहीं बन पाना भी एक बड़ी समस्या है, कि उनके रिसोर्सेज, जैसे उनके पास जमीन है लेकिन पानी नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, उनके पास शायद है छोटा मोटा शिक्षा लेकिन उस संबंधित रोजगार की जानकारी उसको नहीं है जिससे वो रोजगार ले पाए, या महिलाओं को जो शिक्षा से जोड़ने का है तो उसके जो स्कूल हैं या जो आंगनवाड़ी है उसमें से मिलने वाले जो उनके अधिकार हैं वो शायद उनके बारे में उनको जानकारी उतना नहीं है या उनको उतना एक्सेस नहीं हो पा रहा है दूरी या उनके जो रास्ते हैं वहाँ तक पहुँचने के, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बेसिक समस्याएं हैं जो हम देखते हैं खासतौर से जो आदिवासी क्षेत्र है, अगर उस पर काम किया जाए मिलके। एक और बड़ा चीज़ मैं देखता हूँ कि आज के दिन जो काम हो रहा है, जो अलग अलग तरीके से काम किया जा रहा है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, डिपार्टमेंट हैं या समाज सेवी लोग हैं, वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। अगर यही तीनों चारों पांचों इंस्टीट्यूशन है अगर वो एक साथ मिलके एक एरिया के विकास के लिए बैठ के बात करते हैं और उसको अगर आगे लेके जाएंगे तो शायद, और उसी एरिया की महिलाएं, उसी एरिया के यूथ, उनको भी उसी प्लेटफॉर्म में जोड़ें, तो शायद है कि उनके अनुभवों के साथ उनके तरीकों के हिसाब से हम लोग के कुछ कर पाएं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि सभी को एक साथ मिलकर प्रयास करने की जरूरत है, साथ ही आदिवासी जो समुदाय है उनकी आवाज जो है वो सरकार तक और बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो उनके लिए कार्य करती है वहां तक पहुंचने की जरूरत है। तो सर, जैसा कि आपने आपके फील्ड से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें हमें बताई है, यहीं अब मैं आपके जीवन के बारे में जानना चाहूंगी कि आपके जीवन में क्या चीजें रही, कैसे क्या हुआ, कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां आप चीजों को लेकर परेशान हुए लेकिन फिर आपने हार नहीं मानी और उस चीज को प्राप्त किया।
1: जी, मैं अगर बोलूंगा कि मैं भी उसी परिवार से जुड़ा हूँ, मेरे देखेंगे तो मेरे पिताजी के पास सिर्फ 2 बीघा लैंड ही था लेकिन हम उसी से गुजारा करते थे, लेकिन आसपास की जमीन को मजदूरी करके मेरे पिताजी खेतीबाड़ी किए, लेकिन उन्होंने मेरे शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया, मुझे उस तरीके के संसाधन दे पाया कि मैं पढ़ पाया। और शुरू में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे इस तरीके की जो समस्याएं हैं जो आदिवासी क्षेत्र वाली, ये मेरे अनुभव नहीं थे क्योंकि ये मेरी लाइफ में मैंने कभी इतना नज़दीक से नहीं देखे थे।
0: जी जी।
1: तो जब मैं पढ़ते हुए और मेरा जब कैंपस से रिक्रूट हुआ तो मुझे भी थोड़ा एक बार तो डर लगा कि मैं एक झारखंड में जा रहा हूँ तो एक आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पे नक्सल वाला एरिया है, तो मैं वहाँ पे सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो वो एक मेरे लिए बड़ा चैलेंज था निर्णय लेने में। लेकिन उस टाइम में मैंने जब उनके साथ वहाँ पे गांव में ही मैंने 3 महीना बिताया उनके साथ, नजदीक से, तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, कि जब मैंने उस परिवार को बहुत नजदीक से देखा, उसकी हर चीज को मैंने अनुभव किया, तब मुझे लगा कि जितना मुझे मिला है तो वो तो मुझे बहुत बड़ा प्रिविलेज था, तो वो प्रिविलेज को मैं इन परिवारों के साथ मैं कैसे साझा कर पाऊं, और इनके लिए मैं अपना कुछ अंश मतलब मेरा एजुकेशन का पोर्शन मैं उनको कैसे ये कर पाऊं, ज्ञान के रूप में या मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे, अनुभव के तौर पे, मैं उनके साथ रह के हार्ट एंड हार्ट से मैं उनके साथ रह के ये वाला चीज कर पाया, तो यही मेरा एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और इसी वजह से मैं इस सेक्टर में इतने साल से 15-16 साल से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और जो मुझे एनर्जी देता है जब भी कोई महिला की कहानी मैं सुनता हूँ और वो जो बदलाव वो बताती है उसके बच्चों के बारे में या उसकी खुद की जर्नी के बारे में, तो वो मुझे एक अलग तरीके का एनर्जी देता है और मोटिवेट करता है इस सेक्टर को और ज्यादा ये करने के लिए।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी बातों से हमें अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: तो मैं एक तो बोलूंगा कि ये जो वागड़ रेडियो है और जो वागधारा की एक ये पहल है, इससे लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ज्यादा से ज्यादा इस मंच के माध्यम से वो अपनी आवाज को लेके आए, रखें, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी अगर वो अपने नई पीढ़ी को दे पाए यहाँ से जुड़ के, तो ये एक मुझे लगता है उनके लिए एक अच्छा क्षेत्र होगा जिसकी वजह से वो अपने आने वाले टाइम में सुधार कर पाए।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने कार्यक्रम में हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है, तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में प्रधान संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे अनिफ खान जी जुड़े हुए थे, जिनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से हमें अपने जीवन में आने वाली चीजों को बदलने की जरूरत है और बदलाव हर किसी के जीवन में आता है। तो आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में होने वाली सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक रुपया।

साथियों, इस गीत के बाद हम विदा लेते हैं कार्यक्रम हमारे मेहमान से। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vaghdhara.org, radio@vaghdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नई शख्सियत के साथ।

0: दोस्तों, तुम अपने खान पान का रखो अच्छे से ध्यान। जी हाँ, वरना बाद में पछताओगे। यह बात आज ही तुम जान लो।
1: दूध दही है बहुत जरूरी, फल तरकारी बड़ी है न्यारी।
0: यह सब पोषण की है खान, जो तुम इनसे दूर रहोगे होगा सेहत का नुकसान।
1: वाग्धारा संस्थान और वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में जारी।
2: सृष्टि का सृजन है बेटी, घर का आंगन है बेटी।
1: जिंदगी को जिंदगी से जोड़ते जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
3: जी हाँ, बेटियों को मत रखो निरक्षर, बेटियाँ भी बनेगी बड़ी अफसर।
4: खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी।
0: जी हाँ, दुश्मनों का मुकाबला डट के कर सकती है बेटी, मत बांधो बेड़ियों में ऊंची उड़ान भर सकती है बेटी।
1: जी हाँ साथियों, दे दो दर्जा बेटियों को समान अधिकार का, उनकी ख्वाहिशों पर ना अंकुश लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
3: संसार देश जिंदगी की जरूरत है बेटी, बेटी से बन औरत हर आदमी की पूरक है बेटी।
4: जी हाँ साथियों, बेटी पत्नी माँ कई रूप है बेटी के, प्यार स्नेह एवं सानिध्य हर रूप में देती है।
0: भ्रूण हत्या घोर अपराध, देश का अपमान है, बेटी के प्रति छोड़ दो निष्ठा, इसी में समाधान है।
1: जी हाँ साथियों, बनो ज्ञानी बनो दानी, अब तो लोगों जग जाओ, मत करो भ्रूण हत्या, बेटी बचाने में लग जाओ।
3: वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: अरे सुषमा, आज तूने तेरे बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा?
6: अरे दीदी, स्कूल जाकर क्या करेगा, करना तो वही है ना जो हम करते आ रहे हैं।
5: अरे अरे नहीं सुषमा, हम जो करते आ रहे हैं वही हमारे बच्चे करें, जरूरी तो नहीं है ना ये। बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि इससे बच्चों का जीवन सुधर जाए।
6: अरे दीदी, आपकी बात सही है, मैं भी चाहती हूँ बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और कुछ अलग करे, पर देखो ना हालात ही कुछ ऐसे है।
5: सुषमा, हालात तो बनते और बिगड़ते हैं, पर हमें हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही उनका जीवन सुधरता है।
0: जी हाँ साथियों, शिक्षा जीवन का आधार, इसकी बिना है सब बेकार। जो पाता है जीवन में शिक्षा, उसकी होती है पूरी हर इच्छा।
1: शिक्षा जीवन का आधार, जो करती सबके सपनों को साकार। बच्चों को आप पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा देकर संसार को बेहतर बनाओ।
0: जी हाँ, सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगा बेहतर कल शिक्षा। अच्छी शिक्षा और संस्कार, इन पर है सभी का अधिकार।
7: शिक्षा करेगी नवयुग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। शिक्षा पर जोर होगा तभी देश प्रगति की ओर होगा।
1: आओ मिलकर शिक्षा को बढ़ावा दे, एक नए सुखद कल का निर्माण करें।
2: वागड़ रेडियो वाग्धारा संस्था बांसवाड़ा राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: हाजिर है साथियों कार्यक्रम
8: गांधी आत्म दर्शन में।
0: साथियों, सत्य अहिंसा का था वो पुजारी, कभी ना जिसने हिम्मत हारी, जिसने हमें दी आजादी, जन जन है उसका आभारी।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि श्रोता साथियों, पिछले रविवार को हमारे बीच में अहिंसा प्रकरण को लेकर बातचीत चल रही थी। आज भी श्रोता साथियों, अगर इस प्रकरण से आगे हम बात करें तो अहिंसा जब सेवा का रूप धारण करती है तब वह समाज के सबसे दलित, सबसे पिछड़े हुए लोगों से आरंभ करती है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल,
0: स्वयं गांधी जी ने इसके लिए हजारों मीलों की यात्रा की है। हम देखते हैं कि ठेठ अंतिम दिनों तक काम के अतिशय बोझ तले दबे होने पर भी दिन रात एक करके थर्ड क्लास के डिब्बे से स्टेशन से स्टेशन हाथ बाहर निकाल कर हरिजन फंड के लिए पैसे उगाए थे।
1: बिल्कुल,
0: गांधी जी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे साथियों, पर ऐसा करते हुए वे किसी को पंगु बनाना नहीं चाहते थे। अतः स्वयं भीख मांगते हुए किसी को भीख मांगा नहीं देते थे। इसके बदले वे कुछ न कुछ काम देने का प्रयास करते। उसी में से दोस्तों विकसित हुई चरखे की प्रवृत्ति, जिसने लगभग 2 लाख गांव तक काटने वाले बहनों और बुनकर भाइयों तक मजदूरी पहुंचाई थी।
1: बिल्कुल,
0: सेवा के इसी विशाल काम में से ठेठ गांव तक पहुंचने वाले संगठन उन्होंने ही खड़े किए थे। हम देखते हैं कि अखिल भारतीय चरखा संघ, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ और हिंदुस्तानी तालीम संघ, अधिम जाति सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, ये सभी श्रोता साथियों संगठन गांधी जी की अहिंसा के विधायक पक्ष के सुसंगठित नमूने ही थे।
1: बिल्कुल, यही बात करें तो श्रोता साथियों, गांधी जी के खादी आंदोलन ने राजनीतिक रूप भी धारण किया था। सूत के धागे से स्वराज का उनका नारा कोई खोखला नहीं था। उसके कारण लंकाशायर और मैनचेस्टर की मिलें बंद हो गई थी, परंतु विदेशी माल के बहिष्कार या विलायती कपड़ों की होली जैसे नकारात्मक कार्यक्रमों के पीछे भी गांधी जी की अहिंसा का सकारात्मक पक्ष था। कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि दुनिया को उनका विश्वास तब हुआ जब गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड में गांधी जी ने स्वयं मांग की और बंद मिलों के कारीगरों से मिलने गए। ब्रिटिश सरकार को तब भय था कि भूख से पीड़ित मजदूर कहीं उनके इस मेहमान पर हमला न कर बैठे, पर गांधी जी उनके बीच खुलकर घूमे। इन मजदूरों को उन्होंने समझाया कि खादी के कार्यक्रम से अगर उनके पेट में एक एक इंच गड्ढे पड़ गए हैं तो ब्रिटिश मिलों के कारण हिंदुस्तान के मजदूरों के पेट में कहीं ज्यादा गड्ढे पड़े थे। मजदूरों के प्रति प्रेम की वजह से ही उन्होंने यह प्रवृत्ति हाथ में ली थी। गांधी जी कपड़ा मिलों के क्षेत्र में जहाँ गए वहाँ उनका हार्दिक स्वागत हुआ था। गांधी जी अहिंसा को ऐसा तत्व मानते थे कशिश जो समाज को टिकाए रखता है। तभी वे कहते थे कि जिस तरह गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी और अन्य ग्रह नक्षत्रों को संतुलित और व्यवस्थित रखता है, उसी तरह अहिंसा समाज को संतुलित रखती है। इसी कारण वे ब्रिटिश या दक्षिणी अफ्रीकी सरकार द्वारा की गई हिंसा के विरोधी थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का कर्म क्षेत्र अपेक्षाकृत मर्यादित था, इसी से वे आंदोलन को अहिंसक रख सके थे।
0: बिल्कुल,
1: भारत में विशाल क्षेत्र था और यहाँ समस्याएं भी तरह तरह की थी। जहाँ गांधी जी पूरे देश को अहिंसा के मार्ग पर ले जा सके थे, परंतु 30 वर्षों तक प्रत्येक क्षेत्र में अहिंसा को बनाए रखने में सफल नहीं हुए थे।
0: जी हाँ,
1: विशेष रूप से उनके जीवन के अंत भाग में उत्तर भारत में जो कौमी दावानल फटा था उसे पूरी तरह से वे काबू नहीं कर सके थे। अहिंसा का मार्ग खांडे की धार पर चलने जैसा कठिन और सीधा था। वे कौमी हिंसा के समक्ष भी जूझते रहे। अत्यंत धैर्य पूर्वक और ताप झेलते हुए वे स्वयं जल कर प्रकाश देते रहे। आंतरिक हिंसा का सामना करने के लिए उन्होंने शांति सेना का मार्ग सोचा। श्रोता साथियों, पूरे देश में शांति सेना संगठित करने का उनका सपना अधूरा रहा था, परंतु अपने स्तर पर तो वे एक आदर्श शांति सैनिक के रूप में जिए और मरे थे।
0: बिल्कुल,
1: नोआखाली, बिहार, दिल्ली और कलकत्ते में उनके द्वारा किए गए शांति प्रयास बेजोड़ थे। गांधी जी ऐसा मानते थे कशिश के धैर्य के साथ कष्ट सहन करते जाने से मनुष्य के मन का मेल जलकर खाक हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: उत्तरोत्तर शुद्ध होता जाता है। मनुष्य का प्रेम जब चरम सीमा तक पहुंचता है तभी वह प्राणहुति दे सकता है। इस मान्यता को उन्होंने अपने जीवन में अक्षरश सिद्ध कर बताया था।
0: जी हाँ अंजलि जी, साथियों यह एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ गांधी जी अहिंसा का प्रत्यक्ष प्रयोग करके बता नहीं सकते थे। वह क्षेत्र था विदेशी आक्रमण समय अहिंसा। दक्षिण अफ्रीका में 2 युद्धों के समय उन्होंने घायलों की सेवा करने के लिए टुकड़ियां संगठित की थी।
1: बिल्कुल,
0: वहीं ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी ने उन्हें इन दोनों युद्धों और प्रथम विश्व युद्ध के समय भी अंग्रेज साम्राज्य की तरफ रखा। जुलू युद्ध के वक्त वे गोरी सरकार के पक्ष में थे, पर उन्होंने घायल जो लोगों की सेवा अत्यंत प्रेम पूर्वक की थी।
1: बिल्कुल
0: साथियों, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तब इंग्लैंड में भी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका जैसी स्वयंसेवकों की टुकड़ी संगठित करने के प्रयास किए थे, लेकिन बीमारी के कारण उनको भारत आ जाना पड़ा। इस युद्ध के समय उन्होंने भारत में तो रीति के अनुसार सैनिक भर्ती का प्रयास किया था, लेकिन उसमें उन्हें विशेष सफलता नहीं मिल पाई।
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि जीवन के दूसरे अनेक विषयों की तरह अहिंसा के बारे में गांधी जी के विचारों का भी विकास हुआ था। प्रथम महायुद्ध के समय जो सैनिक भर्ती करते थे अंजलि जी, वे द्वितीय महायुद्ध के समय युद्ध विरोधी बन चुके थे।
1: बिल्कुल

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं सबके गांधी गांधी आत्मदर्शन में अहिंसा प्रकरण की ओर। श्रोता साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी फौजें जब दक्षिणी एशिया की भूमि को हैरान परेशान करने लगी, तब अहिंसा के इस पुजारी ने पूछा कि विदेशी आक्रमण के समय अहिंसा किस तरह कारगर होगी। गांधी जी ने सवाल की तरफ भी ध्यान तो दिया ही था, बल्कि यदि जापानी सेनाएं भारत के पूर्व तट पर उतरे तो हिंद की प्रजा उसका सामना किस तरह कर सकती है। इस विषय की पूरी जांच पड़ताल करने के लिए उन्होंने मीरा बहन को उड़ीसा भेजा था। श्री सतीश चंद्र दास गुप्ता के नेतृत्व में बंगाल के कई सर्वोदय कार्यकर्ता भी तट विभाग में घूमकर लोकमानस को बनाए रखने के प्रयास करते थे। गांधी जी ने विदेशी आक्रमण के अहिंसक प्रतिकार के विषय में कशिश एक अमेरिकी अखबार को साक्षात्कार भी किया था। इस साक्षात्कार के विवरण और मीरा बहन के साथ हुए पत्र व्यवहार के आधार पर हमारी आंखों के आगे इस बाबत गांधी की कल्पना का एक चित्र खड़ा होता है।
1: बिल्कुल।
0: अलबत्ता जापानी सेना का विधिवत आक्रमण भारत पर नहीं हुआ था, यह स्वतंत्र भारत को अहिंसक प्रतिकार के संबंध में अंगुली उठाने का प्रत्यक्ष अवसर गांधी जी को मिला नहीं था। पर उस बाबत गांधी की कल्पना का सार संक्षेप में इस प्रकार हम बता सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, गांधी जी मानते थे कि आत्मरक्षा के लिए मारने को नहीं वरन मरने के लिए तैयारी चाहिए। स्वतंत्र भारत स्वेच्छापूर्वक हिंसक सेना न रहने का निर्णय करेगा। यदि यह ऐसा करेगा तो स्वाभाविक रीति से इसे दुनिया के अनेक देशों की मित्रता मिलेगी और शेष दुनिया की सहानुभूति भी प्राप्त होगी।
1: बिल्कुल।
0: स्वतंत्र भारत की विदेशी नीति ऐसी होगी कशिश कि जिसके कारण इसका सभी देशों के साथ मैत्री संबंध होगा, ताकि इस पर आक्रमण की संभावनाएं घट जाएंगी। फिर भी अगर कोई सत्ता या संपत्ति लोलुप देश भारत भूमि पर सीधा आक्रमण करेगा तो अहिंसक सैनिक विशाल संख्या में इसकी सीमा पर निशस्त्र खड़े रहेंगे।
1: जी हाँ।
0: आक्रमकों की तोपों के सामने खड़े रहकर अपना बलिदान देंगे। ऐसे बलिदान के बाद भी यदि आक्रमण करने वाली सेनाएं भारत के अहिंसक सैनिकों की लाशों को रौंदकर भारत भूमि पर आगे घुस आएगी, तो स्वतंत्र भारत की जनता का प्रत्येक वर्ग इस सेना के प्रति असहयोग रहेगा। यह असहयोग ऐसा सख्त होगा कि आक्रामक सैनिकों के लिए किसी भी तरह का जीवन व्यवहार कर पाना असंभव हो जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: उन्हें खाना नहीं मिलेगा, भूमि पानी वायु पर वाहन व्यवहार सामान ढोने संदेश व्यवहार हेतु किसी भी प्रकार की सेवा नहीं मिलेगी। रेलवे डाक विभाग बैंक उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करने से इनकार करेगी। इस प्रकार आक्रमक के लिए सरकार के बतौर काम कर पाना कठिन हो जाएगा।
1: जी हाँ साथियों, अलबत्ता यह एक कल्पना चित्र ही था। इसे कार्यान्वित करने के लिए गांधी जी ने अपने आश्रम वासियों से तोपों के मुहाने पर खड़े होने वाली सेना के सैनिक बनने के लिए तैयार रहने को कहा था।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, लेखक के माता पिता दोनों ऐसी ही सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हुए थे। ऐसा यह कल्पना चित्र गांधी जी और उनके साथियों के लिए वास्तविक था। हम देखते हैं कि आज संसार में अनेक स्थानों पर शांति सौधक इस संबंध में शोध करते हैं, तब उनके शोध के विषयों में गांधी जी द्वारा कल्पित यह चित्र भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
0: बिल्कुल।
1: गांधी जी को विशेष रूप से इस देश के लोगों में विद्यमान कायरता दूर करने का काम करना पड़ा था। अंजलि जी, वे एकाधिक बार यह कह चुके थे कि कायरता के बजाय हिंसा बेहतर है, पर वे हर बार ऐसा भी कहते थे कि हिंसा के बजाय अहिंसा कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है।
0: बिल्कुल।
1: कई हिंसा के समर्थक और कई बार तो सरकारी तंत्र तक कायरता और हिंसा बाबत गांधी जी के इन वचनों का दुरुपयोग हिंसा के प्रचार हेतु करते हैं। विशेष रूप से ऐसा करना उनके देहांत के बाद उनकी पीठ पीछे प्रहार करने के बराबर है। साथियों, भोली जनता को धोखा देने के प्रयास के समान है ये। स्वतंत्रता संग्राम के समय गांधी जी ने जो अहिंसा का मार्ग बताया था, वह एक प्रकार से देखें तो संकट को अवसर में बदल डालने का पराक्रमी कार्यक्रम था।
0: बिल्कुल।
1: उस समय संकट यह था साथियों कि अपना देश गुलाम था और इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए देश के पास शस्त्र नहीं थे। विनी शस्त्र संघर्ष का मार्ग बताकर गांधी जी ने इस संकट को अवसर में पलट दिया। साथियों, गांधी जी जिस अहिंसा की बात करते थे वह वीरों की अहिंसा की बात थी।
0: बिल्कुल।
1: उनके मन में अहिंसा के संपूर्ण दर्शन के संबंध में जीवंत निष्ठा थी। वहीं कांग्रेस ने जिस अहिंसा को अपनाया था उसे निष्ठा के रूप में नहीं बल्कि एक रणनीति के रूप में अपनाया था।
0: जी हाँ।
1: इनके द्वारा श्रोता साथियों प्रयुक्त अहिंसक शक्ति प्रेम से स्फुटित शक्ति नहीं थी, अतः कई बार देश के अहिंसक आंदोलनों में हिंसा प्रयुक्त नहीं होती थी। यह सही है, पर वह गांधी जी के अर्थ में शुद्ध अहिंसा नहीं थी, इसलिए नीति के रूप में स्वीकार की गई अहिंसा से उन्होंने काम चलाया और वे स्वयं तो अहिंसा में संपूर्ण निष्ठा रखते ही थे। साथियों,
0: बिल्कुल श्रोता साथियों, उनके अनेक साथी भी इस संबंध में गांधी जी के साथ थे, पर देश के विशाल जन आंदोलन में जुड़े अधिकांश लोगों की धारणा अलग अलग थी। किसी से जीवन के अंतिम भाग में गांधी जी ने कहा कि ईश्वर को मुझसे अमुक काम कराना था, इस संबंध में मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मैंने कायरों की अहिंसा से भी काम चला लिया।
1: वीरों
0: की अहिंसा का यदि आचरण किया जाए तो उनके परिणाम कैसे निकलेंगे, यह हम गांधी जी के जीवन के अनेक उदाहरण में देख चुके हैं। संपूर्ण समाज, समाज का बड़ा भाग यदि वीरों की अहिंसा का उपयोग करे तो इसके शेष परिणाम आए, यह अभी दुनिया को देखना शेष है।
1: बिल्कुल,
0: यह थोड़ा अहिंसा धर्म और अहिंसा नीति पर विचार कर लेना चाहिए।
1: जी,
0: कांग्रेस ने अहिंसा को एक नीति के रूप में ही स्वीकार किया था, एक धर्म के रूप में नहीं। गांधी जी ने वीरों की अहिंसा और कायरों की अहिंसा के जो भेद बताए थे कशिश, वे भी इस बात को ध्यान में रखकर ही थे कि ऐसा माना जा सकता है कि विदेशों में बहुत से शांतिवादी और शांति के बारे में शोध करने वाले अहिंसा का एक कौशल्य युक्त रीति के रूप में महत्व मानते हैं, पर अहिंसा में एक जीवन शैली या फिलोसोफी के रूप में वे ज्यादा रुचि नहीं लेते।
1: बिल्कुल,
0: मानते हैं कि यह व्यक्तिगत रुचि का विषय है, जिनका ऐसा मानना हो वे माने, बाकी संपूर्ण विशाल समूह के लिए अहिंसा का उपयोग तो एक टेक्निक के रूप में ही है। गांधी जी के लिए अहिंसा के तत्व ज्ञान का ही महत्व था, जिसके अनुरूप वे अपनी संपूर्ण जीवन शैली बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। टेक्निक एक साधन है, जरूरत हो तब काम में ले लो और जरूरत न हो तब छोड़ जा सके, ऐसा साधन। गांधी जी स्वराज के बदले भी अहिंसा छोड़ने को तैयार न होते, क्योंकि वे इसे जीवन से जुड़ा धर्म मानते थे।
1: बिल्कुल अंतरे जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों, आज हमने बात की अहिंसा प्रकरण को लेकर, अगले रविवार को हम आपसे फिर से जुड़ेंगे एक नए प्रकरण के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन से जाने की अनुमति। नमस्कार।
2: तो साथियों, सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
3: बच्चों के अधिकार।
4: घर परिवार में दुलार, माँ का पहला दूध व अर्ध ठोस आहार, बच्चों का है अधिकार।
5: जी हाँ, पर्यावरण सुधार, हरा भरा संसार, प्रेम पूर्ण व्यवहार और शिक्षा संस्कार, ये भी है बच्चों के अधिकार।
6: बिल्कुल सही, सभी प्रदूषण को रोकें, बस्ता लेवे हल्का, बाल मजदूरी को रोकें, पिता को दे रोजगार, ये सभी है बच्चों के अधिकार।
5: वाग्धारा संस्था और वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में जारी।
3: बच्चों के अधिकार।
4: घर परिवार में दुलार, माँ का पहला दूध व अर्ध ठोस आहार, बच्चों का है अधिकार।
5: जी हाँ, पर्यावरण सुधार, हरा भरा संसार, प्रेम पूर्ण व्यवहार और शिक्षा संस्कार, ये भी है बच्चों के अधिकार।
6: बिल्कुल सही, सभी प्रदूषण को रोकें, बस्ता लेवे हल्का, बाल मजदूरी को रोकें, पिता को दे रोजगार, ये सभी हैं बच्चों के अधिकार।
5: वाग्धारा संस्था और वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में जारी। आंगनवाड़ी जाई ने तारो नाम लकाओ, भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ,
7: सोराना नक्काबजू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार,
8: भिंडा तुरिए आलड़ी, कोराने वालोर, रोपो खाओ सब्जिये, डीले आवे जोर,
9: सीरो दलियो राबड़ी, फूली सोका दाल, पांचवे महीने बाल ले आ खवानो आल,
10: अणी वातनु ध्यान राखो, आपरो जीवन सुरक्षित राखो।

वागड़ रेडियो 90.8 FM प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

श्रोताओं, मैं भारत का संविधान, नियम, कायदा और विधान, कभी कठोर कभी लचीला, कभी एकात्मक कभी संघात्मक, पंथों की निरपेक्षता मुझसे, वर्गों का संरक्षक मैं, केंद्रों की शक्ति मुझसे, राज्यों का बल भी मैं हूँ, हर निराशा की आशा भी मैं हूँ, हर प्रश्न का उत्तर मैं हूँ, आजादी की लड़ाई का प्रतिफल मैं हूँ, इस भारत की आत्मा मैं हूँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमने जाना था भारतीय संविधान और रियासतों के बारे में, जिसमें हम जान रहे थे राजाओं के विशेषाधिकार और उनका अंत, निजी थैली क्या और कितनी बड़ी। इसी के साथ हमने जाना था निजी थैली और शासकों के विशेषाधिकारों की समाप्ति। इसी बीच रविवार विशेष कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में आज हमारी बातचीत होने वाली है संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता को लेकर बात करें तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या बिना संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता के भारत वांछित प्रगति हासिल कर सकता है? क्या बिना इसके आधुनिक भारत का बोध सुनिश्चित किया जा सकता है? देश के आर्थिक और सामरिक शक्ति की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने की बात की जा रही है, क्या वैमनस्यता, हिंसा, अवसाद, द्वेष के फैलाव और लोकतांत्रिक अवमूल्यन के बीच ये लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा?
0: जी बिल्कुल जागृति जी, ये हमारे लिए बहुत बड़े प्रश्न है। यही बात करें संविधान बोध और सामाजिक हकीकत की, तो साथियों वर्ष 2022 में राजस्थान में धार्मिक विद्वेष के कारण दो मुसलमानों द्वारा कन्हैया लाल नामक एक हिंदू व्यक्ति की बर्बर हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश के नीमच में भवरलाल जैन नाम के मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति की हत्या केवल इस शंका के आधार पर की गई कि शायद वह मुसलमान है। राजस्थान के बारवा गांव के जितेंद्र मेघवाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि सूरज सिंह राजपुरोहित और रमेश सिंह को अनुसूचित जाति के जितेंद्र मेघवाल का तनी हुई मूछें रखना और नजरें मिलाकर बात करना अखरता था।
1: जी हाँ,
0: संविधान ने जिस प्रकार के समाज और देश के निर्माण की योजना का स्वप्न देखा था, ये घटनाएं उसके ठीक विपरीत है। ऐसी घटनाओं से अक्सर कानूनी तरीके से निपटा जाता है, जबकि इन्हें संवैधानिक मूल्यों की दृष्टि से भी देखा जाना आवश्यक है।
1: बिल्कुल अंजलि, अगर यही अदालती बोझ और न्याय बोध के बारे में जाने तो भारत की जिला और तालुका स्तर की अदालतों में 4.17 करोड़ मामले लंबित हैं, जिनमें से 35.70 लाख मामले 10 लाख से ज्यादा से चल रहे हैं, 1.6 लाख प्रकरण तो 30 साल से ज्यादा पुराने हैं। इतना ही नहीं श्रोताओं, उच्च न्यायालयों में 59.67 लाख मामले लंबित हैं, इनमें से 13.40 लाख मामले 10 साल से ज्यादा समय से लंबित हैं। कारण ये है कि भारत राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था दोनों में ही न्याय बोध का जन्म नहीं हो पाया है।
0: जी हाँ,
1: कुछ न्यायाधीश अच्छे होते हैं और वे अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभाते हैं, लेकिन अंजलि इससे पूरी व्यवस्था में न्याय बोध पैदा नहीं होता।
0: जी हाँ,
1: भारत अपने भविष्य का निर्माण कृत्रिम मेधा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सांप्रदायिक मेधा यानी कि कम्युनल इंटेलिजेंस से नहीं, बल्कि संवैधानिक मेधा कॉन्स्टिट्यूशन इंटेलिजेंस के माध्यम से ही कर सकता है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता और वैमनस्यता की राजनीति विचारधारा भारतीय समाज में संवैधानिक बुद्धिमत्ता का विकास नहीं होने देगी। अतः यह पहल बहुत ऊर्जा और प्रतिबद्धता के आधार पर संचालित करनी होगी। इसे हम संवैधानिक प्रज्ञा भी कह सकते हैं। संवैधानिक मेधा या बुद्धिमत्ता हमें राज्य और राजनीतिक दलों की मंशा को समझने की शक्ति प्रदान कर सकती है। आज सरकार के कई जन विरोधी फैसले केवल इसलिए स्वीकार कर लिए जा रहे हैं क्योंकि वे राज्य व्यवस्था की ताकत का इस्तेमाल एक खास धर्म के अनैतिक विस्तार के लिए कर रहे हैं।
1: जी हाँ,
0: संविधान बोध और विद्वान सदस्यों की राय के बारे में अगर जाने तो हम कह सकते हैं कि संविधान सभा में विद्वान सदस्यों ने भी एक विषय में अपनी राय दर्ज की थी। किसी संविधान का सफल होना केवल उन लोगों पर निर्भर नहीं करता जागृति जी, जो उसे व्यवहार में लाते हैं, बल्कि उन लोगों पर निर्भर करता है जिनके लिए वह व्यवहार में लाया जाता है। हमारे देशवासियों का चरित्र इसी संविधान की कसौटी पर कसा जाएगा।
1: जी हाँ, इसी के साथ हम जदुवंश साहे को लेकर बात करें अंजलि, तो हमने बहुत ईमानदारी से परिश्रम करके तथा सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य से इस संविधान को पारित किया और अब हमें देखना है कि व्यवहार में ये कैसा रूप धारण करता है।
0: जी हाँ,
1: श्रोताओं ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस संविधान का पोषण करें और लोगों को इस संविधान में सन्निहित सिद्धांतों की शिक्षा दे।
0: जी,
1: ये एक महान कार्य है और मुझे आशा है कि हमारा देश तथा केंद्र के हमारे नेता इस कार्य को संपन्न करने में समर्थ होंगे। यदि वे गलत रास्ते पर जाएंगे तो केंद्र के बहुत शक्तिशाली होने के कारण सारा राष्ट्र ही गलत रास्ते पर चला जाएगा।
0: जी बिल्कुल, अगर यही बात करें लोकनाथ मिश्र की, तो साथियों संविधान को हम जितना अच्छा बना सकते थे बनाया है।
1: अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी विधायी संसदीय क्षेत्र में जाएं और इस विधान को अपने गांव में लोगों को समझाएं, जहां हमारा कार्य क्षेत्र है। शिक्षा व प्रचार के अभाव में कभी कभी जनता में बड़ी गलतफहमी फैल जाती है और आम जनता के लिए स्वराज और संविधान का यही मतलब है कि उन लोगों को खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान और शिक्षा मिले।
2: जी हाँ,
1: तो जैसा कि अंजलि हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता को लेकर, आगे भी हम जानेंगे बलवंत सिंह मेहता के बारे में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
2: जी बिल्कुल।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में। और गीत से पहले हम बात कर रहे थे संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता को लेकर। हम जान रहे थे अदालती बोध और न्याय बोध के बारे में, साथ ही हमने जाना संविधान बोध और विद्वान सदस्यों की राय, जिसमें हमने जदुवंश सहाय के बारे में जाना, लोकनाथ मिश्र के बारे में जाना, यही बलवंत सिंह मेहता के बारे में जानते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। बीते वर्षों के दौरान हमारी सरकारें और राजनीतिक दल संवैधानिक बोध जागृत करने में नाकाम रहे।
1: जी हाँ,
0: समाज से तो संवैधानिक बोध की अपेक्षा भी नहीं की जा रही थी, क्योंकि उसके ज्यादातर व्यवहार संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ ही रहे हैं। साथ ही अंजलि, भारत ने आजादी के बाद आर्थिक विकास को ज्यादा महत्व दिया।
1: जी हाँ।
0: लेकिन वह आर्थिक विकास संवैधानिक मूल्यों पर कैसे आधारित हो ये सोचना भूल गया।
1: जी बिल्कुल।
0: सरकार के स्तर पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण सरीखी नीतियां बनी, लेकिन सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में संविधान की उपेक्षा की बड़ी चूक हो गई। आज आजादी के 75 साल बाद हमारा हासिल है असमानता से भरी अर्थव्यवस्था, सांप्रदायिक वैमनस्यता और संसाधनों का गैर जिम्मेदार इस्तेमाल।
1: जी बिल्कुल। अगर यही बात करें जागृति जी संवैधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता की, तो साथियों संवैधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता का अर्थ है हमारे निजी, सामाजिक और व्यवस्थागत जीवन में संवैधानिक मूल्यों का मौजूद होना, उनका पालन किया जाना, ऐसी नजर विकसित होना जो यह देख सके कि न्याय, समता, स्वतंत्रता, गरिमा, बंधुता के मूल्यों की कब, कहां और कैसे उपेक्षा होती है।
0: जी हाँ।
1: इस दृष्टि से ऐसी चेतना विकसित हो सकेगी जो देश के लोगों में आर्थिक असमानता और बहुसंख्यक आबादी के साथ होने वाले अमानवीय शोषण को देखे और उसका प्रतिरोध करने की क्षमता विकसित करेगी।
0: बिल्कुल।
1: संवैधानिक चेतना विकसित होने का असर हमें भारत के जीवन पर भी दिखाई देता है।
0: जी हाँ अंजलि, संवैधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि इसे व्यक्ति में हर बच्चे, युवा और लैंगिक पहचान से जुड़े व्यक्ति में समान रूप से पाया जा सकता है, लेकिन समाज और सरकार मिलकर इसे निष्क्रिय बनाए रखते हैं। यदि संवैधानिक मूल्यों को सबके द्वारा स्वीकार कर लिया जाए तो मजहबी, जातीय, नस्ली आधारों पर होने वाले टकरावों को निष्प्रभावी किया जा सकता है।
1: जी बिल्कुल।
0: लोकतंत्र के मूल्यों को अपने जीवन के व्यवहार का आधार बनाना ही संवैधानिक बौद्धिकता है। साथ ही श्रोताओं, संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और अस्पृश्यता का व्यवहार करना गैर कानूनी है। वास्तव में इस प्रावधान को जीवन में सजगता के साथ अपनाना ही संवैधानिक बुद्धिमत्ता है। ये एक चुनौती है क्योंकि संविधान अस्पृश्यता का अंत करना चाहता है।
1: जी बिल्कुल।
0: लेकिन हमारा समाज इस व्यवहार और व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। छुआछूत और जातिवादी, नस्लवादी व्यवहार से मुक्त होने के लिए संवैधानिक बुद्धिमत्ता का होना एक अनिवार्यता है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी। अगर यही अब हम जाने संवैधानिक साक्षरता की जरूरत के बारे में, तो साथियों संविधान अपेक्षा करता है कि हर भारतीय को संविधान की मूल भावना को जानना समझना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: यह उसकी जिम्मेदारी भी है और अधिकार भी। संवैधानिक बुद्धिमत्ता लोगों में वह विवेक उत्पन्न करेगी जिससे वे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के कामकाज की समीक्षा कर पाएंगे। इसके लिए संवैधानिक साक्षरता जरूरी है। अगर देश में संवैधानिक साक्षरता पर कोई पहल की गई होती तो लोगों को यह पता चल गया होता कि संविधान के मुताबिक भारत सरकार को जो भी शक्तियां या अधिकार मिलते हैं वह भारत के लोगों से ही मिलते हैं।
0: जी हाँ।
1: लोग जिस उम्मीदवार और जिस राजनीतिक दल को अपना मत देते हैं वे ही उसकी नीतियों, विचार और उनके कर्मों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं।
0: जी हाँ।
1: संविधान के द्वारा उन्हें दी गई शक्ति के बारे में भी जानना और उनके महत्व को महसूस करना ही संवैधानिक बुद्धिमत्ता कहलाती है।
0: बिल्कुल। साथ ही अंजलि, जैसे कि संवैधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता को अपनाने का मतलब है भारत के आधुनिक चारित्रिक विरोधाभास को समाप्त करना। जरा गौर करिए, बच्चों को स्कूल में गांधी, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ाया जाता है।

0: है।
1: जी हाँ।
0: इस उपेक्षा का इतिहास उतना ही है जितना भारत के संविधान की उम्र है। भारत में सैनिक अनुशासन सिखाने के लिए शिविर लगाए जाते हैं, किंतु संविधान को जानने के लिए शिविर नहीं लगाए गए।
1: बिल्कुल।
0: भारत में हजारों वर्षों से मौजूद रामायण महाभारत सरी की किताबों पर आज भी सैकड़ों टीकाए और विश्लेषण लिखे और प्रकाशित भी किए जाते हैं, लेकिन संविधान पर ऐसी पहल करने में किसी समुदाय ने रुचि नहीं दिखाई। संविधान की यह उपेक्षा अनजाने में ही नहीं हुई है, वास्तव में भारत के संविधान को भारत के लोगों ने ही नहीं अपनाया। उन्होंने आजादी के बाद भी अपने मन मस्तिष्क में जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, लैंगिक भेदभाव, आर्थिक असमानता और समाज के भीतर मौजूद उपनिवेशवाद को ही सजाए रखा है।
1: जी हाँ।
0: संविधानिक मूल्यों के पालन की जिम्मेदारी केवल सरकारों या लोक सेवा तक ही सीमित नहीं है। जागृति जी, संविधानिक चेतना और बुद्धिमता के विकास से यह समझ बनेगी कि हर भारतीय को अपने निजी जीवन में, अपनी निजी और पेशेवर भूमिकाओं में और अपने सामाजिक व्यवहारों में भी समता, न्याय, बंधुता, गरिमा और स्वतंत्रता के मूल्यों को अपनाना ही होगा।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि आज हमने बहुत सारी बातें की, कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में जाना संविधान बोध और संविधानिक नैतिकता के बारे में और किस किस के बारे में क्या राय थी वो भी हमने जाना इस कार्यक्रम के माध्यम से। अगले रविवार कार्यक्रम में हम जानेंगे संवैधानिक नैतिकता के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।
2: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
3: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
2: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
3: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
2: ये हुई ना बात गोरी।
1: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
5: नमस्कार साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई।
6: कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर और स्वागत करती हूँ दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि हम हर रविवार को हाजिर हो जाते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई को लेकर, एक नई स्वस्थ भारतीय व्यंजन विधि को लेकर। तो श्रोता साथियों, आज भी जैसा कि रविवार का दिन है और आज भी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नई स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधियाँ। श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे दो व्यंजन विधियाँ रहने वाली है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अगर हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तो हम हमारे भविष्य को बेहतर कर पाएंगे, और अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे, तो हम देख सकते हैं कि इसका प्रभाव हमारे भविष्य पर भी पड़ेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज भी मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए कुछ नई नई स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधियाँ लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। तो बातें ढेर सारी होंगी श्रोता साथियों हमारी आज कार्यक्रम में आपसे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों उसी दस्तूर को निभाते हुए पहले गीत सुन लिया जाए। जी बिल्कुल। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में, और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहेंगे हम कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और अब मुझे आपको बताना है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारी आपसे कौन सी स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधियाँ रहने वाली है। साथियों, सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बनाने जा रहे हैं स्वास्थ्य तरीके से पाव भाजी। साथियों, जैसा कि पाव भाजी तो हम सभी ने खाई है और वो देखते हैं कि सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी होती है, तो ऐसे में आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पाव भाजी तो बनाएंगे ही, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, यानी कि हेल्दी तरीके से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको पाव भाजी बनाने की विधि के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम हेल्दी पाव भाजी बनाने की सामग्री को जान लेते हैं। तो श्रोता साथियों, आप पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा, मैं आपको सामग्री बताने जा रही हूँ, आप उसे लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो साथियों, हमें चाहिए होंगे आलू, जो कि उबले हुए होने चाहिए, इसे आप दो ले सकते हैं मध्यम आकार के। गाजर भी इसमें चाहिए होगी, जो कि हमें कद्दूकस करनी होगी, ये भी हम एक ले सकते हैं, या फिर हम अगर ज्यादा बनाना चाहते हैं तो हम इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ ही सब्जियों में आप फूलगोभी ले लें, जो कि कटी हुई होनी चाहिए। हम इसमें मटर का भी इस्तेमाल करेंगे साथियों, तो हमें मटर भी लेना है। शिमला मिर्च, जो कि कटी हुई होनी चाहिए। टमाटर का इस्तेमाल हम करेंगे, वो भी कटा हुआ हमें चाहिए होगा। श्रोता साथियों, आप इसमें प्याज ले लें, जो कि बहुत ही ज्यादा बारीक कटे हुए होने चाहिए। हरी मिर्च का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे, वो भी बारीक कटी हुई हमें यहाँ पर आवश्यकता होगी। इसी के साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट आप बना ले साथियों पहले ही, क्योंकि अदरक और लहसुन के पेस्ट से इसमें स्वाद बेहतर आएगा। इसके बाद ही हल्दी पाउडर आप इसमें लेंगे, लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल हम करेंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, पाव भाजी मसाला और नमक हमें स्वाद अनुसार लेना है। इसी के साथ ही तेल का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे, जो कि हम आवश्यकता अनुसार लेंगे। साथ ही यहाँ पर हरा धनिया आप ले लें, जो कि बारीक कटा हुआ होना चाहिए। नींबू का रस यहाँ पर चाहिए होगा स्वाद को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ ही पाव भी चाहिए होंगे, जो हम मात्रा के अनुसार लेंगे। अगर हम थोड़ी ही पाव भाजी बना रहे हैं तो हम इसमें 6 से 8 ब्रेड ले लेंगे पाव के, या फिर हम इसमें ओट्स पाव भी ले सकते हैं, मल्टीग्रेन पाव भी ले सकते हैं। जो भी आप लेना चाहें साथियों, अपनी सुविधा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। तो ये तो सामग्री मैंने आपको बता दी है साथियों, कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। मैं सामग्री पुनः दोहराना चाहूंगी साथियों, क्योंकि अगर कुछ रह गया हो तो आप उसे फिर से लिख सकते हैं। जैसे कि हमें आलू चाहिए होंगे उबले हुए, गाजर कद्दूकस की हुई, फूलगोभी हमें कटी हुई चाहिए होगी, मटर का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई चाहिए होंगी, टमाटर भी हमें यहाँ पर कटे हुए चाहिए होंगे, प्याज जो कि बारीक कटे हुए होंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, हरी मिर्च का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट हम पहले से ही बना लेंगे, हल्दी पाउडर का इस्तेमाल होगा, लाल मिर्च पाउडर लेंगे, धनिया पाउडर लेंगे, गरम मसाला पाउडर लेंगे, और अगर पाव भाजी मसाला भी आप लेंगे श्रोता साथियों, तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा। साथ ही नमक का इस्तेमाल आप इसमें स्वाद अनुसार करने वाले हैं। तेल हम लेंगे, नींबू का रस हमें चाहिए होगा, साथ ही आवश्यकता अनुसार पाव भी हम लेंगे। तो दोस्तों, ये तो हम सामग्री जान पाए, अब यही अगर इसे बनाने की विधि के बारे में जाने तो शुरू करते हैं साथियों पाव भाजी बनाने की विधि। तो सबसे पहले तो दोस्तों, हमें सारी सब्जियों को मिलाकर उबालना होगा, यानी कि सबसे पहले हमें आलू, गाजर, फूल गोभी और मटर को पानी में उबाल लेना है। अब श्रोता साथियों, जब सब्जियां उबल जाए तो उन्हें हमें कद्दूकस कर लेना है, यानी कि मेश कर लेना है और एक तरफ रख देना है। इसके बाद में प्याज, टमाटर और मसाले हमें तैयार करने हैं साथियों, जिसमें हम कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे, उसे गर्म करेंगे। अब उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च डालकर थोड़ी देर तक भूनेंगे साथियों। अब श्रोता साथियों, प्याज जो है वो हम देखेंगे कि हल्का सुनहरा हो गया है, तो सुनहरा होने के बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट उसमें डालकर कुछ सेकेंड के लिए और भुनेंगे। अब साथियों, जो हमने सब्जियां उबाली थी, जो मेश कर रखी थी, उन सब्जियों को हमें इसमें मिला लेना है। अब इसमें टमाटर डालकर हम इसे पकने देंगे। टमाटर अच्छे से पक जाए श्रोता साथियों, तो उसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और पाव भाजी मसाला डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जब मसाले अच्छी तरीके से भून जाए श्रोता साथियों, तो हम इसमें उबली हुई सब्जियां डालकर इसे मिक्स करेंगे। अब श्रोता साथियों, सब्जियों को अच्छे से मिला लें आप, और फिर थोड़ी देर तक उसे ऐसे ही रहने दें। फिर थोड़ी देर बाद पानी डालकर उसे और मिक्स करें, ताकि भाजी नरम और गीली हो जाए साथियों। अब 5 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर इसे पकने दें।
ताकि सभी मसाले और सब्जियां अच्छे से एक दूसरे से मिल जाएं। अब श्रोता साथियों, जब तक हमारी भाजी बनकर तैयार हो रही है तब तक हम करेंगे क्या, सर्व करने की तैयारी करेंगे। यानी कि हमें पाव को तवा पर हल्का सा सेंक लेना है, उसे हल्का सा घी लगाकर गर्म करना है साथियों। अब जैसे ही अगर भाजी तैयार हो जाती है तो हमें हरा धनिया और नींबू का रस उसमें डालकर उसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब श्रोता साथियों, जैसा कि पाव और भाजी दोनों बनकर तैयार है तो अब हमें पाव के साथ गर्मा गर्म भाजी परोसनी है। साथ में हम इसमें नींबू और प्याज की कटी हुई रिंग्स भी डालकर इसके स्वाद को और बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगी कि आप हेल्दी पाव भाजी को ताजे दही या फिर हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं साथियों। ये स्वादिष्ट और सेहतमंद दोनों हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारे कार्यक्रम में स्वादिष्ट पाव भाजी बनकर तैयार हो गई। आगे भी एक और ऐसी स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधि को लेकर मैं आपसे बातचीत जरूर करूंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि साथियों, गीत से पहले एक बहुत ही स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधि के बारे में मैंने आपको बताया था। हमने जाना था कि हम घर पर किस प्रकार से आसान तरीके से हेल्दी पाव भाजी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जैसा कि वो रेसिपी तो मेरी आपसे पूरी हो चुकी थी, अब यही जानते हैं साथियों एक और नई व्यंजन विधि के बारे में। साथियों, अब हम बनाने वाले हैं चने की दाल का हलवा। साथियों, चने की दाल तो आप सभी ने देखी ही होगी, क्योंकि अक्सर हम दाल में चने की दाल का भी चुनाव करते हैं, जो कि स्वाद में बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद भी होती है। तो ऐसे में साथियों, आज हम बनाने वाले हैं चने की दाल का हलवा। इसकी अगर सामग्री के बारे में आपको बताऊं, तो यहाँ पर आपको चने की दाल लेनी है 1 कप, घी की आवश्यकता होगी जो कि आपको 2 से 3 चम्मच लेना है, गुड़ आपको लेना है 1/2 कप, पानी का आप इसमें इस्तेमाल आवश्यकता अनुसार करने वाले हैं, काजू बादाम कटे हुए होने चाहिए, इलायची पाउडर का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे जो कि हम 1/4 चम्मच लेंगे। तो दोस्तों, ये तो सामग्री रही, फिर से सामग्री पुनः दोहराना चाहूंगी। तो साथियों, आप लिख लीजिएगा कि हमें चने की दाल चाहिए होगी, घी चाहिए होगा, गुड़ चाहिए होगा क्योंकि हम इसमें शक्कर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे, काजू बादाम हमें इसमें लेने हैं, इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी हम इसमें करेंगे हलवे का स्वाद बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, ये तो सामग्री रही, अब बनाने की व्यंजन विधि को जानते हैं। तो सबसे पहले श्रोता साथियों, आपको चने की दाल को अच्छे से धोकर 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लेना है। फिर चने की दाल जो आपने भिगो कर रखी है, उस दाल को मिक्सी में पीस लेना है। साथियों, अब एक कढ़ाई में घी गरम करना है, पीसी हुई दाल जो है उसे डालकर उसमें भूनना है, फिर धीरे धीरे पानी डालकर पकने देना है साथियों, और फिर आपको गुड़ डालना है। साथियों, जब दाल पूरी तरह पक जाए और जो गुड़ आपने डाला है वो मिलकर हलवे जैसा बन जाए, तो हम उसमें काजू बादाम जो हमने लिए थे वो डाल देंगे बारीक कटे हुए, और हम इसमें अब ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं साथियों कि हमारा गर्मा गर्म चने की दाल का हलवा बनकर तैयार है। हम चाहे तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं साथियों, क्योंकि पिस्ता भी एक तरह की सूखा मेवा होता है जो कि सेहत के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इस तरीके से श्रोता साथियों, आप घर पर चने की दाल का हलवा बनाकर भी खा सकते हैं, क्योंकि ये

हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो श्रोता साथियों, ये थी हमारे आज के कार्यक्रम में दो व्यंजन विधियाँ। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक हेल्दी पाव भाजी बनाने की रेसिपी के बारे में बताया था, और अभी हमने जाना कि हम चने की दाल का हलवा कैसे बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ साथियों कि ये दोनों व्यंजन विधियाँ आपको जरूर पसंद आई होंगी और आप भी अपने घर पर इन्हें बनाकर इनका सेवन कर सेहतमंद रहेंगे। तो श्रोता साथियों, जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी है और अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो मैं जरूर लूंगी दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको सुनवाना चाहूंगी यहाँ पर एक और गीत।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से मैं विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, ये मुलाकात हमारी आपसे फिर होंगी अगले रविवार को कुछ नई स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन विधियों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ श्रोता साथियों, नमस्कार।

0: बच्चों के अधिकार।
1: घर परिवार में दुलार, माँ का पहला दूध व अर्ध ठोस आहार, बच्चों का है अधिकार।
2: जी हाँ, पर्यावरण सुधार, हरा भरा संसार, प्रेम पूर्ण व्यवहार और शिक्षा संस्कार, ये भी है बच्चों के अधिकार।
0: बिल्कुल सही। सभी प्रदूषण को रोकें, बस्ता लेवे हल्का, बाल मजदूरी को रोकें, पिता को दे रोजगार, ये सभी हैं बच्चों के अधिकार।
2: वाग्धारा संस्था और वाग रेडियो द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे गोरी, इतने सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
3: अरे दीदी, क्या करूं, कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
1: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है, और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
3: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी, और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
1: ये हुई ना बात गोरी।
0: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।